ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है, एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के श्रावण माह की 8वीं तिथि, तदनुसार 29 जुलाई सन 2026। सुबह के 8:55 होने को हैं। हमारी आज की यह प्रसारण सभा अब आरंभ होती है।

मिनट पर आप सुनेंगे हमारा दैनिक कार्यक्रम रामचरित मानस, और उसके बाद में होगा भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। 9:40 पर आज सुबह आप सुनेंगे लोक संगीत का कार्यक्रम

आज सुबह 9:40 पर आप सुनेंगे लोक संगीत का कार्यक्रम गोरबंद। सुबह 10 बजे आप सुनेंगे गाने पुराने जमाने के और 10:30 पर गाने नए तराने नए।

युवा साथी अपना कार्यक्रम सुनेंगे युवाणी शाम 5 बजे, 5:30 पर होगा पणिहारी कार्यक्रम, माटी के स्वर 6:20 पर।

खेतीबाड़ी कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 7 बजे, 7:30 पर एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे। रात्रि के 8 बजे होगी संसद समीक्षा। रात्रि के 8:15 पर आप सुनेंगे

0: लोकगीतों का फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो गोरबंद। ये थे आज कुछ खास कार्यक्रम हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले। सुबह के 9 बजने को हैं, थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर फिर से चर्चा शुरू होगी। गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज शिक्षा के क्षेत्र में 947 करोड़ रुपए से अधिक की सौगात देंगे। राज्य के प्रमुख विश्वविद्यालयों में राजस्थानी भाषा अध्ययन केंद्र बनाए जाएंगे और मॉनसून के एक बार फिर सक्रियता से प्रदेश में मौसम खुशनुमा। आज भी 24 जिलों के लिए बारिश का येलो अलर्ट। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर फिर से चर्चा शुरू होगी। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कल सदन में विधेयक को विचार और पारित कराने के लिए पेश किया था। ये विधेयक लोक परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम के अधिनियम 2024 में संशोधन के लिए लाया गया है। विधेयक में कई महत्वपूर्ण प्रावधान हैं, जिनमें 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति जब्त करने जैसे कई कठोर दंड शामिल हैं। श्री सिंह ने कहा कि पेपर लीक से जुड़े मामलों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विधेयक में हर राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश में दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का प्रावधान है।
2: 2 महीने के भीतर सारी जांच मुकम्मल की जाएगी और उसके बाद जो भी ट्रायल कोर्ट होगा, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट, उसमें ये 3 महीने, यानी जिस दिन वारदात रिपोर्ट हुई है उस दिन से लेकर के आखिरी निर्णय आने तक 5 महीने से ज्यादा अवधि काल नहीं रहा जाएगा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर सरकार के सचिवों के साथ दूसरी उच्च स्तरीय बैठक की। उन्होंने वित्त एवं अर्थव्यवस्था, वाणिज्य एवं उद्योग तथा प्रौद्योगिकी क्षेत्र से संबंधित मंत्रालयों और विभागों की भावी कार्य सूची की समीक्षा की। कल हुई इस बैठक का मुख्य उद्देश्य विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में प्रगति देना था। श्री मोदी ने मंत्रालयों और विभागों के बीच मजबूत टीम बनाने का आह्वान किया और अधिकारियों से साझा उद्देश्य की भावना के साथ काम करने का आग्रह किया। गुरु पूर्णिमा आज देश और प्रदेश में आस्था और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। इस उपलक्ष्य में विभिन्न धार्मिक स्थलों पर कार्यक्रम रखे गए हैं। देवस्थान विभाग की ओर से प्रदेश भर में गुरु वंदन कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। प्रदेश के सभी जिलों में 516 संतों और महंतों के उनके आश्रम, मठ और मंदिरों में जाकर सम्मान किया जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का गुरु वंदन संदेश भी भेंट किया जाएगा। संतों और महंतों को सम्मान स्वरूप श्रीफल, शॉल, दुपट्टा, मिठाई और 2100 रुपए की सम्मान राशि प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भरतपुर के लुधावई स्थित बड़ा हनुमान मंदिर पहुंचकर साधु संतों का सम्मान करेंगे। गुरु पूर्णिमा पर मुख्यमंत्री भरतपुर की वैर तहसील के खेड़ली गुजर गांव पहुंचकर शिक्षा के क्षेत्र को 947 करोड़ रुपए से अधिक की सौगात देंगे। मुख्यमंत्री मिशन पढ़ो राजस्थान अभियान की भी शुरुआत करेंगे। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज एक दिवसीय दौरे पर भरतपुर पहुंचेंगे और वे बैर तहसील के खेड़ली गुजर पहुंचकर भरतपुर जिले में शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, सड़क, ऊर्जा, नगरीय विकास एवं आधारभूत संरचना से जुड़ी परियोजनाओं को गति देने के उद्देश्य से 793 करोड़ 84 लाख रुपए की लागत से 21 कार्यों का शिलान्यास करेंगे तथा 268 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत के 18 कार्यों का लोकार्पण करेंगे और प्रदेश के सरकारी स्कूलों के 8वीं तक के विद्यार्थियों को ड्रेस के लिए DBT के माध्यम से राशि उनके बैंक खातों में ट्रांसफर करेंगे। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर।
1: राजस्थान समान सिविल संहिता UCC के प्रारूप को लेकर उच्चतम न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की

0: अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय परामर्श बैठक आयोजित की गई। जयपुर में स्थित शासन सचिवालय में हुई वीसी के माध्यम से इस बैठक में समिति के अध्यक्ष न्यायमूर्ति देसाई ने कहा कि समिति का एकमात्र उद्देश्य लैंगिक विषमताओं को दूर करना और समाज के संवेदनशील वर्गों को सामाजिक तथा वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। प्रस्तावित प्रारूप में धार्मिक स्वतंत्रता, रीति रिवाजों और परंपराओं में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा तथा संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत सभी को प्राप्त धार्मिक स्वतंत्रता पूरी तरह सुरक्षित रहेगी। बैठक में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेने और भरण पोषण से जुड़ी प्रक्रियाओं को सरल बनाने पर भी चर्चा हुई। आमजन से प्रारूप पर 5 अगस्त तक आधिकारिक पोर्टल या QR कोड के माध्यम से सुझाव मांगे गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्य के प्रमुख विश्वविद्यालयों में राजस्थानी भाषा अध्ययन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। राज्यपाल एवं कुलाधिपति हरिभाऊ बागड़े की पहल पर राज्य वित्त पोषित प्रमुख राजस्थान विश्वविद्यालय, जयनारायण मोहन व्यास विश्वविद्यालय, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय तथा महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय सहित 11 यूनिवर्सिटीज को इस संबंध में निर्देश दिए गए हैं। राजभवन की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि नई शिक्षा नीति में मातृभाषा में अध्ययन को प्राथमिकता दिए जाने के अनुरूप विश्वविद्यालयों में ये अध्ययन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। पत्र के अनुसार राजस्थानी प्रदेश के बड़े भूभाग में बोले जाने वाली प्रमुख भाषा है और ये राज्य की संस्कृति का भी प्रतिनिधित्व करती है। विश्वविद्यालयों से कार्रवाई शुरू कर इसकी सूचना राजभवन को भेजने के लिए कहा गया है। आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है। ये दिन बाघों और उनके प्राकृतिक आवासों के संरक्षण के उद्देश्य से हर वर्ष 29 जुलाई को मनाया जाता है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया संदेश के माध्यम से सभी से बाघों के संरक्षण, प्रकृति, वन्य जीव और भावी पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य के लिए सामूहिक जिम्मेदारी निभाने की अपील की है। प्रदेश में बाघ संरक्षण के लिए विशेष प्रयासों के नतीजे सामने आ रहे हैं। जहां सरिस्का बाघ अभयारण्य में बाघों की दहाड़ गूंज रही है, वहीं करौली का कैला देवी अभयारण्य रणथंभौर से छोड़े गए बाघों के लिए सुरक्षित आशियाना बन गया है। रणथंभौर बाघ परियोजना बाघों के संरक्षण को लेकर देश भर में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। पेश है सवाई माधोपुर से हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
1: वर्ष 1973 में बाघ परियोजना घोषित होने के बाद से रणथंभौर के राष्ट्रीय उद्यान घोषित होने और विश्व स्तर तक प्रसिद्धि के पीछे वन विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों के कठिन परिश्रम मेहनत के साथ साथ स्थानीय ग्रामीणों की सहभागिता भी प्रमुख है। वर्तमान में यहां 1700 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में करीब 78 बाघ, बाघिन और शावक विचरण कर रहे हैं। लाखों की संख्या में आने वाले देशी विदेशी सैलानियों, फोटोग्राफर, मूवी मेकर तथा रिसर्चर की पहली पसंद बन चुका है। वर्ष 2008 से राज्य के सरिस्का, मुकंदरा, रामगढ़ विषधारी तथा करौली धौलपुर वनों में भी बाघों को विस्थापित कर रणथंभौर के अलावा पूरे राज्य के अन्य क्षेत्रों में बाघ संरक्षण सहित पर्यटन तथा रोजगार के अवसर पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाई माधोपुर।
0: और अब मौसम। प्रदेश में मॉनसून की एक बार फिर सक्रिय वापसी से मौसम खुशनुमा हो गया है। कई जगहों पर बादल छाए हुए हैं, वहीं कई स्थानों पर झमाझम बरसात का दौर जारी है। सिरोही में रात भर से रुक रुक कर बारिश हो रही है। माउंट आबू में धुंध छाई हुई है और सुहावना मौसम पर्यटकों को आकर्षित कर रहा है। सवाई माधोपुर में कल दिन भर चले बरसात के दौर से कई स्थानों पर नदी नालों में पानी की अच्छी आवक हुई। रणथंभौर वन क्षेत्र में हुई भारी बरसात के बाद त्रिनेत्र गणेश मार्ग बाधित हो गया। मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं का आवागमन आगामी आदेश तक बंद किया गया है। इस बीच मौसम विभाग ने आज 24 जिलों के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। यहां हल्की से मध्यम बरसात हो सकती है। वहीं आज से जोधपुर संभाग को छोड़कर बाकी सभी 6 संभागों के कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर फिर से चर्चा शुरू होगी। गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज शिक्षा के क्षेत्र के 947 करोड़ रुपए से अधिक की सौगात देंगे। राज्य के प्रमुख विश्वविद्यालयों में

0: स्थानीय भाषा अध्ययन केंद्र स्थापित किए जाएंगे और मॉनसून की एक बार फिर सक्रियता से प्रदेश में मौसम खुशनुमा हुआ। आज भी 24 जिलों के लिए बारिश का येलो अलर्ट। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: FM बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर यह है आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल। सुबह के 9:10 हुए हैं। आइए सुनते हैं हमारा दैनिक कार्यक्रम रामचरित मानस।

श्री राम लक्ष्मण तथा सीता को वन की राह पर बढ़ते देख वनवासियों के द्रवित हृदय में स्नेह, श्रद्धा और सद्भाव उमड़ पड़ते हैं। ऐसे सुकुमार शरीर वाले वन के कठिन मार्ग पर कैसे चलेंगे? इनके कोमल रक्ताप चरणों के स्पर्श से धरती वैसे ही सकुचा जाती है जैसे वनवासियों के हृदय सकुचा रहे हैं। विधाता को यदि इन्हें वनवास ही देना था तो इनकी राह में फूल क्यों नहीं बिछा दिए? यदि सृष्टिकर्ता से मांगे मिल जाए तो वनवासी उन्हें अपनी आंखों में बसा लें। श्री राम के दर्शन के लिए गांव गांव के लोग खींचे चले आते हैं। कुछ लोग ऐसे सुकुमारों को वनवास देने वाले राजा रानी को दोष देते हैं तो दूसरे राजा की इस बात के लिए प्रशंसा करते हैं कि ऐसा करके उन्होंने राह घाट के लोगों को श्री राम के दर्शनों का सुअवसर प्रदान किया। धन्य हैं वे माता पिता जिन्होंने इन्हें जन्म दिया, धन्य है वो नगर जहां से ये आए हैं, और धन्य हैं वे पर्वत, वन, गांव और ठौर जहां ये जा रहे हैं। आगे श्री राम और पीछे लक्ष्मण, तपस्वी वेश में इन दोनों के बीच सीता वैसे ही सुशोभित हैं जैसे ब्रह्म और जीव के बीच माया होती है।

अभी आप सुन रहे थे हमारा दैनिक कार्यक्रम रामचरितमानस। आकाशवाणी के नागौर केंद्र से हम बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। यह है पहली प्रस्तुति, आवाज हरिओम शरण की है।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।
1: लीजिए सुनिए ये अगली भक्ति रचना, आवाजें शोभा मुद्गल, पंडित जसराज और भीमसेन जोशी की है।

युववाणी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को सुनिए फरमाइशी कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने। श्रोता अपनी फरमाइश प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को शाम 4:45 से 5:10 तक हमारे फोन नंबर 01582-240-168 पर फोन करके नोट करवा सकते हैं। आपकी फरमाइश का गीत उसी शाम युववाणी प्रोग्राम में प्रसारित किया जाएगा। ध्यान रहे, इस कार्यक्रम में स्थानीय पुराने नागौर जिले के श्रोता ही कॉल करें और सुने कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने।

जगजीत सिंह के गाए इसी भक्ति गीत के साथ वंदना अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी नागौर का ये चिरमे चैनल है FM बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। 9:40 हुए हैं, आइए सुनते हैं लोक संगीत का कार्यक्रम गोरबंध। यह पहली प्रस्तुति

0: ना। अरे गोली मार दूला है, है? अरे थारी गांठड़ी पकड़ने लाऊंगा, अरे थारो काल जो काटने लाऊंगा।
1: मत पियो सा, मत पियो सा, मत

अभी आपने सुना ये गीत ओम पवार और शिवराम की आवाज में, और यह है लोक संगीत गोरबंद की अगली पेशकश।

कार्यक्रम गोरबंध यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है FM बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 10 बजे हैं, आइए सुनते हैं गाने पुराने ज़माने के। यह है पहली पेशकश, फिल्म का नाम काला पत्थर।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।

0: अभी आपने सुना ये गाना किशोर कुमार और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में फिल्म जानी दुश्मन से।
1: पापा कॉलेज की फीस ज्यादा है।
2: बेटा
3: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे।
2: दो साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
4: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री।
2: चलो
1: कहाँ
2: एडमिशन कराने,
4: खाता हुआ एक्टिव।
5: आरबीआई कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: लीजिए सुनिए गाने पुराने जमाने में। ये अगली पेशकश फिल्म का नाम क्रोधी। लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर की आवाज़ें हैं।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

अभी आपने सुना ये गाना फिल्म द ग्रेट गैम्बलर से, आशा भोसले और शरद की आवाज़ में। इसी के साथ कार्यक्रम गाने पुराने ज़माने के यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है, FM बैंड 103.7 MHz पर।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी

0: nearest Manappuram Finance branch per visit kare ya toll free number 1-800-420-2233 par call kare.
1: ये गाना हमने लिया है फिल्म सनमरे से, अरमान मलिक, पलक मुच्छाल और अमाल मलिक की आवाज़ में।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

श्रोताओं, प्रत्येक गुरुवार को युववाणी कार्यक्रम के अंतर्गत होता है ईमेल पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद। अपनी फरमाइश भेजने के लिए हमें ईमेल कीजिए हमारी ईमेल आईडी youthexpressnagore@gmail.com पर। इसमें आप लिखिए अपनी पसंद की फिल्म का नाम, गाने के बोल, आपका नाम, आपके शहर या गांव का नाम और भेज दीजिए हमारे ईमेल आईडी पर youthexpressnagore@gmail.com पर। और सुनिए अपने पसंदीदा गीत।

फजले रह। अभी आपने सुनी है कव्वाली फिल्म मर जावा से। लीजिए सुनिए गाने नए तराने नए की ये अगली प्रस्तुति।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

चिन्मय श्रीपर्दा की आवाज में यह है फिल्म ब्रदर्स का गाना। अजय अतुल का संगीत है, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल हैं।

प्रत्येक सोमवार को रात्रि 8 बजे सुनिए सोशल मीडिया पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम दिल से। इस कार्यक्रम में अपनी फरमाइश भेजने के लिए आपको लिखना है अपने पसंदीदा गीत के बोल, फिल्म का नाम, अपना नाम और अपने शहर या गांव का नाम, और भेज देना है हमारे व्हाट्सएप नंबर 9649004762 पर। शाम 5 बजे तक प्राप्त आपकी फरमाइशों का प्रसारण किया जाएगा उसी रात 8 बजे आपके अपने प्रोग्राम में, जिसका नाम है दिल से।

0: अभी आप सुन रहे थे गाने नए तराने नए, आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है FM बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 11 बजे हैं, आइए सुनते हैं मुंबई से विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के प्रसारण।
1: आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से सुनिए फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश प्रत्येक गुरुवार और प्रत्येक शनिवार को रात 8 बजे। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होती है प्रत्येक गुरुवार को दिन में 12 बजे से दिन के 1 बजे तक। हमारे फोन नंबर्स हैं 01582401068। तो हो जाइए तैयार अपनी फरमाइश हमें भेजने के लिए और कीजिए फोन हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है हेलो फरमाइश।
2: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है। स्मार्ट डिसीजन

0: लेने वालों के लिए मनापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मनापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: आमी एक जाजाबोर बहुत मशहूर नगमा है भूपेंदा का। जाजाबोर का सही तर्जुमा मुसाफिर भी नहीं, बंजारा भी नहीं, आवारा भी नहीं, लेकिन सबसे करीब आवारा है। बिना मंजिल के घूमते रहना, चलते रहना, बहते रहना, इस जमीन पर, इस पूरी जमीन पर जिसे वो अपना घर समझता है या मंजिल समझता है। और घर जो कहीं नहीं है, इसे क्या कहेंगे, आवारा कहीं का या आवारा कहीं का नहीं।

मधु मुखर्जी के संगीत निर्देशन में हम आपको सुनवा रहे हैं ये पारंपरिक रचना, आवाजें आशा भोंसले और

0: दूर जब दिन ढल जाए।
1: मुकेश के गानों में है सादगी।
2: एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल।
1: मुकेश के गानों में है रुमानिया।
2: कहीं करती होगी ओ मेरा इंतजार।
1: हम सबके भीतर रहते हैं थोड़े थोड़े मुकेश।
2: जाऊं कहां बताए दिल।
1: पार्श्व गायक मुकेश की याद में एक दिलचस्प महफिल जिसमें शामिल हैं गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र।
2: जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है।
1: आज के मेहमान 29 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सुनो जी सुनो, हमारी भी सुनो।
3: अनुराधा पौडवाल की आवाज में हम आपको संत कबीर का भक्ति पद सुनवा रहे हैं। धुन बनाई है शेखर सेन ने।

अभी आपने अनुराधा पौड़वाल की आवाज में संत कबीर का ये भक्ति पद सुना। रंग तरंग कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं जिगर मुरादाबादी का कलाम, आवाज बेगम अख्तर की।

0: इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
1: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही हैं, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए, 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिवीजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिवीजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप MCQs रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
0: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें।
2: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया, अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल ईरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
0: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन।
3: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है।
0: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग। जावेद अख्तर के बोल, जतिन ललित का संगीत और ये विवा ग्रुप की पेशकश है।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

कार्यक्रम में अब सुनिए राहुल देव बर्मन का संगीत, गुलजार साहब के बोल और आवाज आशा भोसले की।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
2: और आ गया।
1: एक और आ गया।
3: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध

अभी आप सुन रहे थे बैजू मंगेशकर की आवाज में ये गैर फिल्मी गीत। कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं जगजीत सिंह के संगीत निर्देशन में सईद राही का कलाम, आवाज घनश्याम वासवानी की।

0: इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
1: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही हैं, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए, 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिवीजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिवीजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप MCQs रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
0: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें,
2: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया। अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल ईरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
0: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन।
3: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है।
0: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

और ये है इस कार्यक्रम की आखिरी पेशकश, आवाज मिताली सिंह की और गुलजार साहब की ये रचना है।

0: और अब आज का रंग तरंग कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: रंग तरंग,
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। आज सवेरे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने ग्लासगो में 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक जीतने पर भारोत्तोलक हरजिंदर कौर और धावक गुलवीर सिंह को बधाई दी। बाद में अध्यक्ष ने प्रश्नकाल चलाने की कोशिश की तो विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि प्रश्नकाल सदस्यों का होता है और सरकार से जवाब मांगना सदस्यों के लिए सबसे महत्वपूर्ण काम है। श्री बिरला ने आरोप लगाया कि कुछ विपक्षी सदस्य जानबूझकर प्रश्नकाल में बाधा डाल रहे हैं, जो उचित नहीं है।
3: प्रश्नकाल के बाद इस चर्चा में भाग लीजिए, आप माननीय सदस्यों के हक को नहीं मार सकते, ये तरीका उचित नहीं है। आप अगर सदन को व्यवधान करना चाहते हैं, नियोजित तरीके से गतिरोध पैदा करना चाहते हैं, ये संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है।
2: उधर राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। आज सवेरे सदन की बैठक शुरू होते ही कई केंद्रीय मंत्रियों ने सदन के पटल पर दस्तावेज रखे। कोयला, खान और इस्पात पर विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट भी पेश की गई। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद में चर्चा के दौरान कांग्रेस के सांसदों पर लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 के प्रावधानों पर चर्चा न करने और सदन में विभिन्न राजनीतिक मुद्दे उठाने का आरोप लगाया है।
4: आज हम उम्मीद करते हैं राहुल गांधी जी और बाकी लोग बिल पे बोले, इतना महत्वपूर्ण बिल पे चर्चा हो रहे हैं और वो इधर उधर का बात करके भटकाने के लिए और राजनीतिकरण करके वो ध्यान भटकाना चाहते हैं। इतना अच्छा बिल लाया है और एग्जामिनेशन को लेकर के कोई और सजेशन है तो सजेशन दे सकते हैं कांग्रेस पार्टी। इतना महत्वपूर्ण बिल है और बिल पे नहीं बोलते हैं, ये ठीक बात नहीं है।
2: भारतीय खाद्य सुरक्षा तथा मानक प्राधिकरण ने दिल्ली स्थित एक निजी होटल का लाइसेंस खाद्य नियमों का उल्लंघन करने के कारण निलंबित कर दिया है। इनमें खराब हो चुके खाना पकाने के तेल का उपयोग करना और भोजन की खराब गुणवत्ता शामिल है। सोशल मीडिया पोस्ट में खाद्य सुरक्षा नियामक ने कहा कि जन स्वास्थ्य के हित में लाइसेंस तत्काल प्रभाव से 15 दिन के लिए निलंबित किया जाता है और खाद्य व्यवसाय संचालक को सभी खाद्य संबंधी गतिविधियां तुरंत बंद करनी होगी। खाद्य सुरक्षा नियामक ने सभी नियमों का पालन करने के लिए 15 दिन का समय भी दिया है, अन्यथा लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने दक्षिण पश्चिमी जापान के कुमामोतो इलाके में कल आए जबरदस्त भूकंप पर दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने वहां के लोगों और सरकार के प्रति भारत का समर्थन और एकजुटता जाहिर की। भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने कहा है कि प्रभावित इलाकों में बचाव कार्य चल रहा है। यूक्रेन के कीव स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि एमवी अमीर वन जहाज पर सवार भारतीय नाविकों से संबंधित स्थिति उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और वे जहाज पर सवार सभी भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संबंधित पक्षों के साथ निरंतर संपर्क में हैं। दूतावास ने ये जानकारी सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से दी। आज वैश्विक बाघ दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर वन्य जीव प्रेमियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक बाघ आबादी का 70% से अधिक हिस्सा भारत में स्थित है। उन्होंने कहा कि भारत के बाघ संरक्षण प्रयास प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने की सदियों पुरानी संस्कृति से प्रेरित हैं और जनता की सामूहिक इच्छा शक्ति से संचालित हैं। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। वे स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति ने पदक जीतने पर गुलवीर सिंह को बधाई दी है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज लगभग 1% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 849 अंक बढ़कर 77,615 पर कारोबार कर रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, ये है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। यादों की महफिल, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों में।

लीजिए सुनिए कार्यक्रम यादों की महफिल। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज जाने माने अभिनेता संजय दत्त का जन्मदिन है। विविध भारती परिवार की ओर से हम उन्हें देते हैं ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। और यादों की महफिल कार्यक्रम में आज हमने संजय दत्त की फिल्मों से ही कुछ गीत आपके लिए चुने हैं। यह इस कार्यक्रम का पहला गीत। फिल्म का नाम है रॉकी। आवाजें लता मंगेशकर और किशोर कुमार की, गीतकार आनंद बख्शी हैं, संगीत राहुल देव बर्मन का है।

0: लता मंगेशकर को अभी आपने सुना, फिल्म का नाम था विधाता। गीत रचना आनंद बख्शी की थी और धुन बनाई थी कल्याण जी आनंद जी ने।
1: कहीं दूर जब दिन ढल जाए,
2: मुकेश के गानों में है सादगी।
3: एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल,
2: मुकेश के गानों में है रुमानिया।
3: कहीं करती होगी ओ मेरा इंतजार।
2: हम सबके भीतर रहते हैं थोड़े थोड़े मुकेश।
3: जाऊं कहां बताए दिल।
2: पार्श्व गायक मुकेश की याद में एक दिलचस्प महफिल, जिसमें शामिल हैं गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र।
4: जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है।
2: आज के मेहमान 29 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: सुनो जी सुनो, हमारी भी सुनो।
0: यादों की महफिल कार्यक्रम में अब सुनिए नदीम श्रवण का संगीत, समीर की बोल, एसपी बालसुब्रमण्यम, कुमार सानू, पंकज उदास और अनुराधा पौडवाल की आवाजें फिल्म साजन के लिए।

0: यादों की महफिल कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से।
1: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
2: उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची है, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक और आ गया।
3: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
1: दास्तान सई परांजपे की, उजाली उनकी यादों की, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: सुनिए
0: राहत इंदौरी का लिखा गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। इसे संगीत में ढाला है अनु मलिक ने, आवाजें श्रेया घोषाल और विनोद राठौड़ की। फिल्म का नाम है मुन्ना भाई एमबीबीएस।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

और आइए अब सुनते हैं पंकज उदास और साथियों की आवाजों में फिल्म नाम का ये गीत, रचना आनंद बख्शी की और तर्ज लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की है।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे पर दूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
0: और आ गया।
1: एक और आ गया।
2: कहा जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
3: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: सुनिए
5: फिल्म वास्तव का गीत सुनिए, गाने वाले कलाकार कुमार सानू और साथी, गीत रचना समीर की है और संगीत जतिन ललित का है।

कार्यक्रम का आखिरी गीत शांतनु मोइत्रा का संगीत है, स्वानंद किरकिरे की बोल, युगल स्वर सोनू निगम और श्रेया घोषाल की, फिल्म का नाम लगे रहो मुन्ना भाई।

0: इस दो गाने के साथ ही आज का यादों की महफिल कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज इस कार्यक्रम में हमने संजय दत्त की फिल्मों से कुछ गीत आपके लिए चुने थे।
1: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के प्रसारण आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है। दिन के 1 बजे हैं, आइए सुनते हैं हिंदी में प्रादेशिक समाचार जयपुर से।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद में चर्चा के दौरान कांग्रेस के सांसदों पर लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 के प्रावधानों पर चर्चा नहीं करने और सदन में विभिन्न राजनीतिक मुद्दे उठाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि ये विधेयक विद्यार्थियों की चिंताओं और उनकी मांगों के जवाब में पेश किया गया है। श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस विधेयक को लाने के निर्णय से परीक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों का विश्वास बढ़ा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर डीग जिले के पूछरी का लौठा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर में आयोजित गुरु वंदन कार्यक्रम में संतों और गुरुओं का सम्मान किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने गोवर्धन परिक्रमा क्षेत्र के जतिपुरा स्थित श्री वन बिहारी जी मंदिर में दर्शन किए। उन्होंने मंदिर परिसर श्री अष्ट सखा गोविंद स्वामी जी बैठक और ऐरावत कुंड का अवलोकन कर जिला प्रशासन को इनके जीर्णोद्धार सौंदर्यकरण और संरक्षण के लिए आवश्यक निर्देश दिए। मुख्यमंत्री इस समय भरतपुर के लुधावई स्थित बड़ा हनुमान मंदिर में साधु संतों का सम्मान कर रहे हैं। इसके बाद वे वैर तहसील के खेडली गुर्जर गांव पहुंचकर शिक्षा क्षेत्र के लिए 947 करोड़ रुपए से अधिक की सौगात देंगे। श्री शर्मा इस मौके पर मिशन पढ़ो राजस्थान अभियान की भी शुरुआत करेंगे। साथ ही प्रदेश के सरकारी स्कूलों के 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म

0: के लिए डीबीटी के माध्यम से राशि बैंक खातों में ट्रांसफर करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक बाघ दिवस के अवसर पर वन्यजीव प्रेमियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक बाघ आबादी का 70% हिस्सा भारत में स्थित है। उन्होंने कहा कि भारत के बाघ संरक्षण प्रयास प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने की सदियों पुरानी संस्कृति से प्रेरित हैं और जनता की सामूहिक इच्छा शक्ति से संचालित हैं। उन्होंने बाघ संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले वन कर्मियों और वैज्ञानिकों की सराहना की। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि बाघ संरक्षण केवल एक प्रजाति की रक्षा करने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये समूचे पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित करने और प्रकृति के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध को बनाए रखने से संबंधित है। श्री यादव ने आज नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर कहा कि प्राकृतिक स्थलों को केवल पर्यटन स्थल के रूप में नहीं, बल्कि इन्हें ऐसे स्थान के रूप में देखा जाना चाहिए जहां इंसान शांति का अनुभव कर सके। पिछले एक दशक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बाघों के संरक्षण से जुड़ी पहलों के बारे में श्री यादव ने कहा कि भारत में बाघों की संख्या बढ़कर 3,600 से अधिक हो गई है। उन्होंने बताया कि बाघ अभयारण्यों की संख्या भी बढ़कर 58 हो गई है। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा विकसित इको टूरिज्म वेब पोर्टल का भी शुभारंभ किया। इस पोर्टल पर सभी बाघ अभयारण्यों की जानकारी उपलब्ध है। राज्य सरकार ने सभी गौशालाओं में 30 सितंबर तक गौवंश की 100% डिजिटल टैगिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। गोपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक में ये निर्देश देते हुए कहा कि हर गौवंश पर विशेष चिप आधारित टैग लगाया जाएगा और उसका पूरा विवरण नए सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन दर्ज किया जाएगा। उन्होंने गौशालाओं को सरकारी अनुदान समय पर उपलब्ध कराने और भूमि आवंटन की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाने को भी कहा। बांसवाड़ा जिले में आज सुबह एक स्कूल वैन सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई। हादसे में एक छात्र की मृत्यु हो गई जबकि 14 बच्चे घायल हो गए। इनमें 3 बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है और एक छात्र को बेहतर इलाज के लिए उदयपुर रेफर किया गया है। दुर्घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को महात्मा गांधी अस्पताल पहुंचाया गया। और इसी के साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: FM 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल। दिन के 1:05 हुए हैं। ये सुनते हैं मुंबई से विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के प्रसारण।
2: कार्यक्रम में हमने शामिल किया है तो आज कुछ ऐसे बेहतरीन गाने, जैसा कि हमने आपको बताया, जो रिकॉर्डिंग्स और ऑडियो में बहुत लोकप्रिय हुए लेकिन फिल्म की लंबाई या अन्य कारणों से उन्हें फिल्मी पर्दे पर नहीं दिखाया गया था। और बॉलीवुड में ऐसे कई बेहतरीन गाने बने जो सेंसर बोर्ड की आपत्तियों या फिल्म की लंबाई कम करने के लिए हटा लिए गए लेकिन ग्रामोफोन्स रिकॉर्ड या LP और रेडियो के जरिए हम लोगों के दिलों में हमेशा के लिए बस गए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये प्यारा सा सफर। मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजें, फिल्म का नाम परवाना, गीतकार कैफी आजमी, संगीतकार मदन मोहन।

0: ये आवाजें थी मोहम्मद रफी और आशा भोंसले की। फिल्म का नाम था परवाना। हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज सबसे खास ऐसे गीतों की बारी है जो किसी कारणवश फिल्मी पर्दे पर नहीं दिखाई।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: युववाणी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को सुनिए फरमाइशी कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने। श्रोता अपनी फरमाइश प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को शाम 4:45 से 5:10 तक हमारे फोन नंबर 01582-240-168 पर फोन करके नोट करवा सकते हैं। आपकी फरमाइश का गीत उसी शाम युववाणी प्रोग्राम में प्रसारित किया जाएगा। ध्यान रहे, इस कार्यक्रम में स्थानीय पुराने नागौर जिले के श्रोता ही कॉल करें और सुने कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: नहीं बच पाए या नहीं सुनाए गए, लेकिन हमने उन गीतों को आज भी अपने दिलों में बसा रखा है। पूरी संभावना है कि इबारत के माध्यम से आज उन गीतों का जिक्र होने वाला है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, बहुत सारे गीत हैं जिनका चयन फिल्मों से निकाल दिया गया था, लेकिन उनको आज भी हम सुना करते हैं और पसंद किया करते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत सारे ऐसे गीत हैं जिन्हें बेहतरीन हिंदी फिल्में हैं जिनके गाने ऑडियो और रेडियो पर रिकॉर्डिंग के बाद सुपर डुपर हिट हुए, लेकिन फिल्म की लंबाई कम करने या अन्य कारणों से उन्हें पर्दे पर नहीं दिखाया गया था। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि जिंदगी में जिस किसी से भी हम सीखते हैं वो भी गुरु होता है, और आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर खास कुछ गाने हम विविध भारती से सुनने वाले हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि आज के सुरीला सफर कार्यक्रम की थीम बहुत ही अच्छी है, ऐसे गाने सुनने को बहुत ही कम मिलते हैं। आज इस कार्यक्रम में ऐसे कुछ गीतों का जिक्र होगा जिन्हें हमने पर्दे पर नहीं देखा लेकिन उन्हें सुना जरूर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं फिल्म महबूबा का ये गीत, लता मंगेशकर की आवाज में। क्लासिक गीत है ये, आनंद बख्शी के बोल हैं, राहुल देव बर्मन की धुन है।

ग्यावर सी लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम था महबूबा। और अब आपसे करते हैं दो सवाल हमेशा की तरह। आज का विषय क्या है ये तो आपको पता चल ही गया है, और हमारे सभी श्रोताओं ने, लगभग सभी श्रोताओं ने लिख भी दिए हैं कि कौन कौन से ऐसे गाने हैं जिन्हें फिल्मों में नहीं रखा गया है। लेकिन हाँ, इसके लिए आपको बहुत ज्यादा ढूंढना भी पड़ेगा, क्योंकि कई बार क्या होता है हमें गलत जानकारी भी मिल जाती है। बहुत सारी खोज के बाद ये पता चलेगा कि कौन से गाने फिल्मों में रखे गए और कौन से हटा लिए गए। जैसे कि फिल्म महबूबा का गीत अभी आपने सुना था, इसके लिए जब हम पढ़ रहे थे, इसके बारे में खोजबीन कर रहे थे, तो पता चला था कि इस गाने को जो है फिल्म की लंबाई या कहानी की जरूरत के कारण, मतलब कहानी की जरूरत में ये गीत नहीं फिट हो रहा था, तो वहाँ थिएटर में प्रदर्शित अंतिम कट से इस फिल्म गाने को हटा लिया गया था। तो ऐसे बहुत सारे गाने हैं जिन्हें किसी न किसी कारण से हटाया गया। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ऐसा कौन सा गीत, किसी एक गीत का नाम आपको लेना है, फिल्म का नाम, गाने के बोल आपको बताने हैं जो आपको पसंद है, और वो गीत फिल्मी पर्दे पर नहीं फिल्माया गया या नहीं दिखाया गया था। वैसे हमारे श्रोताओं ने हमारे कहे बगैर भी बहुत सारे ऐसे गीतों का जिक्र कर दिया है, लेकिन आपको ये बताना है आपकी पसंद का कौन सा ऐसा गीत है जो आपको बेहद पसंद है, लेकिन आपको ये भी पता है कि वो गीत फिल्मांकन में या फिल्मों में नहीं दिखाया गया था। और हाँ, हमारा दूसरा सवाल ये है कि ऐसा कोई गीत जो आपको बेहद पसंद है, जिसे देखने के लिए आप उस फिल्म को देखने गए थे थिएटर तक, और वहां जाकर आपको पता चला कि अरे ये गीत तो फिल्म में रखा ही नहीं गया है, तब आपको कैसा लगा होगा, क्या मनस्थिति आपकी रही होगी, ना वो फीलिंग्स आपको हमारे साथ शेयर करनी है। तो सवाल एक बार फिर से हम दोहरा देते हैं, ऐसा कौन सा गीत जो आपको पसंद है और फिल्मी पर्दे पर वो गीत आज भी जब हम उन फिल्मों को देखते हैं कहीं न कहीं तो वो फिल्म में हमें नहीं दिखाई देता है। किसी एक गीत का जिक्र आपको करना है। और हाँ, ऐसा कोई गीत जिसे देखने के लिए आप थिएटर तक गए और उस फिल्म को देखने आपने पूरा देखा, लेकिन पता चला कि अंत तक वो गीत उस फिल्म में कहीं भी नजर नहीं आया, उसके बाद आपकी मनस्थिति क्या हुई, उस फिल्म का, उस गाने का जिक्र हमारे साथ आपको करना है कम से कम शब्दों में। आइए बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं ओपी नैयर के संगीत निर्देशन में SH बिहारी का लिखा गीत, आवाजें मोहम्मद रफी और आशा भोंसले की, फिल्म का नाम है सावन की घटा।

दोस्तों 1966 की फिल्म है ये, सावन की घटा, और मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजें थी। ओपी नैयर का संगीत था। कहते हैं कि इसे साउंडट्रैक एल्बम में तो जारी किया गया था, लेकिन संपादन या अन्य कारणों से ये पर्दे पर फिल्माए गए दृश्यों में ये गीत नहीं आ पाया था।

हमारे श्रोता का कहना है कि आज की सुंदर सी इबारत में विरह, याद, तड़प, बिछड़न और अधूरे प्रेम की गहरी अनुभूति है। भाव भी यही है कि प्रेम में बिछड़ने के बाद हर पल याद, तन्हाई और इंतजार का एहसास बना रहता है, फिर भी दिल तो दिल है। ये हर पल किसी न किसी की याद में धड़कता है, किसी की खुशी में मुस्कुराता है और किसी की कमी में चुपचाप भीग जाता है। यही तो दिल की सबसे खूबसूरत पहचान है।

है और आपने कुछ गानों का जिक्र भी किया है। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि आज काव्यांश का मूल भाव शायद ये है कि याद, तड़प, इंतजार और विरह ये चार शब्द नहीं बल्कि प्रेम के वे चार महाद्वीप हैं जिनसे निकलकर हर सच्चा अनुराग अपनी पूर्णता को प्राप्त करता है। याद वर्तमान में अतीत की सजीव उपस्थिति है, ये हृदय के वीराने में चुपके से जलने वाला दिया है। तड़प बिना धुएं के लगातार सुलगती हुई प्राणों की आग है। इंतजार प्रेम की पराकाष्ठा है जो चौखट पर टंगी आंखों की मुख प्रार्थना है। विरह को विप्लव श्रृंगार कहा गया है जिसे मिलन से भी ऊंचा स्थान प्राप्त है। ये मिलन की आनंदमयी सुबह से ठीक पहले की घनी रात है। यानी याद अगर बीज है तो तड़प उसकी अंकुरण की चटपटाहट है, इंतजार उस पौधे को सींचना है और विरह वो मौसम है जो अंततः मिलन के अमर फल को जन्म देता है। आपने आगे लिखा है कि गाने पर्दे पर जीवंत नहीं हुए लेकिन कानों को सुकून जरूर देते हैं, वही गाने आज इस कार्यक्रम में शामिल हैं। बहुत सुंदर इबारत आपने लिखी है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि कई बार फिल्म 3 घंटे से ज्यादा लंबी हो जाती है जिस कारण निर्देशक को मजबूत गानों को भी हटाना पड़ता है। कहानी का ट्रैक बदलना, अगर किसी गाने के आने से फिल्म की कहानी की मुख्य धारा प्रभावित होती है या भटकाव महसूस होता है तो संपादन के दौरान यानी एडिटिंग के दौरान उसे हटा दिया जाता है। ऑडियो की लोकप्रियता फिल्म से हटने के बावजूद संगीत प्रेमियों के बीच ये ट्रैक कैसेट और एल्बम के माध्यम से अमर हो जाते हैं। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत यानी विरह व्यथा की आह है, याद, तड़प और इंतजार की राह है। सुनी है राहें, सुना है डगर, तुम्हारे बिना थम सा गया है सफर। खिलते हैं फूल पर खुशबू नहीं है, पास है सब कुछ मगर वो एहसास नहीं है। कहने को तो सारा जहां साथ है मेरे, पर सच कहूं तो हर तरफ घने अंधेरे। तुम ही हो मेरी दुनिया का उजाला, बिन तुम्हारे सुना है इस जीवन का प्याला। बहुत सुंदर।

आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत। आवाज लता मंगेशकर की, फिल्म का नाम है मुनीम जी, गीतकार साहिर लुधियानवी हैं, संगीतकार हैं सचिन देव बर्मन।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मनापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मनापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

लता मंगेशकर को अभी आपने सुना। फिल्म का नाम था मुनीम जी। गीतकार थे साहिर लुधियानवी और संगीत दिया था सचिन देव बर्मन ने। तो सवाल आज के जो हमने आपसे पूछे हैं एक बार फिर आपको दोहराई देते हैं। किसी एक गीत का नाम बताइए, फिल्म का नाम बताइए, गाने के बोल बताइए, कलाकार का नाम बताइए जो गीत आपको बेहद पसंद है और वो फिल्मी पर्दे पर नहीं दिखाया गया लेकिन रेडियो के जरिए आपके दिलों तक पहुंचा और आज भी अपने दिलों में अपना घर बनाए हुए है। बस किसी एक गीत का जिक्र। और हाँ, हमारा दूसरा सवाल ये है कि ऐसा कोई गीत जब आप उसे देखने के लिए, उसका फिल्मांकन देखने के लिए किसी थिएटर में गए हो उस फिल्म को देखने के लिए और वहाँ जाकर आपको पता लगा कि अरे इस गीत को तो फिल्म में रखा ही नहीं गया, तो आपकी मनस्थिति क्या थी, कौन सा था वो गीत और आपको उस फिल्म को देखने के बाद फिर कैसा लगा, वो अनुभव कम से कम शब्दों में आपको साझा करना है।

हमारी श्रोता ने लिखा है कि विरह केवल बिछड़ने का नाम नहीं बल्कि उस प्रेम का दूसरा रूप है जो मिलन से भी ज्यादा अधिक गहरा होता है। अधूरे प्रेम की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि उसमें शिकायत कम और प्रतीक्षा अधिक होती है। किसी की याद आज भी आपकी मुस्कान और आपकी आंखों की नमी दोनों की वजह हो सकती है और वो प्रेम कभी अधूरा नहीं होता। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज कुछ ऐसे गाने आप सुनाने को बेताब लग रही हैं और हम भी जो गाने फिल्मों से हटा दिए गए लेकिन वो बेहतरीन नगमे हैं, जब आप प्ले करेंगे तब हमें पता लगेगा कि ये गाने कभी हमने सुने थे या नहीं। तो अब तो आपको पता लग गया होगा, लगभग आधा कार्यक्रम निकल चुका है, आपने काफी गीत सुन लिए हैं, अब बताइएगा कि ये गीत आपने सुने थे या नहीं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मेरे अपने फिल्म के लिए गुलजार साहब ने मीना कुमारी को जहन में रखकर गीत लिखा, रोज अकेली आए बेचारी जाए चांद कटोरा लिए भिखारन रात। लेकिन गीत शूट होने से पहले ही मीना जी नहीं रही, सुमनताई कल्याणपुर की आवाज में ये गीत कभी कभी रेडियो पर सुनने को मिलता है, आज भी आप सुनाइए। नहीं, आज तो ये गीत हम आपको नहीं सुनवा पाएंगे, लेकिन हाँ, जब भी इसी तरह का कार्यक्रम या कभी कोई खास गाने हम लेकर आएंगे तो इस गीत को जरूर अपने कार्यक्रम में शामिल करेंगे। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत भी बहुत अच्छी है, इस प्रकार के गीत तो बहुत सारे हैं पर एक कव्वाली शोले फिल्म की थी जिसे मन्ना डे, शैलेंद्र और किशोर कुमार जी ने गाया था। बिल्कुल सही कहा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि ये गाने जो है मन को रोशन कर देते हैं। मंदाकिनी जी, एक श्रोता लिखते हैं कि जिंदगी में जिस किसी से भी हम सीखते हैं वो भी गुरु होता है। आज हम कार्यक्रम के जरिए सीख रहे हैं कि ऐसे कौन से गीत हैं जो फिल्मों में शामिल नहीं किए गए थे। वहीं हमारे श्रोताओं ने लिखा है कि इस तरह के कार्यक्रम अगर अलग अलग तरीके से पेश किए जाए तो अच्छा लगता है। एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म प्राण जाए पर वचन ना जाए का प्रसिद्ध गीत है, चैन से हमको कभी आपने जीने ना दिया, फिल्मों में नहीं रखा गया था और संगीतकार ओपी नैयर और गायिका आशा भोंसले के बीच व्यक्तिगत कारणों से, लेकिन फिल्म में ये गाना न होने पर फिल्में पर्दे पर फिल्माया नहीं गया, इसके बावजूद गाना बहुत बड़ा हिट साबित हुआ और इसी गाने के लिए आशा भोंसले को वर्ष 1975 में सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका का फिल्म फेयर पुरस्कार भी दिया गया था। वो गीत भी हम आपके लिए लेकर आए हैं, जरूर आपको सुनवाएंगे इस कार्यक्रम में। एक श्रोता लिखते हैं कि रात की तन्हाई में जब आपकी याद आती है तो दिल की फरियाद और भी गहरी हो जाती है, नींद और चैन कहीं खो जाते हैं और तब लगता है कि जमुना किनारे सजी यादों की महफिल में ये जहां सूना सूना लग रहा है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज का ये कार्यक्रम सुनने के लिए हम तैयार हैं, आपके साथ सुरीला सफर तय कर चुके हैं और आगे आप तक बने रहेंगे यही हम उम्मीद करते हैं। जी तो हमें बिल्कुल यकीन है कि सुरीला सफर में आप हमारे साथ हैं और उन गीतों के साथ हैं जो हमने अक्सर सुने हैं और ये गीत हमारी जिंदगी में रच बस गए हैं।

हमने जो दो सवाल आपसे किए हमारे श्रोताओं ने जवाब देने शुरू कर दिए हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि आम्रपाली का एक गीत जो लता जी ने गाया था लेकिन फिल्म में नहीं दिखाई पड़ा, जावरे जोगी तुम जावरे, ये गीत इन्हें बेहद पसंद आता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज कार्यक्रम सुनने का आनंद ही अलग है, दुर्लभ मधुर गीत सुनकर मजा आ रहा है। एक श्रोता लिखते हैं कि प्राण जाए पर वचन ना जाए फिल्म का गीत, चैन से हमको कभी आपने जीने ना दिया, ये गाना मुझे बहुत पसंद है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मुनीम जी का गीत जो आपने सुनवाया था इसे लता मंगेशकर ने गाया था, एस डी बर्मन ने संगीतबद्ध किया था, साहिर लुधियानवी ने लिखा था। हालांकि ये गाना अपने आप में एक बेहतरीन रचना थी लेकिन फिल्म की पटकथा और गति को ध्यान में रखते हुए इसे थिएटर से पहले हटा लिया गया था, रिलीज होने से पहले हटा लिया गया था, जो बाद में ऑडियो रिकॉर्ड के रूप में लोकप्रिय हुआ। बिल्कुल वो गीत बहुत ही खूबसूरत था। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज तो दीदी आप एक ऐसे कार्यक्रम को गूंथ कर लाई हैं, ऐसे गाने सुनने को मिल रहे हैं जो सिर्फ विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर ही सुनने को मिलते हैं, शुक्रिया आप इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि चैन से हमको कभी आपने जीने ना दिया, ये मेरे सबसे प्रिय गानों में से एक है। आशा भोसले की दर्द भरी भीगी भीगी आवाज, ओपी नैयर का अद्भुत संगीत और एस एच बिहारी के भावपूर्ण शब्द इस गीत को एक नया अनुपम ऊंचाई दे देते हैं। इस गीत

हमारी श्रोता लिखते हैं कि जिस दौर में कलात्मक फिल्में बना करती थी वो दौर तो स्वर्णिम काल था। वहीं श्रोता लिखते हैं कि फिल्म प्राण जाए पर वचन न जाए फिल्म का ये गीत चैन से हमको कभी आपने जीने न दिया। ये फिल्म देखने बार बार हम इस गीत को याद करते हैं। मल्टी स्टारर और डाकुओं की पृष्ठभूमि पर बनी फिल्म की कहानी तो अच्छी थी लेकिन ये गीत पूरी फिल्म में कहीं भी दिखाई नहीं पड़ा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हम आपके हैं कौन का फिल्म छत्रपति संभाजी नगर में प्रदर्शित हुई तब थिएटर मालिक ने माधुरी दीक्षित पर फिल्माया गया चॉकलेट लाइम जूस गीत काट दिया था, फिर कुछ सप्ताह बाद फिल्म में से दिखाया भी गया था। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म प्राण जाए पर वचन न जाए का गाना चैन से हमको कभी, ये गाना कई बार रेडियो पर सुना है। 1972 में यानी 1972 में फिर जब 1974 में मेरी शादी हुई तो मैं पत्नी के साथ देखने गया था फिल्म, परंतु इस गाने को फिल्म में नहीं देखकर बहुत ही निराशा हुई। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मैं तो आज जो जानकारी बटोर रही हूं कि इतने सुपरहिट गीत हैं जिन्हें हम सुनते रहते हैं और ये फिल्मी पर्दे पर कहीं दिखाई नहीं गए थे, ये जानकर मुझे आश्चर्य हो रहा है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि संजय दत्त और सलमान खान अभिनीत फिल्म 10 जिसमें एक गाना था 10 बहाने करके ले गई दिल, ये फिल्म में नहीं दिखाया गया। वहीं श्रोता लिखते हैं कि फिल्म सावन की घटा जिसका गीत अभी आपने सुनवाया, होठों पे हंसी आंखों में नशा संगीतकार ओपी नैयर की एक बेहतरीन और मधुर रचना थी जिसे मोहम्मद रफी और आशा भोसले ने गाया।

था ये बात सही है कि ये गाना फिल्म के सिनेमाई प्रदर्शन स्क्रीन पर फिल्मांकन में से हटा लिया गया था और केवल ऑडियो रिकॉर्डिंग्स या एल्बम में ही उपलब्ध रहा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि होठों पे हंसी जो गीत आपने सुनवाया आशाताई और रफी साहब की आवाजों में, इस दिलकश गीत के लिए मैं आपका यानी मेरा मंदाकिनी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने इतने खूबसूरत गीत को आज हमें सुनवाया है। क्या बात है, आप इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं हमारे लिए सबसे खुशी की बात है। लिखते हैं कि वाह क्या बात है, दिल खुश हो गया है, बहुत खुशी की बात है। और अगर हमारे श्रोता खुश हो जाते हैं तो इससे बड़ी खुशी हमारे लिए और कोई होती ही नहीं है, यकीन करिए हमारा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि यूपी नैयर साहब अपनी खास तांगा लय और फुट टैपिंग संगीत के लिए जाने जाते थे, इस गाने में भी उन्होंने अपनी उसी सिग्नेचर शैली का इस्तेमाल किया है। गाने का संगीत बेहद चुलबुला ऊर्जावान और रोमांटिक है। एकोस्टिक गिटार ढोलक और सैक्सोफोन का जो मिश्रण नैयर साहब ने तैयार किया सुनते ही श्रोता तो झूमने पर मजबूर हो जाते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म पांच राइफल्स का झूम बराबर झूम शराबी जो गाना है वो फिल्म देखने जब हम गए तो पता चला कि ये गाना काट लिया गया है तो हमें बेहद निराशा हुई। जी तो आज इस कार्यक्रम में हमने कोशिश की है उन 10 गीतों को लाने की। वैसे तो बहुत सारे गीत हैं ऐसे जिन पर अगर हम चर्चा करें तो शायद कई सारे कार्यक्रम हमें देने पड़े, लेकिन आज जो गीत हम आपके लिए लेकर आए हैं वो फिल्मों में किसी न किसी वजह से हटा लिए गए थे। और जब कोई श्रोता आया हम में से कोई एक उस फिल्म को देखने गया होगा उस गीत को खास सुनने के लिए तो उसे बेहद अफसोस भी हुआ होगा या निराशा हाथ लगी होगी। ऐसा ही एक गीत है फिल्म कश्मीर की कली का, आशा भोंसले की आवाज है, SH बिहारी के बोल हैं, OP नैयर साहब की धुन है। आइए सुनते हैं ये गीत। कहते ही गीत दिखाया गया था इस फिल्म में लेकिन बाद में इस गीत को हटा लिया गया था।

हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि आज की इबारत शानदार है, उन गीतों को न चाहते हुए भी जब फिल्म में नहीं देखा गया तो बहुत उदासी सी छा जाती है। मैं बात कर रहा हूँ फिल्म रोटी के गीत की, फूलों के साथ दिल भी, ये लता मंगेशकर की आवाज में गीत है और जब मैं फिल्म देखने गया तो ये गीत उस फिल्म में नहीं था। संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, और जब हम अपनी पसंद का कोई गीत फिल्मी पर्दे पर नहीं देखते हैं या वो निकल जाता है तो हमें बेहद अफसोस होता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सुना है कि फिल्म शोले की शुरुआत में कव्वाली रखी गई थी अमजद खान पर फिल्माया गया था, क्या वो गीत आज सुनने को मिलेगा? जी नहीं, आज इस कार्यक्रम में तो हमने उसे शामिल नहीं किया है। हाँ, आगे कभी हम उस गीत को ढूंढकर जरूर आपके लिए लेकर आएंगे। एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म सुनहरा संसार का गीत किशोर कुमार और आशा भोसले का गाया हुआ हेलो हेलो, जो राजेंद्र कुमार और हेमा मालिनी पर फिल्माया जाने वाला था, वो नौशाद के किशोरदा के प्रति पूर्वाग्रह के कारण फिल्म के निर्देशक तक नहीं पहुंच पाया, पर ग्रामोफोन रिकॉर्ड पर वो गाना चढ़ गया था। वो गीत इन्हें बेहद पसंद आता है। एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म बाजीगर का एक गीत मुझे बहुत पसंद है, जब मैं उसे एक कैसेट या टेप खरीद कर लाया तो मैंने इस गीत को कई बार सुना और मैं फिल्म देखने गया बड़े चाव से इस गीत को सुनने के लिए, लेकिन वो फिल्म में मुझे लास्ट तक वो गीत सुनाई नहीं दिया तो मुझे बेहद दुख हुआ। गुट है समझकर चांद जिसको आसमाने, अच्छा कोई गाना जो विनोद राठौर और अलका याग्निक की आवाज में है वो आपको बेहद पसंद आता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मंदाकिनी जी कुछ याद तो नहीं आ रहा, मगर फिर भी कुछ फिल्में हमने देखी हैं जिनमें से कुछ चुनिंदा गीत को तो फिल्म से हटा दिया गया था मगर आकाशवाणी और ऑडियो कैसेट के जरिए हमने उन्हें कई बार सुना है। एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म हकीकत का गाना खेलो ना मेरे दिल से और ऐसे बहुत सारे गीत हैं जिन्हें हटा लिया गया था। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मेरी पसंद का गीत फिल्म राम और श्याम का है जो फिल्म में नहीं रखा गया, वो है मैंने कब तुमसे कहा था कि मुझे प्यार करो, इसमें दिलीप कुमार और वहीदा रहमान है, ये गाना भी मुझे बेहद पसंद आता है। और कई श्रोताओं ने अपनी पसंद हम तक पहुंचाई है, लेकिन अब कार्यक्रम के आखिरी सोपान तक हम पहुंच चुके हैं और इस वक्त हम आपको सुनवा रहे हैं एक ऐसा गाना, फिल्म नीला आकाश से हमने लिया है, लता मंगेशकर की आवाज में। इस गीत को आपने बहुत कम सुना होगा, बेहद ही खूबसूरत गीत है, राजा मैदेली खान की बोल है और मदन मोहन की धुन है।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

लता मंगेशकर की आवाज में अभी आपने फिल्म नीला आकाश का ये गीत सुना। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि सिर्फ लंबी होने की वजह से जो गीत काट दिए गए, लगता है उनमें से कुछ गीत तो ऐतिहासिक गीत बन गए। जी हाँ बिल्कुल, और ये गीत हमारे दिलो दिमाग पर आज भी असर किए हुए हैं, ये बात क्या कम है। तो अब कार्यक्रम का वक्त खत्म हो चला है। इस कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार।

श्रोताओं नमस्कार। त्रिवेणी में आज बातें बाघों की। एक इंसान के तौर पर हम सभी जीवों की सुरक्षा का दायित्व रखते हैं, क्योंकि हम ऐसा करने में सक्षम हैं और हमारा कर्तव्य भी बनता है कि हम वन्य जीवों की देखभाल करें। बात भारत की हो तो हमारा देश कई वन्य जीवों के संरक्षण में अग्रणी रहा है, इनमें ही शामिल हैं बाघ। आपको जानकर खुशी होगी कि भारत में विश्व के कुल बाघों में से तकरीबन 75% बाघ वास करते हैं। लेकिन एक समय ऐसा भी आया था जब बाघों की घटती संख्या चिंता का विषय बन गई थी। ऐसे में उसे बचाने और उसकी संख्या बढ़ाने की कवायद शुरू हुई और आज बाघों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। बाघ एक प्रमुख शिकारी जानवर माना जाता है, इसलिए उससे हम इंसानों का डरना स्वाभाविक है। उस पर न जाने बाघों को लेकर कितने किस्से कहानियां भी तो हमने सुन रखी हैं। वैसे बच्चों को तो वन्य जीवों के कई गीत भाते हैं, जैसे कि ये।

0: शेर, चीते और बाघ जैसे वन्य प्राणियों के हमलों को लेकर कई किस्से कहानियां तो हमने सुनी हैं, लेकिन क्या आपको ये पता है कि जिस तरह हम उनसे डरते हैं, वो भी हमसे बिल्कुल उसी तरह डरते हैं। कई बार मानव बस्तियों में शेर, चीते या बाघों का आना तो हमने सुना है, किंतु क्या वाकई वो हमारी बस्ती में आते हैं, या हमने ही उनकी रहने की जगह पर कब्जा करते करते उनके लिए स्वतंत्र रहने की जगह ही बाकी नहीं रखी है। फिर भी शेर, चीते और बाघ जैसे प्राणी दुनिया के सबसे खतरनाक प्राणी यानी मानव से दूर ही रहना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि मानव उनसे भी ज्यादा हिंसा प्रेमी रहा है। अगर वो गलती से भी मानव बस्ती में आ जाएं, तो उन्हें बचकर जाने के लिए जी जान लगाना पड़ता है, और मानवों के पास बाघ, शेर, चीतों को भगाने के न जाने कितने किस्से हैं।
1: मेरे पास आओ मेरे दोस्तों, एक किस्सा सुनो। कई साल पहले की ये बात है,

0: जा रहा था,
1: नहीं आ रहा था, नहीं नहीं जा रहा था।
2: उफ़, आगे भी तो बोलो ना।
1: बताता हूँ बताता हूँ। नहीं भूलती उफ वो जंगल की रात, मुझे याद है वो थी मंगल की रात। चला जा रहा था मैं डरता हुआ, हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ।
3: बोलो हनुमान की जय, जय जय बजरंग बली की जय। हाँ बोलो हनुमान की जय, जय हो बजरंग बली की जय।
1: खड़ी थी अंधेरा मगर सख्त था, कोई दस सवा दस का बस वक्त था।

0: लरजता था कोयल की भी कूक से, बुरा हाल हुआ उस पे भूख से, लगा तोड़ने एक बेरी से बेर, मेरे सामने आ गया एक शेर।
1: कोई खिड़की बन के नजर फिर गई तो बंदूक भी हाथ से गिर गई। आगे मैं पीछे, मैं पेड़ पे वो पीछे, अरे बचाओ, अरे बचाओ, मैं डाल डाल वो पान पान, मैं पसीना वो दाद दाद, मैं सुर में वो ताल में, ये जंगल पाताल में, बचाओ बचाओ, अरे भागो रे भागो, अरे भागो।

0: किया, लेकिन आप तो जिंदा हैं।
1: अरे ये जीना भी कोई जीना है लल्लू? हाँ,
2: वन्य जीवों के संरक्षण में तो हम अपना दायित्व निभा ही रहे हैं, लेकिन क्या उनकी सुरक्षा में हम अपना हिस्सा निभाते हैं? वन्य अभयारण्य या जू आदि में जब हम शेर, चीते या बाघों को देखने जाते हैं तो उन्हें तरह तरह की चीजें फेंक कर परेशान करने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं कि वो हमारी ओर देखें। उनके साथ फोटो लेने की होड़ भी इन दिनों हावी रहती है। इसके लिए तरह तरह की फ्लैश लाइट्स भी उनके मुंह पर चमकाने से हम नहीं चूकते, जबकि इससे उनकी आंखों को नुकसान हो सकता है। जंगल सफारी के दौरान भी हम उन्हें परेशान करने का कोई ना कोई मौका तलाश ही लेते हैं। अब जब हम उनके आधे से ज्यादा निवास स्थान पर अपना आधिपत्य जमा ही चुके हैं, तो कम से कम उनके संरक्षित स्थलों पर तो उनकी सुविधा का ख्याल रख ही सकते हैं। एक मनुष्य के तौर पर सभी जीवों का सम्मान करना भी तो हमारा ही फर्ज है, ताकि वो भी अपने स्थान पर उसी सुकून से रहें जैसा हम अपने घर में रहते हैं।
1: तुम भी

आज ही कीजिए ये फैसला कि अब से अपनी ही तरह हर जीव की देखभाल का भी करेंगे ख्याल। इसी संदेश के साथ आज की त्रिवेणी यही समाप्त होती है। दीजिए अपनी दोस्त निहा शर्मा को इजाजत। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर फिर चर्चा। सरकार ने कहा, विधेयक का उद्देश्य परीक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों का विश्वास बढ़ाना है। गृह मंत्री अमित शाह ने असम में बाढ़ राहत कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा, सरकार इस कठिन समय में असम को हर संभव सहायता प्रदान करेगी। भारत ने हुर्मुज जलडमरू मध्य में हाल में हुए कई समुद्री जहाजों पर हमले की कड़ी निंदा की। कहा, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों से व्यापार बहाल होना चाहिए। पाकिस्तानी सेना की बर्बर कार्रवाई के बाद पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में मरने वालों की संख्या 40 हुई। और आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विश्व में बाघों की कुल संख्या का 70% भारत में। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर विचार और पारित करने के लिए चर्चा फिर शुरू हुई। ये विधेयक लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में संशोधन का प्रावधान करता है। विधेयक में कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल किए गए हैं। इसके तहत दोषी पाए जाने वालों के लिए अधिकतम 10 वर्ष के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने और दोष सिद्ध अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए विधेयक में प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन को विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करने का प्रावधान किया गया है, ताकि मामलों की दैनिक आधार पर सुनवाई हो सके। इसके अतिरिक्त पुलिस थाने में मामला दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के भीतर जांच पूरी करना अनिवार्य होगा, जबकि आरोप पत्र दाखिल होने के 3 महीने के भीतर मुकदमे का निपटारा करना होगा। केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने ये विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया था। चर्चा में भाग लेते हुए जनता दल यूनाइटेड के सांसद दिलेश्वर कामत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये विधेयक विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य को सुनिश्चित करेगा और शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ाएगा। उन्होंने

0: कहा कि ये विधेयक विद्यार्थियों के हित में लाया गया है। वहीं विधेयक का विरोध करते हुए आरएसपी सांसद एनके प्रेमचंद्रन ने कहा कि विधेयक अपने घोषित उद्देश्य को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। विधेयक पर चर्चा के दौरान लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि देश की शिक्षा व्यवस्था अब बहुत महंगी हो गई है। इस दौरान संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने गृह मंत्री अमित शाह पर राहुल गांधी की टिप्पणियों पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की। श्री रिजिजू ने श्री गांधी से सदन में अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांगने की मांग की।
1: कौन सा ऑर्डर है वो ऑर्डर पे आप निकाल के बताइए। आपने कहा होम मिनिस्टर ने ऑर्डर दिया है फायरिंग के लिए, आप वो ऑर्डर का कॉपी निकालिए। आप बताइए किसने आपको बताया, कौन सा ऑर्डर नंबर किस व्यक्ति को कहा है, कौन सा अधिकारी, आप कॉपी निकाल करके सदन में रखिए। ऐसा नहीं हो सकता है, चर्चा ऐसा नहीं हो सकता है। कुछ भी मन में चाहेगा बोल करके आप भाग जाएंगे हेडलाइन बतौड़ने के लिए, ऐसा नहीं हो सकता। ये भारत का संसद है, यहाँ जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहिए।
0: श्री राहुल गांधी की टिप्पणियों पर हंगामे के बीच लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली है। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सांसद जॉन ब्रिटास ने जेएनयू छात्र संघ की पूर्व अध्यक्ष आयशे घोष के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा पार्टी मुख्यालय में कथित तौर पर घुसने का मुद्दा उठाया। इस पर सदन के नेता जेपी नड्डा ने कहा कि यह कानून व्यवस्था का एक सामान्य मामला है। हालांकि विपक्षी सदस्यों ने अपनी मांग पर जोर देते हुए विरोध जारी रखा, जिसके कारण सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। राज्यसभा की कार्यवाही जारी है। भाजपा सांसद डॉ. सतीश पूनिया ने संसद में कांग्रेस के आचरण की आलोचना करते हुए आरोप लगाया है कि पार्टी रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने में विफल रही है। भाजपा सांसद संजय जायसवाल ने भी विपक्ष पर परीक्षा सुधारों पर हुई चर्चा में रचनात्मक रूप से भाग न लेने का आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष ने प्रस्तावित कानून में कोई कमी नहीं बताई और न ही सुधार के लिए कोई सुझाव दिया। भाजपा सांसद शशांक मणि ने लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 को प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा के कथित पेपर लीक मामले के विरोध में झारखंड समेत कई भाजपा सांसदों ने आज संसद परिसर में प्रदर्शन किया। उन्होंने मामले की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई जांच और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग की। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता संजय सेठ ने भी मामले की सीबीआई जांच की मांग की।
2: झारखंड के अंदर एक टीडीपीएल एजेंसी है जो परीक्षा कराती है, उत्तर प्रदेश सरकार ने उसको ब्लैकलिस्टेड किया, यहाँ तक कि जेपीएससी ने ब्लैकलिस्टेड किया, फिर उसको बुलाकर पिछले 4 सालों से उसी को जिम्मा दे दिया। जो ब्लैकलिस्टेड है आपने भी किया, थालियां परोस के दे दिया, अब आप कहां से न्याय दे पाओगे। तभी तो आज झारखंड के लाखों युवा मांग कर रहे हैं कि सीबीआई जांच कराओ। हम तो इंतजार कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी का, कब वो झारखंड आएंगे, कब मुख्यमंत्री आवास के सामने धरने बैठेंगे, कब वो मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री हैं।
0: भाजपा सांसद विद्युत बरन महतो ने झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस सरकार पर गहरे भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाया है।
3: जेपीएससी बहाली में पेपर लीक हुआ है और आए दिन झारखंड में इस तरह कुछ ना कुछ होता है। लॉ एंड ऑर्डर एकदम खत्म है, हर विभाग में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। इसके लिए हम लोग यहाँ पर धरना दिए हैं। हम लोग चाहते हैं कि जो जेपीएससी में धांधली हुआ इसको सीबीआई जांच करे।
0: लोकसभा ने एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित विधेयकों की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति का कार्यकाल इस वर्ष संसद के शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ा दिया है। समिति के अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी सांसद पीपी चौधरी ने संविधान 129वां संशोधन विधेयक 2024 तथा केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2024 की समीक्षा कर रही संयुक्त संसदीय समिति का कार्यकाल बढ़ाने का प्रस्ताव सदन में पेश किया। इन विधेयकों का उद्देश्य लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने की व्यवस्था लागू करना है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस प्रस्ताव को ध्वनिमत से पारित कर दिया।
4: प्रश्न है कि सिर्फ पीपी चौधरी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में हाँ कहें,
5: हाँ।
4: जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में ना कहें,
5: हाँ।
4: मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ, हाँ वालों पक्ष हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंता बिस्व शर्मा से बात की और ऊपरी असम में आई भीषण बाढ़ के मद्देनजर जारी राहत कार्यों की समीक्षा की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. शर्मा ने बताया कि श्री शाह ने जमीनी स्थिति का जायजा लिया और आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत, पुनःस्थापन और पुनर्निर्माण के लिए सभी आवश्यक सहायता प्रदान करती रहेगी। इस बीच असम में बाढ़ की स्थिति में और सुधार हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राहत और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी है।
1: असम में शिवसागर, गोलाघाट, सरायदेव और जोरहाट जैसे सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित जिलों में राहत और पुनर्वास कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है। असम सरकार ने हाल की बाढ़ में प्रभावित लोगों के लिए राहत और पुनर्वास उपायों की घोषणा की है। इनमें बाढ़ में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को अनुग्रह राशि, प्रभावित परिवारों को वित्तीय सहायता तथा विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक सहायता शामिल है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: ओडिशा से हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि राज्य में गंभीर होती बाढ़ की स्थिति से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है।
2: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। इसमें 4 लोगों की मौत हुई है और 6 जिले में 2,00,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं, जबकि लगभग 28,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। जाजपुर, भद्रक, बालेश्वर और केंदुझर सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में शामिल है। बैतरणी नदी आखुआपदा में खतरे के निशान से काफी ऊपर बह रही है और सालंदी नदी में अभी भी उफान है। जाजपुर के दशरथपुर में तटबंध टूटने से सैकड़ों परिवार फंस गए हैं। बचाव और राहत कार्यों के लिए एनडीआरएफ और ओडीआरएफ के 17 टीम तैनात की गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में हाल में हुए कई समुद्री जहाजों पर हमलों की कड़ी निंदा की है। भारत ने कहा है कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाए जाने की घटनाएं तुरंत बंद होनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि पश्चिम एशिया में हमले फिर से शुरू होना चिंता का विषय है।
3: पश्चिम एशिया भारत के लिए बहुत अहम इलाका है। इस इलाके की सुरक्षा और स्थिरता में हमारे बड़े हित जुड़े हैं। भारत का व्यापार और ऊर्जा सप्लाई चेन इस इलाके से मजबूती से जुड़े हैं। खाड़ी इलाके में लगभग 1 करोड़ भारतीय रहते हैं और काम करते हैं। उनकी सुरक्षा और भलाई हमारे लिए सबसे आवश्यक है। इस इलाके में चल रहे टकराव में कुछ समय के लिए रुकावट के बाद हमलों का फिर से शुरू होना और तनाव का बढ़ना चिंता की बात है। ये बहुत चिंताजनक है और भारत तनाव को तुरंत कम करने की अपील करता है।
4: कॉल्स फॉर एन इमीडिएट डीएस्केलेशन ऑफ टेंशंस।
0: श्री हरीश ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों पर आवाजाही और व्यापारिक स्वतंत्रता शीघ्र बहाल की जानी चाहिए। यूक्रेन के कीव स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि एमवी अमीर वन जहाज पर सवार भारतीय नाविकों से संबंधित स्थिति उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और वे जहाज पर सवार सभी भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संबंधित पक्षों के साथ निरंतर संपर्क में हैं। दूतावास ने ये जानकारी सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से दी। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति लगातार बढ़ती जा रही है। जम्मू कश्मीर मानवाधिकार निगरानी संस्था ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के कार्यालय से हस्तक्षेप करने की अपील की है। ये अपील उन खबरों के बाद की गई है जिनमें आरोप लगाया गया है कि पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा की गई गोलीबारी में 40 से अधिक प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई है और कई घायल हुए हैं। जम्मू कश्मीर मानवाधिकार निगरानी संस्था ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क को भेजी अपनी अपील में कहा है कि ये घटना 27 जुलाई को ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी द्वारा शांतिपूर्ण मार्च के रावलकोट से मुजफ्फराबाद की ओर दोबारा शुरू होने के बाद हुई। उधर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के प्रवक्ता जेरेमी लॉरेंस ने जारी एक बयान में कहा है कि किसी नागरिक समाज संगठन को अपराधी घोषित करना और शांतिपूर्ण सभाओं पर कड़े प्रतिबंध लगाना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा और संगठन बनाने के अधिकार के उल्लंघन को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा करता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। आज वैश्विक बाघ दिवस है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर वन्य जीव प्रेमियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व में बाघों की कुल संख्या का 70% भारत में है। भारत के बाघ संरक्षण प्रयास प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने की सदियों पुरानी संस्कृति से प्रेरित हैं और जनता की सामूहिक इच्छा शक्ति से संचालित हैं। वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि भारत ने बाघों के संरक्षण में शानदार सफलता हासिल की है।
5: हमारी जो टाइगर पॉपुलेशन 2226 थी वो बढ़कर 3600 से ज्यादा हुई। 2014 में 47 टाइगर रिजर्व होते थे, उनकी संख्या बढ़कर भी 58 हुई है। एलिफेंट रिजर्व की संख्या जो 28 होती थी वो भी पिछले 10 वर्षों में बढ़कर के 32 हुई है। डेजिग्नेटेड रामसर साइट्स की संख्या 26 थी जो बढ़कर के अब 100 हो गई है।
0: इस दौरान श्री यादव ने राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा विकसित इको टूरिज्म वेब पोर्टल का भी शुभारंभ किया। इस पोर्टल पर सभी बाघ अभयारण्यों की जानकारी उपलब्ध है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेल 2026 में गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने रजत पदक जीतने पर गुलवीर सिंह को बधाई दी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर फिर चर्चा। सरकार ने कहा विधेयक का उद्देश्य परीक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों का विश्वास बढ़ाना है। गृह मंत्री अमित शाह ने असम में बाढ़ राहत कार्यों की समीक्षा की। भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में हाल में हुए कई समुद्री जहाजों पर हमलों की कड़ी निंदा की। पाकिस्तानी सेना की बर्बर कार्रवाई के बाद पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में मरने वालों की संख्या 40 हुई। और आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
7: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
6: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
8: प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है। लता मंगेशकर की आवाज, फिल्म का नाम है सुहाग रात, गीतकार इंदिवर, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी।

लता मंगेशकर और साथियों को अभी आपने सुना, फिल्म का नाम था सुहाग रात। गीतकार थी इंदिवर और संगीतकार कल्याण जी आनंद जी थे।

0: इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
1: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही हैं, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए। 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिवीजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिवीजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप MCQs रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
0: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें।
2: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया। अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल ईरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
0: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन।
3: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है।
0: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाजें, फिल्म का नाम शिकार, गीत रचना हसरत जयपुरी की है और धुन बनाई है शंकर जयकिशन ने।

0: देश के गानों में है सादगी।
1: एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल।
0: मुकेश के गानों में है रुमानिया।
1: कहीं करती होगी वो मेरा इंतजार।
0: हम सब के भीतर रहते हैं थोड़े थोड़े मुकेश।
1: जाऊं कहां बताए दिल।
0: पार्श्व गायक मुकेश की याद में एक दिलचस्प महफिल जिसमें शामिल हैं गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र।
1: जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है।
0: आज के मेहमान 29 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: सुनो जी सुनो, हमारी भी सुनो।
2: सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में, फिल्म का नाम है सरस्वती चंद्र। गीत इंदिवर ने लिखा है और तर्ज कल्याण जी आनंद जी ने बनाई है।

फिल्म साथी का गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। बोल मजरू सुल्तानपुरी के हैं, धुन नौशाद साहब की और आवाज लता मंगेशकर की है।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक और आ गया।
2: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
3: अरे ललन मियां, आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाली उनकी यादों की, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: सुनिए,
5: इस कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म मेरे हुजूर का गीत, गीत हसरत जयपुरी का और संगीत शंकर जयकिशन का है।

0: सभी सखियों सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार और गुरु पूर्णिमा की बहुत सारी शुभकामनाएं सभी श्रोताओं को, सभी गुरु को जिनसे हमने बहुत कुछ सीखा उन्हें प्रणाम। सोनाली आपको भी नमस्कार।
1: ममता जी आपको और सभी सखियों सहेलियों को, श्रोताओं को सोनाली पाठक का सब प्रेम नमस्कार और गुरु पूर्णिमा की बहुत सारी बधाइयां और शुभकामनाएं।
0: आज गुरु पूर्णिमा के दिन सभी अपने गुरु को याद कर रहे हैं और बधाई दे रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, चरण स्पर्श कर रहे हैं। सच में अगर गुरु न होते तो हम इतना सब कुछ कैसे सीख पाते लगता है। हालांकि सबसे पहले गुरु तो माँ होती है, माँ के बाद सबसे पहली गुरु या पहला गुरु जो होते हैं वो स्कूल में टीचर होते हैं। तो कई बार ये स्थिति आ जाती है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए,
1: बलिहारी गुरु आपकी गोविंद देव बताए।
0: हाँ, तो ऐसी नौबत भी आती है तो हमें लगता है कि बस जिनसे आपने सब कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखा है, उन्हें प्रणाम कर लें। आज
1: हमारे एक साथी ने लिखा है, ममता जी हमने विविध भारती से बहुत कुछ सीखा है, इसलिए आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर विविध भारती को भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।
0: बिल्कुल, तो हम सभी विविध भारती को प्रणाम करते हैं क्योंकि हमने भी तो सीखा है
1: जी, और हमने बहुत सारे हमारे जो साथियों से भी बहुत कुछ सीखा है, वो जो इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखकर भेजते हैं तो उससे भी हमें बहुत कुछ सीखने को।
0: बिल्कुल, और श्रोताओं का से तो हमें बहुत बड़ा मार्गदर्शन मिलता है
1: जी।
0: जब वो कोई समीक्षात्मक टिप्पणी लिखते हैं, कोई आलोचना लिखते हैं, तो उससे हमें हमारा विकास होता है, परिष्कार होता है हमारी भाषा का, शब्दों का जो हम बोलते हैं और विषयों का। अब बात विषयों की चली है तो हम बता देते हैं कि आज हम किन मुद्दों पर बात करने वाले हैं। एक तो आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है, और बाघ के नाम से डरी तो नहीं ना? डर तो लगता है,
1: डर तो लगता है,
0: लेकिन घूमने भी जाते हैं।
1: बस हमें थोड़ी सावधानी बरतना चाहिए जब हम देखने जाते हैं, जब हम जंगल सफारी पे जाते हैं तो उस वक्त हमें थोड़ी सावधानी बरतना चाहिए, क्योंकि हम जोश में आके ऐसी कुछ हरकतें कर देते हैं हम सभी कि उसके कारण जो है बाघ जो है वो हमारे ऊपर हिंसक रूप से हमला वगैरह
0: हमला करते हैं। और उसमें सबसे बड़ी सावधानी तो ये रखनी चाहिए कि जो सबकी बोलने की आदत होती है, समूह में जाते हैं और एक दूसरे से हंसी मजाक करते हैं, तो जब वहाँ जंगल सफारी की सैर पर जब जाएं तो एकदम जैसे मोबाइल में म्यूट बटन होता है, म्यूट टच, तो वैसे ही म्यूट हो जाएं वहां पर, क्योंकि जरा से भी बातचीत से उनका असंतुलन होता है, ध्यान विचलित होता है और फिर हमला कर सकते हैं। तो ये ख्याल रखना चाहिए। हालांकि जो जंगल विभाग के अधिकारी या कर्मचारी होते हैं वो बाकायदा इसका ख्याल रखते हैं और
1: रखते हैं।
0: हाँ, और वो बताते भी हैं, हमें समझाइश भी देते हैं इस बात की
1: जी।
0: और
1: आज क्रेडिट कार्ड का माया जाल जिसमें हम लोग उलझते जा रहे हैं, खासकर युवा पीढ़ी।
0: बिल्कुल,
1: तो इस बारे में भी आप लिखकर भेजिए कि आप के क्या अनुभव रहे हैं और किस तरह से ने क्रेडिट कार्ड का हमें उपयोग तो करना ही है, पर उसे किस सावधानी के साथ उसका उपयोग करना है, यानी उसके माया जाल में हमें फंसना नहीं है।
0: बिल्कुल सही कह रही है सोनाली। एक बात बताइए कि जब कहीं घूमने जाते हैं किसी पार्टी फंक्शन में, तो क्या पहनना पसंद करती हैं आप, जो रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल है ड्रेस या फिर और कुछ?
1: साड़ी पहनना बहुत पसंद है।
0: हमें लगता है हर भारतीय स्त्री को साड़ी पहनना पसंद आता होगा। हमने तो सुन रखा है कि जो सुन क्या बातें होती रहती हैं, अब तो मोबाइल का जमाना है, व्हाट्सएप के जरिए बातचीत होती है, तो जो विदेशों में जो भारतीय महिलाएं हैं वो यहाँ से बाकायदा साड़ियां मंगवाया करती हैं
1: और पहनती भी हैं, बड़े शौक
0: मौकों
1: से।
0: पर शौक से पहनती हैं
1: जी।
0: तो साड़ी के बारे में बहुत सारी जानकारी हम देंगे क्योंकि साड़ियों का
1: साड़ी केरल
0: साड़ियों का संसार क्योंकि बहुत समृद्ध है
1: जी।
0: तो साड़ी के बारे में जानकारी देंगे और शब्द बहुत अहम होते हैं,
1: बहुत अहम होते हैं।
0: हाँ, वो एक तीर की तरह है। कहा जाता है ना कि बंदूक से निकली गोली और मुंह से निकली बोली दोनों वापस नहीं आते,
1: नहीं आते।
0: तो इसलिए जब भी बोलें तो सोच विचार कर बोलें, शब्द हमारा और विचार आपके।
1: इसमें आदर को हमने चुना है, तो आदर भी वैसे ही ममता जी कि आदर जब हम देते हैं तो हमें आदर मिलता है, तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम बच्चे हों, बड़े हों, बुजुर्ग हों या हम उम्र हों, सभी से आदर के साथ पेश आए तो हमें भी आदर ही मिलेगा।
0: बिल्कुल सही कह रही हैं।
1: और व्यंजन,
0: उसके बिना तो अधूरा लगता है।
1: और व्रत के व्यंजन, अब व्रत के व्यंजन की बात चलती है तो वही बात चलती है, लोग वही मूंगफली दाने, वही साबूदाना, पर हम उसमें भी अगर कुछ पौष्टिक खाएं, जैसे मखाने खा सकते हैं, फिर कच्चा पपीता है उसके व्यंजन बना सकते हैं, फिर उसके अंदर रामदाना है जिसे राजगीरा भी कहते हैं, या सामा के चावल, तो उसमें कुछ पौष्टिक हो तो उस तरह के व्यंजन भी हमें लिख कर भेजिए।
0: बिल्कुल, और मखाने के लड्डू भी बनते हैं।
1: मखाने की खीर बनती है,
0: जो खाने के बाद अक्सर मीठा खाने के जो शौकीन होते हैं
1: जी,
0: तो अगर इस तरह खाएं, व्रत में खाएं या ऐसे भी खाएं, बहरहाल अब क्या करें,
1: अब गीत सुनते हैं
0: ये गाना।

0: ममता जी, हमारे बहुत सारे साथियों ने गुरु पूर्णिमा की बहुत सारी बधाइयां और शुभकामनाएं दी है। वैसे गुरु पूर्णिमा केवल एक पर्व नहीं बल्कि गुरु के प्रति श्रद्धा, समर्पण और कृतज्ञता का पावन उत्सव है। यह हमें याद दिलाती है कि जीवन में सफलता, संस्कार और आत्मिक उन्नति का मार्ग गुरु के मार्गदर्शन से ही प्रशस्त होता है। इसलिए हमें सदैव अपने गुरु का सम्मान करना चाहिए, उनके उपकारों को स्मरण रखना चाहिए और उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए।
1: बिल्कुल सही बात है। और जब चाहिए आपने कहा ना, तो हमें लगता है कि और भी बहुत कुछ चाहिए, जैसे कि पर्यावरण की सुरक्षा करनी चाहिए।
0: जी
1: उसके लिए हमें खुद निजी स्तर पर जूझना चाहिए। एक कहावत याद आ रही है, जब बाघ की बात चली है, आज हमारा विषय भी है,
0: जी
1: आज बाघ दिवस है, तो ऐसे में लोग कहते हैं ना कि जंगल की शान है बाघ, प्रकृति की पहचान है बाघ। जिस दिन जंगल से बाघ चले जाएंगे, उस दिन जंगल भी वीरान हो जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये केवल एक वन्य जीव नहीं है बाघ,
0: जी
1: बल्कि ये पर्यावरण के प्रहरी के रूप में हम इन्हें जानते हैं। और अगर हम जंगलों की जो कटाई होती है, क्षरण हो रहा है, जंगलों की कटाई को रोकेंगे तो हम बाघ की सुरक्षा कर सकते हैं।
0: जी
1: जो लोग शिकार करने जाते हैं और बड़े मजे से शिकार करके लौटते हैं और कहते हैं कि हम बाघ का शिकार करके आए, वो ठीक नहीं है। तो
0: जी
1: उन्हें भी ये सोचना चाहिए कि अगर ये वन्य जीव हमारे साथ नहीं रहेंगे, जंगलों में नहीं रहेंगे, तो हम जंगल से धीरे धीरे वंचित होते जाएंगे।
0: जी और बाघ खाद्य श्रृंखला में सबसे शीर्ष पर होते हैं, संतुलन में। ये शाकाहारी जीवों की आबादी को नियंत्रित कर वन पारिस्थितिक तंत्र का संतुलन बनाए रखते हैं और एक स्वस्थ बाघ आबादी समृद्ध जंगलों और बेहतर जल प्रणालियों को का संकेत देती है। ये बात हमारे एक साथी ने लिखकर भेजी है।
1: तो इनका हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं। और बता दें अपने श्रोताओं को कि प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को ये दिन मनाया जाता है और इसकी शुरुआत हुई थी 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित एक टाइगर समिट के दौरान ये हुई थी।
0: और इस दिवस का उद्देश्य बाघों के संरक्षण के प्रति वैश्विक जागरूकता बढ़ाना, उनके प्राकृतिक आवास की रक्षा करना, जंगलों की कटाई को रोकना इत्यादि बातें शामिल है। और भारत को विश्व के बाघ संरक्षण में अग्रणी देशों में माना जाता है। दुनिया के अधिकांश बाघ भारत में पाए जाते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 यानी 1973 और बाघ अभयारण्यों की स्थापना जैसे प्रयासों ने बाघों की संख्या बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
1: तो अब एक काम करते हैं, ऐसा ही एक गाना है जिसमें जंगल आता है और पूरा जंगल की कहानी है,
0: और बाघ की दहाड़ भी सुनाई देती है।
1: तो सुने वही गाना।
0: जी

आओ बच्चों, आज तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं मैं। शेर की कहानी सुनोगे? कई साल पहले की ये बात है।

0: जा रहा था, नहीं आ रहा था, नहीं नहीं जा रहा था।
1: उफ़, आगे भी तो बोलो ना।
0: बताता हूँ बताता हूँ। नहीं भूलती उफ वो जंगल की रात, मुझे याद है वो थी मंगल की रात। चला जा रहा था मैं डरता हुआ, हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ। बोलो हनुमान की जय, जय जय बजरंग बली की जय। हाँ बोलो हनुमान की जय, जय हो बजरंग बली की जय। घड़ी थी अंधेरा मगर सख्त था, कोई दस सवा दस का बस वक्त था।

0: लरजता था कोयल की भी कूक से, बुरा हाल हुआ उस पे भूख से, लगा तोड़ने एक बेरी से बेर, मेरे सामने आ गया एक शेर।
1: कोई खिड़की बन के नजर फिर गई तो बंदूक भी हाथ से गिर गई। मैं लपका, वो झपका, मैं ऊपर, वो नीचे, वो आगे, मैं पीछे, मैं पेड़ पे, वो पीछे, अरे बचाओ, अरे बचाओ। मैं डाल डाल, वो पान पान, मैं पसीना, वो दाद दाद, मैं सुर में, वो ताल में, ये जंगल पाताल में, बचाओ बचाओ, अरे भागो रे भागो, अरे भागो।
2: फिर क्या हुआ?
0: खुदा की कसम मजा आ गया मुझे मार कर, बेशरम खा गया।
2: खा गया? लेकिन आप तो जिंदा है।
0: अरे ये जीना भी कोई जीना है लल्लू?

0: हाँ तो भाई, अरे एक साथ
1: हमारे एक साथी ने लिखा है, एक बाघिन तो मेरे घर में ही है, मेरी हाँ। वाइफ
0: अच्छा
1: अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस की शुभकामनाएं
0: लेकिन भाई अगर वो सुन रही हैं तो हम तो चाहते हैं कि ये बात उनकी सुन ली जाए और ताकि उनको ये दोबारा कहने के लिए प्रतिबंध लगा दिया जाए कि कैसे कह सकते हैं बाघिन
1: और एक सखी ने और लिखा है कि बेंगलुरु के बन्नेरघट्टा पार्क में हम बंद गाड़ियों में घूमने गए थे और जो दो बाघ अगल बगल से आ गए, जबकि हम सुरक्षित थे पर डर के मारे मुंह से आवाज ही नहीं निकली और हम एकदम बुद्ध बनकर गाड़ी में बैठे रहे।
0: क्या बात है भाई। तो ये मतलब बाघ से डरना भी जरूरी है लेकिन बाघ से प्रेम करना भी जरूरी है
1: और बाघिन से भी डरना जरूरी है।
0: बिल्कुल। और
1: डर में उपस्थित
0: हाँ वो डर प्रेम वाला डर होना चाहिए क्योंकि बहुत ज्यादा डर अगर लगी तो फिर घर में दिक्कतें पैदा हो जाएगी।
1: वैसे आज साड़ियों का संसार, इसमें हम कसाबू साड़ी के बारे में हम बातचीत करने वाले हैं। तो कसाबू साड़ी भारत की सबसे प्राचीन गरिमामयी और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध पारंपरिक साड़ियों में से एक है। ये मुख्य रूप से केरल राज्य की पारंपरिक वेशभूषा है। अपनी सादगी, शालीनता और सुनहरे किनारे ने सुनहरी जरी के कारण कसाऊ साड़ी भारतीय हस्तकरघा कला का अनुपम उदाहरण मानी जाती है।
0: और कसाऊ का मतलब ही है कि गोल्डन बॉर्डर किनारा ना, यही सुनहरी जरी इस साड़ी की सबसे बड़ी पहचान भी है, विशिष्टता भी है। पारंपरिक रूप से इसमें असली सोने और चांदी की जरी का प्रयोग किया जाता था, जबकि आजकल उच्च गुणवत्ता वाली जरी का भी उपयोग होता है। अब सोने चांदी का उपयोग कहाँ कोई कर सकता है,
1: बहुत महंगी हो जाएगी,
0: बहुत ज्यादा महंगी हो जाएगी और पहनने के बाद भी दिक्कतें पैदा हो जाएंगी, तो इसलिए कि वो न ही लगे तो अच्छा है
1: जी। और कसाऊ साड़ी का इतिहास कई सौ वर्ष पुराना माना जाता है। ये केरल की सांस्कृतिक पहचान का अभिन्न अंग रही है। प्राचीन समय से इसे विशेष अवसरों और धार्मिक अनुष्ठानों में पहना जाता था। समय के साथ ये साड़ी देश विदेश में अपनी विशिष्ट सुंदरता के कारण लोकप्रिय हो गई है।
0: और अमूमन इसका मूल रंग सफेद या ऑफ व्हाइट होता है। चौड़े सुनहरे जरी बॉर्डर इसकी मुख्य पहचान है। ये हल्की और आरामदायक होती है, साथ में आकर्षक भी। पारंपरिक होने के साथ साथ आधुनिक डिजाइनों में भी ये उपलब्ध है।
1: यानी आजकल इसमें सुनहरे बॉर्डर के साथ साथ लाल, हरे, नीले और मैरून रंगों की सजावट भी देखने को मिलती है। और कसाऊ साड़ियों का निर्माण मुख्यतः हथकरघा यानी हैंडलूम पर किया जाता है। पहले सूती धागों से साड़ी बुनी जाती है, फिर उसके किनारों पर सुनहरी जरी जोड़ी जाती है। इसी पूरी प्रक्रिया में बुनकरों की महीन कारीगरी और धैर्य का विशेष योगदान होता है। और केरल के बलरामपुरम, चेंदमंगलम, कुथमपुल्ली और कन्नूर जैसे क्षेत्र कसाऊ साड़ियों की उत्कृष्ट बुनाई के लिए प्रसिद्ध हैं। यहाँ अनेक परिवार पीढ़ियों से इस परंपरा को जीवित रखे हुए हैं।
0: और ये भी बता दें कि कसाऊ साड़ी विशेष रूप से ओणम, विशु, विवाह, मंदिरों के धार्मिक समारोहों, सांस्कृतिक आयोजनों और शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुतियों में पहनी जाती है। केरल की दुल्हन भी विवाह के अवसर पर पारंपरिक कसाऊ साड़ी पहन लेती है। और कसाऊ साड़ी केवल एक परिधान ही नहीं है, पहनावा ही नहीं है, बल्कि केरल की बाकायदा संस्कृति है, परंपरा है और हस्तशिल्प की पहचान भी है। इसके निर्माण से हजारों बुनकर परिवारों को आजीविका मिलती है। ये भारतीय हस्तकरघा उद्योग को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गौरव दिलाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
1: कसाऊ साड़ी सादगी, शालीनता और भारतीय संस्कृति का अद्भुत संगम है। इसकी सुनहरी आभा केवल वस्त्र की शोभा नहीं बढ़ाती बल्कि केरल की समृद्ध विरासत, बुनकरों की कला और भारतीय परंपरा की चमक को भी दुनिया के सामने प्रस्तुत करती है। इसलिए कसाऊ साड़ी को भारतीय संस्कृति का एक अनमोल धरोहर माना जाता है।
0: अब एक गाना सुनते हैं और फिर और चर्चा करते हैं अन्य विषयों पर भी।

0: ममता जी, एक हमारे साथी कहते हैं कि लेडीज के लिए कपड़े जितने हो उतने कम ही होते हैं। साड़ी तो अलग अलग जगहों से लेना बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि उस साड़ी को जब हम पहनते हैं तो उस जगह की, उस शहर की यादें ताजा हो जाती है।
1: क्या बात है। और कुछ लोगों को साड़ियों का इतना ज्यादा शौक होता है कि पहले साड़ी के बारे में रिसर्च करते हैं और उस साड़ी की विशेषता के बारे में जानकारी हासिल करती हैं महिलाएं, फिर वो साड़ी खरीदती हैं। और फिर आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है और वहां पर
0: पहन के पोस्ट करना।
1: पोस्ट करना, फोटो
0: हाँ।
1: डालना और उसके बारे में लिखना, ये भी आजकल चलन में है।
0: जी
1: तो जिनको रुचि है, ये अच्छी बात है। अगर आप कोई विशेष साड़ी पहन रही हैं और उसके बारे में जानकारी है तो आप सोशल मीडिया पे बातें अपनी लिखती हैं और लोग लाभान्वित होते हैं, तो अच्छी बात है। अब जैसे
0: लोगों के
1: सखी
0: ज्ञान
1: से
0: में भी बढ़ोतरी होती है।
1: अब जैसे सखी सहेली कार्यक्रम के माध्यम से हम बहुत सारी बातें अपनी सखियों तक पहुंचा रहे हैं कि जब आप जब कोई नई साड़ी खरीदती हैं और उसके बारे में आपको लगता है कि बताना चाहिए, तो आप लिख सकती हैं विविध भारती के फेसबुक पेज पर और हम आपकी बात आप तक पहुंचाएंगे। मतलब उससे नए श्रोता भी जानेंगे कि अन्य साड़ियों की अन्य क्या-क्या विशेषताएं होती हैं, है ना।
0: जी,
1: तो अब क्या करें
0: अब
1: हम,
0: ब्रेक
1: एक
0: लेते हैं।
1: ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर और भी हम बातें करते हैं।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: विविध भारती से यह है कार्यक्रम सखी सहेली। इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
1: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही हैं, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए, 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिवीजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिवीजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप MCQs रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
0: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें।
2: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया, अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल ईरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
0: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन।
3: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है।
0: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती पर यह कार्यक्रम सखी सहेली। और सोनाली जी, आज का जो आधुनिक युग है इसमें क्रेडिट कार्ड केवल एक प्लास्टिक कार्ड नहीं होता है, बल्कि सुविधाओं, आकर्षक ऑफरों और तात्कालिक इच्छाओं का ऐसा संसार बन चुका है जो देखते ही देखते व्यक्ति को आर्थिक भ्रमजाल में उलझा सकता है और हम सब कहीं

0: कहीं न कहीं कभी न कभी उलझ जरूर जाते
1: इस
0: हैं।
1: माया जाल में उलझ जाते हैं।
0: और बिना जेब में पैसे रखे खर्च करने की शक्ति देता है भाई, लेकिन यही शक्ति संयम से न बरता जाए तो आर्थिक स्वतंत्रता को बंधन में ये बदल सकती है।
1: और क्रेडिट कार्ड की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि आज हमें आज खरीदो बाद में भुगतान करो का अवसर देता है। शुरुआत में यह सुविधा बहुत आकर्षक लगती है ना ममता जी, कि महंगे मोबाइल है भाई, फिर कपड़े हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान है, छुट्टियां हैं या रेस्टोरेंट का खर्च है, सब कुछ एक छोटी सी स्वाइप में संभव हो जाता है। लेकिन धीरे धीरे व्यक्ति को यह एहसास ही नहीं रहता कि वो अपनी वर्तमान आय नहीं बल्कि भविष्य की कमाई खर्च कर रहे हैं।
0: बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और कैश रखने की जहमत भी नहीं उठाना है, और क्योंकि कैश रखो गिनो खर्च करो, कई बार गिरने का भी खतरा रहता है, तो ये फायदेमंद भी है लेकिन कई बार नुकसानदेह भी होता है। बाजार इस मनोविज्ञान को भली भांति समझ जाता है। कैशबैक, रिवॉर्ड पॉइंट्स, जीरो डाउन पेमेंट और विशेष छूट जैसे आकर्षक प्रस्ताव उपभोक्ताओं को ज्यादा से ज्यादा खर्च करने के लिए प्रेरित करते हैं।
1: यानी हमें जो लालच मिल जाता है तो हम भी लालची बन जाते हैं, और कई बार लोग केवल ऑफर का लाभ लेने के लिए ऐसी वस्तुएं खरीद लेते हैं ममता जी जिनकी वास्तव में आवश्यकता ही नहीं होती है। क्रेडिट कार्ड का सबसे खतरनाक पहलू तब सामने आता है जब व्यक्ति केवल न्यूनतम भुगतान यानी मिनिमम पेमेंट करता है, उसे लगता है कि उसने बिल भर दिया, लेकिन जब शेष राशि पर ऊंचा ब्याज जुड़ता है तब समझ में आता है।
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो हम सब इस माया जाल में कभी न कभी तो फंसे। साड़ियों की बात कर रहे थे तो आप भी साड़ी खरीदने गई होंगी निश्चित रूप से कि चलो आज ये साड़ी खरीद ही लेते हैं।
1: अरे तो मन बहुत है, भले हमारे अकाउंट में नहीं है पर क्रेडिट कार्ड तो है हमारे पास में।
0: तो ये हम सब कभी न कभी करते ही है, इससे बचना चाहिए।
1: समय के साथ ब्याज इतना बढ़ जाता है ममता जी कि मूल खर्च से कहीं अधिक राशि हमें चुकानी पड़ सकती है, और धीरे धीरे कर्ज का बोझ बढ़ता जाता है और आर्थिक तनाव भी आ जाता है।
0: जाहिर सी बात है, अगर ब्याज होगा बढ़ेगा कर्ज बढ़ेगा तो तनाव तो होगा ही। ये मायाजाल केवल पैसों तक सीमित नहीं रहता है बल्कि लगातार बढ़ते बिल, भुगतान की चिंता और कर्ज का दबाव मानसिक शांति भी छीन लेता है। कई परिवारों में तो आर्थिक असंतुलन के कारण तनाव, विवाद, लड़ाई झगड़े, भविष्य की योजनाओं पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बचत घटने लगती है और आकस्मिक परिस्थितियों से निपटना कठिन होने लगता है।
1: हालांकि क्रेडिट कार्ड स्वयं में बुरा नहीं है, ये एक उपयोगी वित्तीय साधन है। इसका उपयोग समझदारी से किया जाए, समय पर पूरा बिल चुकाना, अपनी आय के अनुसार ही खर्च करना, अनावश्यक खरीदारी से बचना, एक साथ अनेक क्रेडिट कार्ड ना रखना और ऑफरों के मोह में ना फंसना, ये आदतें व्यक्ति को आर्थिक रूप से सुरक्षित रखती है।
0: बिल्कुल सही। सोनाली जी, आपको याद होगा बचपन में अपने माता पिता को, दादी को, नानी को बजट का हिसाब करते हुए देखा था। कागज पर, पन्ने पर लिखा जाता था खर्च कितना हुआ और कितने पैसे आए, कितनी है और कितने खर्च करने हैं। महीने के बाकायदा सामान की लिस्ट बनती थी। अब वो सब है ही नहीं, वो जमाना ही नहीं रहा। अब तो आप सीधे मॉल में चले जाइए, शॉप पर चले जाइए और चीजें खरीदते रहिए और हाँ कितना हुआ बिल, वो पेमेंट आप सीधे कर देते हैं। तो ये एक नुकसान हो गया है क्रेडिट कार्ड का, फायदे भी है।
1: बिल्कुल सही बात कही कि पुराने जमाने में यानी 2-3 महीने बाद में बड़ा त्यौहार आने वाला है, जैसे दिवाली आने वाली, तो उसकी तैयारियां 2-3 महीने पहले से की जाती थी कि हमें ज्यादा बचत करना है, तो फिर त्योहारों के वक्त हमारा खर्च ज्यादा होगा। आजकल हम इन बारे में कुछ सोचते ही नहीं।
0: और बुजुर्ग कहा करते थे, चादर जितनी हो उतनी ही पांव पसारें। और अब चादर की ओर कोई ध्यान नहीं देता तो कई बार जो कर्ज तले भी फंस जाते हैं। हमें ये समझना चाहिए कि क्रेडिट कार्ड सुविधा देता है, आय नहीं बढ़ाता है। वास्तविक समृद्धि अधिक खर्च करने में नहीं बल्कि संतुलित खर्च, नियमित बचत और विवेकपूर्ण वित्तीय निर्णय लेने में है।
1: और जिस प्रकार क्रेडिट कार्ड का आकर्षण भी यदि नियंत्रण से बाहर हो जाए तो आर्थिक जीवन को उलझा सकता है, और क्रेडिट कार्ड का सही उपयोग जीवन को सरल बना सकता है, लेकिन लापरवाही इसे आर्थिक संकट का कारण बना सकती है। इसलिए खरीदारी से पहले स्वयं से एक प्रश्न अवश्य पूछे, क्या मेरी ये आवश्यकता है या केवल एक क्षणिक इच्छा है। यदि इस प्रश्न का उत्तर ईमानदारी से दिया जाए तो क्रेडिट कार्ड कभी मायाजाल नहीं बनेगा बल्कि एक उपयोगी वित्तीय साथी सिद्ध होगा।
0: बिल्कुल सही कह रही हैं। क्रेडिट कार्ड की चमक क्षणिक होती है लेकिन कर्ज का बोझ वर्षों तक चलता है, तो इसलिए इसका ध्यान रखें। और हमें ध्यान रखना है कि सुनवा दें एक गाना इस वक्त।

0: सोनाली जी कहाँ खोई हुई हैं, मोबाइल के स्क्रीन पर बस टिप्पणियां ही देखती रहेंगी या कुछ कहेंगी भी?
1: हाँ,
0: कहिए।
1: कहेंगे ममता जी, श्रोताओं ने इतने सुंदर सुंदर हमें कमेंट्स लिखकर भेजे हैं, तो चलिए उन्हीं के कमेंट्स पढ़ रहे हैं।
0: वो तो हम समझ गए कि आप ढूंढ रही हैं लगातार, लेकिन पढ़ के भी सुना दीजिए कुछ कमेंट, हम भी तो
1: जी
0: सुन लें क्या आपने अभी क्या पढ़ा।
1: जी हमारे एक साथी ने क्रेडिट कार्ड को लेकर बहुत अच्छी बात लिखी है। ये कहते हैं कि क्रेडिट कार्ड का मायाजाल मैं बताना चाहूंगा। जब क्रेडिट कार्ड का चलन जब शुरू हुआ था, उस समय प्राइवेट बैंक के कर्मचारियों ने चिकनी चुपड़ी बातों में आकर मैंने क्रेडिट कार्ड बनवाया था, लेकिन बिल में ऐसे चार्जेस लगाना शुरू हो गए थे जिनके विषय में मुझे बताया ही नहीं गया, और बहुत जल्दी मैंने अपना क्रेडिट कार्ड सरेंडर कर दिया। उस समय से आज तक मैंने तौबा कर ली है, और अभी भी मोबाइल पर क्रेडिट कार्ड का कोई ऑफर आता है तो मैं मना कर देता हूँ, और मैं सोचता हूँ कि जान बची लाख उपाय।
0: और हमने अपने श्रोताओं से ये भी आह्वान किया था कि शब्द हमारे, विचार आपके,
1: जी
0: तो अभी तक कोई टिप्पणी तो दिख नहीं रही है, तो
1: जी
0: शब्दों का प्रयोग कैसे करें ये लगता है श्रोता समझ नहीं पाए क्या? और हमें तो इंतजार रहता है उनकी टिप्पणियों का, और उन्हें इंतजार रहता है कि हम उनकी टिप्पणी उन तक पहुंचाएं। तो
1: जी
0: तब तक एक काम करते हैं, हम व्यंजनों की बात करते हैं, और ये जो व्यंजन व्रत में खाए जाने वाले व्यंजनों की हमने चर्चा की थी, तो
1: जी
0: हमारी एक सखी है जिन्होंने लिखा है कि व्रत के शाही नमकीन कच्ची मूंगफली 100 ग्राम। अब यहां पर एक मिनट हम अपने श्रोताओं से फिर कह दें कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी टिप्पणी शामिल हो, क्योंकि ये जो

0: डालकर काली मिर्च, सेंधा नमक और पुदीने का चूर्ण डालकर एयर फ्रायर में 160 डिग्री पर 10-15 मिनट के लिए लगा दें। आपकी हेल्दी नमकीन तैयार हो जाएगी। और अगर घर में एयर फ्रायर ना हो तो कढ़ाई में घी डालकर तल भी सकती हैं या कम घी में भी भून कर बना सकती हैं। यहाँ एक बात ध्यान देना है कि एयर फ्रायर में साबुदाना न डालें, साबुदाने को अलग से कढ़ाई में भूनकर फिर इस मिश्रण को मिक्स करें।
1: एक हमारे साथी ने मखाने या साबुदाने की खीर की रेसिपी लिखकर भेजी है कि दूध को गाढ़ा करके मखाने, मेवे और चीनी डालकर बनाई जाने वाली एक पारंपरिक मिठाई, फलों का रायता, ताजे दही में अनार, सेब और केला मिलाकर बनाया गया एक ताज़ा सेहतमंद विकल्प है। साथ ही एक साथी ने लिखा है कुट्टू का आटा, इससे स्वादिष्ट और कुरकुरी कुट्टू की पूड़ी, पकौड़ी या पराठे बनाए जाते हैं जो शरीर को तुरंत एनर्जी देते हैं। सिंघाड़े का आटा, इसका उपयोग मुख्य रूप से मीठे सिंघाड़े का शीरा यानी हलवा या नमकीन सिंघाड़े की कड़ी बनाने के लिए किया जाता है। राजगिरा का आटा, इसकी रोटियां और पूरी स्वास्थ्य के लिए बेहद पौष्टिक है। और एक हमारे साथी ने तो व्रत वाले दही वड़े लिखकर भेजे हैं।
0: अरे वाह, तब तो आप जरूर बताइए कैसे बनाते हैं।
1: 1 कप सामा के चावल, 1/4 कप साबुदानों को अच्छे से धोकर 3-4 घंटे के लिए पानी में भिगो दे। फिर पानी छान कर दोनों को मिक्सी में डालें। साथ में हरी मिर्च, अदरक, थोड़ा सेंधा नमक और 2 चम्मच पानी डालकर चिकना पेस्ट कर ले। अब इस पेस्ट को एक पैन में डाल के मध्यम आंच पर लगातार चलाते हुए तब तक पकाएं जब तक ये गाढ़ा होकर आटे जैसा ना बन जाए। मिश्रण को थोड़ा ठंडा होने के बाद इसमें कद्दूकस किया हुआ 1 उबला आलू, हरा धनिया डालकर अच्छी तरह से गूंथ ले और हाथों में थोड़ा थोड़ा तेल लगाए और मिश्रण से गोल गोल बड़े बनाए और गर्म तेल या घी में मध्यम आंच पर सुनहरा होने तक तल ले। और तले हुए गर्म वड़ों को हल्के गुनगुने पानी जिसमें थोड़ा सेंधा नमक मिला लो, 5 मिनट के रख दे। फिर हल्के हाथों से निचोड़ कर निकाल ले। अब आवश्यकता अनुसार दही ले, इसमें चीनी और थोड़ा सेंधा नमक डालकर अच्छी तरह फेंट ले। एक प्लेट में वड़े रखे, ऊपर से गाढ़ा फेंटा हुआ दही डाले। इसके बाद व्रत वाली खट्टी मीठी चटनी, अमचूर या खजूर की हरी चटनी, भुना जीरा पाउडर, काली मिर्च और अनार दानों के साथ साथ ठंडा ठंडा परोसे।
0: क्या बात है। और हमारी एक सखी लिख रही है कि व्रत में भिन्न भिन्न प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं, पर मेरी समझ से व्रत का मतलब शरीर को डिटॉक्स करना है, जिसमें हमें तरल पदार्थ और वो पदार्थ जो आसानी से पच जाने जाए लेने चाहिए, जैसे कि कम घी में भुने मखाने। ऐसे ही भगर यानी कि सामा के चावल की खिचड़ी और खीर, फल मिक्स, कच्चे सलाद, खीरा, गाजर, चुकंदर का रायता, दही, नींबू, पानी छाछ और खूब सारा पानी, इससे शरीर भी थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। ये बात भी सही है कि जब हम व्रत करते हैं कि हमें मतलब शरीर को थोड़ा आराम मिले, पेट को आराम मिले, तो ये तरीका भी सही है। व्रत का मतलब ये नहीं होता है कि रोज की तुलना में खूब सारा तला भुना खा लें और इतना ज्यादा खा लें कि आपकी तबीयत बिगड़ जाए
1: जी।
0: और इस समय हम एक गाना सुनवा लेते हैं, तब तक हमें इंतजार रहेगा कि हमारे श्रोता लिख भेजेंगे, कुछ टिप्पणियां आई हैं शब्दों के लिए
1: जी।
0: लेकिन अभी और बाकी हैं, सुनते हैं गाना।

0: सोनाली, रात के कली एक ख्वाब में आई। हम रात को तो ख्वाब देखते ही हैं, कई बार दिन में भी लोग ख्वाब देखते हैं
1: जी,
0: और ख्वाब देखने के बाद उसकी चर्चा भी करते हैं, बताते भी हैं, लेकिन कई बार कुछ बताने का अंदाज बड़ा अलग होता है, अनोखा होता है, जो आपको अलग जुदा करता है लोगों से, मतलब अच्छा लगता है। और कुछ लोगों के बोलने का अंदाज बहुत ही रफ होता है, रूखा होता है तो बहुत खराब लगता है। तो कहने का तात्पर्य ये है यहाँ पर कि जब भी बोलें तो किसी के साथ सम्मान के साथ बोलें, आदर के साथ, रिस्पेक्ट के साथ, तो कितना अच्छा लगता है ना।
1: कई बार बड़े हो, छोटे हो, बुजुर्ग हो या फिर वो हम उम्र हो, है ना।
0: तो आप छोटों से आदर के साथ बोलते हैं?
1: जी, बोलना ही पड़ता है आजकल के छोटे भी।
0: सीखेंगे कैसे?
1: जी जी,
0: अगर हम उन्हें सिखाएंगे कि आप आदर के साथ बोलो और उन्हें आदर नहीं देंगे तो कहाँ से सीखेंगे, है ना।
1: ये तो बात बिल्कुल सही कही आपने। वैसे आदर केवल एक शब्द नहीं बल्कि मानवीय रिश्तों की पवित्र बुनियाद है। दिखावा बनाम वास्तविकता, ये झुककर प्रणाम करने से ज्यादा मन में सद्भाव रखने की भावना है। समानता का प्रतीक है आदर, सिर्फ बड़ों के लिए नहीं बल्कि हर छोटे बड़े व्यक्ति के अस्तित्व के लिए जरूरी है। ये बात हमारे एक साथी ने लिखकर भेजी है।
0: हमारे एक श्रोता ने ये भी लिखा है कि शब्द होठों से निकलते हैं, विचार मन से जन्म लेते हैं, लेकिन आदर दिल से आता है और जिस बात में दिल का आदर जुड़ जाए वो हमेशा याद रह जाती है। और एक श्रोता ने और लिखा है कि आपके लिए एक छोटी सी बात शब्दों की मिठास कानों तक पहुंचती है, विचारों की गहराई मन तक, लेकिन आदर सीधे दिल में उतर जाता है। इसलिए जीवन में सबसे सुंदर भाषण हमेशा सम्मान वाले होते हैं।
1: एक साथ ही लिखते हैं, आप दूसरों को जो आदर देते हैं वो असल में आपके अपने संस्कार को दर्शाता है, अधिकार नहीं। उपहार, आदर कभी भी ताकत

0: या पद के बल पर नहीं मांगा जा सकता, इसे अपने आचरण से कमाया जाता है। आत्म सम्मान से जुड़ाव, जो व्यक्ति खुद का आदर नहीं करता वो दूसरों का सच्चा आदर कभी नहीं कर सकता।
1: कई बार तो सम्मान लोग मांग के लेते हैं, कहते हैं कि देखो अरे आपने हमसे ऐसे बोला, हम तो इतने बड़े ओहदे पर काम करते हैं और ये हम इतने बड़े हैं आपसे उम्र में, तो मुझे लगता है कि ऐसे लोग आदर नहीं मांगते हैं, वो जैसे भिक्षा मांगते हैं। और आदर मांग के नहीं लिया जा सकता है
0: जी,
1: आदर के लायक
0: कमाया जाता है,
1: कमाया जाता है, उसके लायक बनना पड़ता है। आपके भी आपके अंदर कुछ ऐसा हो, आपके व्यक्तित्व में ऐसा कुछ हो कि लोग अपने आप विनम्रता से झुक जाए आपके सामने।
0: एक साथी ने लिखा है कि आदर वो सुगंध है जो शब्दों से नहीं बल्कि व्यवहार से फैलती है। जिस घर में आदर का दीपक जलता है वहां प्रेम की रोशनी भी कम नहीं होती है।
1: और एक श्रोता ने लिखा है कि आदर वो खामोश भाषा है जिसे हर दिल बिना किसी अनुवाद के समझ लेता है। इसमें ऊंची आवाज की नहीं बड़े दिल की जरूरत होती है। जहां आदर हो वहां रिश्ते अपने आप खूबसूरत हो जाते हैं।
0: एक साथी ने और भी लिखा, आप पढ़ रही हैं? और
1: नहीं, आप पढ़िए, आपके हाथ में मोबाइल है और स्क्रीन पर आप लगातार देख रहे हैं।
0: जी, एक साथ ही लिखते, आदर ऐसी चीज है जिसे पाने की इच्छा हर इंसान के मन में होती है। बड़े हो या छोटे, हर किसी को अच्छा लगता है जब उसकी बात सुनी जाए और उसे महत्व दिया जाए। मेरा मानना है सम्मान देने से कोई छोटा नहीं होता और रिश्ते, बल्कि रिश्ते बड़े हो जाते हैं जब जहां आदर होता है वहां प्यार, अपनापन और विश्वास अपने आप आ जाते हैं।
1: बिल्कुल, जैसे आपने हमें आदर दिया भी कि आप पढ़ेंगे, तो मैंने कहा नहीं आप पढ़िए। तो ये एक शब्दों में आदर कहीं छिपा होता है
0: जी,
1: हमें बताने की जताने की जरूरत नहीं होती। ये तो हम श्रोताओं को बता रहे हैं, वरना हम आपस में कहां कभी बताते हैं कि हम आपको आदर दे रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि आदर वो धन है जो बांटने से बढ़ता है। क्या बात है भाई, जिस व्यक्ति के व्यवहार में सम्मान होता है उसके रिश्तों में विश्वास और अपनापन बना रहता है। बड़े हो या छोटे, हर इंसान सम्मान का अधिकारी होता है। मीठे शब्द, विनम्र व्यवहार ही सच्चे संस्कार की पहचान है। हमने तो कई घरों में देखा है कि वो छोटे बच्चों से, 3-4 साल के बच्चों को भी आप कहकर बात करते हैं
0: जी।
1: तो कई बार ये भी लगता है इतने छोटे बच्चे को आप क्या कहना, लेकिन वहीं से सीखते हैं बच्चे
0: जी। और फिर बच्चे हम जैसा जैसा सुनते हैं वैसा ही वे पेश आते हैं।
1: अब आदर की बातें हो गई हैं, अब घड़ी की ओर जरा देखिए।
0: तो गाना सुनते हैं
1: ये गाना, प्रोग्राम का आखिरी गीत।

0: भाई दिल तो हमारा भी अभी नहीं भरा है, लग रहा है कि अभी और थोड़ा बोल लें बतिया लें, लेकिन
1: पर
0: बिल्कुल
1: रुकना
0: वक्त
1: पड़ेगा।
0: नहीं। तो अब सभी श्रोताओं से लेते हैं इजाजत, आप सभी को ममता सिंह
1: और सोनाली पाठक का
0: नमस्कार,
1: नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रोड्यूसर अनुश्री पाठक,
2: सखी सहेली।

इस कार्यक्रम में हमारे साथ थे गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र। और इन दोनों गायकों ने न केवल मुकेश के बहुत सारे गाने गाए बल्कि ये भी बताया कि मुकेश की गायकी की क्या खासियत थी और मुकेश उनकी जिंदगी में क्या मायने रखते हैं। सजन

0: झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है।
1: आज सुनिए इस बातचीत का दूसरा भाग, पार्श्व गायक मुकेश की विनम्र याद।

0: अच्छा ये बताइए अपने परिवार वालों में किसके लिए कौन सा गाना गाते हैं आप लोग?
1: पर्टिकुलरली ऐसा तो घर के अंदर वो बोलते हैं ना कि जो बाहर अपना प्रोफेशन होता है, घर के अंदर इंसान की आखिर पूरी पर्सनैलिटी अलग होती है
0: बिल्कुल
1: तो वैसा तो होता नहीं है। कभी घर के अंदर तो उल्टा शायद अगर गा रहे हो तो घर वाले बोलते होंगे कि भाई अभी यहाँ बन।
0: आपके साथ भी ऐसा होता है?
2: मेरे साथ तो क्या कि अगर रिहर्सल है और शाम को शो है तो मुझे पता है कि मैं सुबह निकल रहा हूँ।

0: रात को घर वापस आऊंगा तो वाइफ का थोड़ा सा मूड उखड़ा रहता है, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, गा के चला आता हूँ, उसके बाद ना कोई फोन आता है ना कोई मैसेज आता है, घर में शांति बनी रहती है।
1: ये देखो गाना जो है एक जरिया बन गया खुश करने का। तो ये गाना सुनाइए फिर।
0: क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, फिर से कहो, कहते रहो, अच्छा लगता है, जीवन का हर सपना

0: मतलब ये गाना काम कर जाता है
1: कभी कभी कर जाता है।
0: अच्छा ये बताइए रेडियो का आप लोगों की जिंदगी में क्या इंपॉर्टेंस रहा है बचपन से अब तक। विविध भारती एक ऐसी संस्कृति है, मैं इसको रेडियो चैनल की बजाय कल्चर कहना ज्यादा पसंद करता हूं।
2: हम तो मैं समझता हूं इतने खुश नसीब लोग हैं कि हमने अपने दौर में रेडियो का वो सुनहरा दौर भी देखा है कि जब एक किसी के पास एक रेडियो हुआ करता था और हम उसके घर पे इकट्ठा होकर 8-10 घर के अड़ोस पड़ोस के लोग, क्योंकि सबके रेडियो भी नहीं होता था, तो जैसे रेडियो सिलोन सुनते थे अमीन साहनी साहब को, तो वो दौर भी देखा। हवा महल एक प्रोग्राम आता था आपका, मेरा बहुत फेवरेट था वो, मैं 9:15 बजे वो हमें सुनता था।
0: क्या बात,
2: तो आपको इतना हमने सुना है इन दिनों आप जो काम कर रहे हैं, तो ये चीजें संगीत से जुड़े रहने के लिए और उस दौर के दिलचस्प बातें और किस्से सुनने के लिए बहुत अच्छा जरिया रहा है हमारी जिंदगी में, इसने बहुत अहम किरदार निभाया हमारे जिंदगी।
0: क्या बात है गोविंद, आप तो इलाहाबाद से आते हैं और बहुत पॉपुलर है वहां पर भी,
1: बहुत बहुत। और मैं तो मतलब इलाहाबाद जहां पे गांव में पला बड़ा हूं वहां पे तो अक्सर लाइट्स की बहुत प्रॉब्लम होती थी रात में।
0: हाँ।
1: तो हमारे घर के बाहर के हिस्से में सब चारपाई लेके बैठ जाते थे, मेरे बाबूजी, चाचा जी, मेरी दादी, मेरी अम्मा, मेरे बुआ, वो सब बैठ जाते थे और रेडियो बीच में रख देते थे। तो वो दौर छोटा था लेकिन सुनता रहता था उनके साथ कि वो क्या सुन रहे हैं, मैं भी उनके पंखे हांकते रहता था और सुनता रहता था।
0: बाबा
1: वो दौर लेकिन मैं आज भी याद करता हूँ, मतलब अब वापस नहीं आया।
2: हाँ, सच बात
1: बहुत मजा आता
0: तब
1: था
0: जिंदगी में, एक सादगी थी और सब लोगों का साथ था
1: सच में, सच में।
2: और बहुत खुशी थी,
1: बहुत खुशी।
2: अभी बाकी की सारी चीजें बहुत सारी जिंदगी में आशाएं बहुत सारी, लेकिन वो खुशी जो दिल की थी वो कहीं ना कहीं लेकेंगे।
0: अब कौन सा गाना सुनाने वाले हैं आप लोग?
2: अभी हमारी चॉइस की बात है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
2: गाने तो मुकेश जी के गाए तो सारे ही हमको पसंद हैं। ये ऐसी बात होती है कि मतलब इतने सारे गानों के बीच में कभी कोई बोल देगा अच्छा कोई अपनी पसंद का गाना सुना दे,
0: ये बड़ा मुश्किल हो जाता है।
2: कौन सा मेरे को कौन सा पसंद है।
0: बिल्कुल सही है। देखिए ऐसा करते हैं, म्यूजिक डायरेक्टर चुनते हैं रोशन।
2: तुम अगर मुझको ना चाहो तो कोई बात नहीं।
0: और एक बहुत प्यारा गाना मुझे याद आ रहा है शैलेंद्र का, बहुत दिया देने वाले ने।
2: हाँ क्या बात है, क्या फ्लूट उसमें बजाई,
0: क्या बात है।

वाह वाह वाह, देखिए हमने रोशन की बात की, अब गोविंद जो है वो ये सोच रहे हैं कि मुझे कौन सा म्यूजिक डायरेक्टर बोले वाले हो मेरी तरफ। मुझे ना रानी रूपमती फिल्म याद आ रही है।

0: ये एस एन त्रिपाठी का संगीत है और वो भी एक ऐसे संगीतकार और फिल्मकार भी थे, फिल्में भी बनाते थे, जिन्होंने बहुत क्लासिकल टच के गाने बनाए।
1: आपने अच्छा वो फिल्म का नाम लिया, म्यूजिक डायरेक्टर बोलते तो मैं नहीं गा पाता।

0: कंफ्यूज
1: मेरी,
0: हो
1: वो तो हमारी जिम्मेदारी है मुख्तार भाई। मुकेश को हमेशा ये कहा जाता है कि वो सादगी भरे गाने, सीधे चलन के गाने गाते थे, लेकिन उनके बहुत सारे गाने हैं जिनमें प्रॉपर शास्त्रीयता है, क्लासिकल टच है, तो इसकी बात करते हैं और कुछ गानों की मिसाल के साथ करते हैं।
2: थोड़ा सा लाइट वो उन्होंने गाया, मतवाली नार ठुमक ठुमक चली जाए, मतवाली नार ठुमक ठुमक चली जाए, इन कदमों पे किस का जिया ना झुक जाए, मतवाली नार ठुमक ठुमक चली जाए।
1: एक फूल चार कांटे फिल्म का ये गाना है,
2: हाँ
1: है ना,
2: हाँ
1: आपको याद था?
0: नहीं
1: क्या प्यारा गाना याद दिलाया, वाह वाह। और कौन से क्लासिकल गाने याद आ रहे हैं?
0: चंदन सावधान ने
1: आप गाओ,

0: क्या बात क्या बात है। देखिए आज हम मुकेश जी को याद कर रहे हैं और उन्हें याद करते हुए न केवल उनके गानों की, उनकी शख्सियत की बात कर रहे हैं और अभी उनके क्लासिकल टच वाले गानों की बातों से बात करते हुए हम यहां तक आ गए। मुझे पंडित रविशंकर के म्यूजिक डायरेक्शन वाली एक फिल्म याद आ गई, गोदान।
1: गोदान राजकुमार।
0: हाँ, और इस गाने की कितनी कम चर्चा होती है।
1: वाह, सही बात, सही
0: जो भोजपुरी शैली का गाना है।

0: देखिए क्लासिकल मुकेश जो है ना, ये एक पूरा अध्याय है जहां पर एक से बढ़ के एक गाने आते हैं, और बल्कि मजाहिया गानों का भी एक पूरा मामला है ना। जैसे मुझे कहते हैं कल्लू कबाल जैसा गाना भी उन्होंने गाया है। मैं हूँ ठुमरी तू है ख्याल, मतलब ये कमाल है ना। ये देखिए राजेंद्र किशन क्या लिखते हैं इस गाने का मुखड़ा।
1: मुझे कहते हैं

0: क्या बात है।
1: मुकेश को याद करते हुए ये जो शुरुआत हमने कहा था ना कि उनको केवल सैड सॉन्ग्स के बादशाह नहीं कहा जा सकता, एक तरफ उनके गानों में रूमानियत है, दर्शन है, दूसरी तरफ जो है बहुत खिलंदड़ किस्म के, बहुत शरारती किस्म के गाने भी उनकी पूरी फिल्मोग्राफी में, उनकी डिस्कोग्राफी में बाकायदा आते हैं। लेकिन शोज में अमूमन बहुत पॉपुलर गाने ही चलते हैं, तो मुझे तौबा ये मतवाली चाल जैसा गाना याद आता है। मजरूह साहब का ये गाना,
0: तौबा ये मतवाली चाल झुक जाए फूलों की डाल, तौबा ये मतवाली चाल झुक जाए फूलों की डाल, चांद और सूरज आकर मांगे

0: गोविंद ये बताइए कि वो क्या बात है कि आज के जमाने के गाने इतना नहीं ठहर पाते हैं जितने अभी हम जितनी देर से बातें कर रहे हैं। मुझे लगता है हमने दर्जनों गानों की बात की और न जाने कितने गाने आपसे तो मैंने गवा लिए हैं। वो क्या बात है कि आज के गानों की शेल्फ लाइफ इतनी ज्यादा नहीं है?
1: एक बात जो मैं जैसा मुख्तार भाई ने कुछ समय पहले बोला था और मैं 2020 की बात करूं, 2020 में मैंने प्यारेलाल जी के साथ गुजरात टूर किया और रेफरेंस देने वाले भी यही हैं।
0: अच्छा,
1: थ्रू ही मैं गया था उनके साथ, हार्ट शो किया। जैसा इन्होंने बोला कि वो रिहर्सल में सीखने को मिलता है, वैसा वो एक्सपीरियंस मेरे साथ भी हुआ कि आठ के आठ शो में हम उनके साथ रहे, लेकिन शो से दो घंटे पहले वो मीटिंग करते थे, डिस्कस करते थे गाने को कैसे क्या करना है, कैसे करना है, किसके बाद क्या, किसके बाद वो पूरा होता था। तो उस चीज को जब मैंने फील किया तो मुझे ऐसा लगा उस टाइम पे भी ऐसे होते होंगे कि लिरिसिस्ट बैठते होंगे, कंपोजर बैठते होंगे, सब बैठते होंगे, फिर वो गाना बनता होगा। आज के दौर पर ऐसा नहीं है। आज के दौर पर मैंने भी भजन बहुत सारे रिकॉर्ड किए, तो कंपोजर आता है, वो ट्यून देकर चला गया, लिरिक्स देकर चला गया, मैं खाली गा लिया, रिकॉर्डिंग बोला मैं मिक्सिंग कर लूंगा। तो आज जैसा चल रहा है उस हिसाब से वो सोल जो होता है ना वो कनेक्ट नहीं हो रहा है। शायद यही रीजन है कि गाने आज जो है वो आ रहे और जा रहे, लोगों के मन में नहीं बैठ रहे।
0: आपका क्या कहना है मुख्तार भाई?
2: बिल्कुल गोविंद भाई ने जो बात कही वो बिल्कुल सही बात है। और ये पुराने गानों पे एक तो लिरिसिस्ट ने इतने खूबसूरत अल्फाज लिखे
0: जी, जी।
2: और म्यूजिक डायरेक्टर्स ने उतनी खूबसूरत ट्यून बनाई, गाने वालों ने, गुलकारों ने इतनी सहजता के साथ, इतनी खूबसूरती के साथ उनको अदायगी की और स्टोरी के साथ, फिल्म की स्टोरी के साथ कहीं ना कहीं रिलेटेड रहते थे। और वो फिल्मों का जो दौर था वो एक आम इंसान की जिंदगी से कहीं ना कहीं रिलेट करता था, तो इसलिए वो सारे गाने इतने मीनिंगफुल थे कि आज भी अगर खुशी के गाने सुनो तो आपको खुशी महसूस होती है, गम के गाने सुनो तो गम महसूस होता है
0: जी।
2: और आजकल के सच बात है कि फिल्मों में अमूमन ज्यादातर गाने ऐसे होते हैं कि जिसको शायद वो इस तरीके से काम नहीं किया जाता। गोविंद भाई ने बताया कि अगर सिंगर आ रहे हैं तो उनको एक लाइन बताई और उसने एक लाइन गाया और उसके बाद दूसरी लाइन उसको बताया, पूरा गाना भी शायद उनको नहीं पता हो क्या होना, एक एक लाइन पंच कर करके। और डिजिटल टाइम में ये सब शायद हो सकता है, उनके वक्त की रिक्वायरमेंट ऐसी हो
0: जी। और इसीलिए आज के संगीत में उस तरह से
2: ठहराव
0: ज्यादातर गानों में आत्मा नहीं है।
2: नहीं,
0: अब मैं आप लोगों को एक मुश्किल चैलेंज देने जा रहा हूं और वो चैलेंज ये है कि कोई एक फीमेल गाना चुनिए जिसको आपको मुकेश की आवाज में गाना है।
2: अच्छा,
0: लेकिन उसका मुकेश वर्जन नहीं होना चाहिए।
2: मुझे स्ट्रेट यही याद आ गया कि चलो मुझको इस रात की तनाई में यहाँ लौट गया जा। मजेदार बात तो है ये कि अगर मुकेश जी गाते तो कैसे गाते हैं ना।
0: हाँ, ये सुनने वालों को भी एक अंदाजा लगेगा।
2: देखिए, एक मुझे लता मंगेशकर जी का गाना बहुत पसंद है, लग जा गले के फिर यहाँ सीधा,
0: तो ये यही सुनते हैं। लेकिन एक मजेदार बात बताऊं, जैसे मैं आपसे कोई सवाल पूछता हूँ ना तो गोविंद ऐसे बैठ जाते हैं, मेरी बारी आने वाली है।
1: मैं सीरियस जाता हूँ, एक्चुअली मुख्तार भाई जो सोच रहे थे ना भाई, मैं भी सोच रहा था
0: तब तक ये
1: उनको ये गाना है
0: ये, लेकिन मजेदार होगा। लग जा गले मुकेश की आवाज में,
2: लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद

0: मैं कुछ और गाऊं थी
1: और ही गाना पड़ेगा बिल्कुल नहीं।
0: अजीब दास्तां है ये, कहां शुरू कहां खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी ना वो

0: क्या बात है, देखो क्या मजेदार है कि मुख्तार भाई ने मदन मोहन का गाना चुना और इन्होंने शंकर जयकिशन का दिल अपना और प्रीत पर आई फिल्म का गाना।
1: देखिए लोगों को लगना चाहिए हम वर्सटाइल हैं।
0: क्या बात है, सकते वाह वाह वाह, ये बहुत मजेदार बात थी। आपके परिवार की नई पीढ़ी नए गानों को सुनती है या पुराने गानों को सुनती है?
2: मेरी बेटी जो है वो पुराने गाने सुनती है और बेटा जो है वो नए गाने।
1: मैं देखिए मेरी रोजी रोटी मुकेश से चलती है।
0: हाँ।
1: लेकिन मेरे घर में मेरी वाइफ मुकेश जी को छोड़कर सब कुछ सुनती है।
0: तो आपको जबरदस्ती
1: और एकदम रेयर नंबर सुनती है, मतलब वो जो हम रेगुलर गाते हैं ना।
0: हाँ, हाँ, हाँ।
1: वो नहीं सुनती वो, इसलिए शोज में भी नहीं आती, बोलती तुम भाई तो गाओगे कुछ नया तो गाओगे नहीं। इसलिए वो आती भी नहीं है और एकदम रेयर सुनेगी वो। अनरिकॉर्डेड किशोर जी का, आशा जी का, लता जी का एकदम वो सुनेगी, क्योंकि बंगाली है तो वो अलग सुनेगी और मुझे भी सुनाती है।
0: अच्छा,
1: सुनो सुनो सुनो
0: बिठा के
1: सुनना पड़ता। हाँ, घर में खाना मिलेगा तो सुनना ही पड़ता है।
0: ये मजेदार है। अच्छा, कभी ऐसा लगता है कि जिस गाने की चलित ट्यून, जो बनी हुई ट्यून है, उससे इतर किसी और ट्यून पर उसको गाया जाना चाहिए, मुकेश जी का गाना हो कोई?
2: ये सोचने के लिए तो हम बहुत छोटे हैं। हमको तो वो जो गाने जैसे बने हुए हैं ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल परफेक्ट बने हुए, अगर इसको अगर गा लें तो वही बहुत बड़ी बात है।
0: लेकिन आजकल बहुत रीमिक्सेज हो रहे हैं तमाम तरह के गानों के, और मुखड़े उठा के कई बार ये होता है कि पूरे गाने को वैसा का वैसा रीमिक्स कर दिया, कई बार ये होता है कि सिर्फ मुखड़ा उठा लिया और आगे के अंतरे नए तरीके से लिख लिए और गाने डाल दिए। इधर के सालों में ये प्रयोग बहुत ज्यादा हो रहा है।
2: एग्जैक्टली,
0: आप लोगों की क्या राय है इस बारे में?
2: मैं समझता हूं कि जो अभी ये कंटेम्प्रेरी जो सिंगर्स प्रोग्राम या वो करने लगे हैं या थोड़ा बहुत अगर फिल्मों में कर रहे हैं, तो वो रिमिक्स का जो बीच में थोड़ा सा एक दौर आया जिसमें कुछ एक एडिशनल रिदम उन लोगों ने ऐड करके थोड़ा उसको डांसिंग मोड बनाने की कोशिश की कोई भी गानों के अंदर। मैं जैसे नेदरलैंड भी जाता हूं तो शो के बाद वो लोग एक सक्सेस पार्टी करते हैं, शो खत्म हो गया पूरा ही पुराने गानों का जैसा था वैसा, फिर वहां के वो गोरे म्यूजिशियन हमारे साथ ये पुराने गाने गा रहे हैं। अब अगर वो तेरे प्यार का गम, तो अब उसमें उन लोगों को डांस करना है, तो वो उसके अंदर वो थोड़ा सा बेस गिटार वो ऐड करके तो उसको वो रिदम दे दिया जाता है कि उन लोगों को वैसे उसमें मजा आ रहा हो डांस करने।
0: क्या मजेदार बात है, मतलब ये सोचना ही मजेदार है कि वो तेरे प्यार का गम जो है वो जैज हो जाए, रॉक हो जाए, उसमें वायलिंस आ जाए, उसमें बेस गिटार आ जाए, ये तो अलग ही बात हो गई पूरी तरह से।
2: तो शायद ये नए लोगों ने इस वजह से, यंगस्टर्स की वजह से शायद ये किया हो, थोड़ा लोगों को लिरिक्स से उनको मतलब नहीं, जो शायद ये नई पीढ़ी है ज्यादातर लोगों को, और डांसिंग बीट अगर चल रहा है तो वो दे एंजॉय।
0: गोविंद, आपका क्या कहना है रिमिक्सेस के बारे में, गानों को नई शक्ल देने के बारे में?
1: मैं तो इसके खिलाफ हूं, मैं मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि पुराने जमाने में जो गाने बने हैं वो कुछ सोच के ही बने होंगे। आपके पास उनसे कुछ बेहतर है तो आप लेकर आइए, उनसे कुछ बेहतर नहीं है तो आप मत कीजिए, छेड़खानी मत कीजिए। और आप अभी का जनरेशन की बात करूँ तो मतलब मेरा ऐसा मानना है या मैंने देखा भी है बहुत जगहों पर कि आजकल छोटे बच्चे भी जो हैं, जो 10 12 15 साल के, जो जनरेशन आजकल जो चल रही है, वो पुराने गानों की ही ट्यून सीख रहे हैं।
0: बिल्कुल,
1: और वो गा भी रहे हैं। मैंने कई जगह पर बहुत से लोग मेरे साथ गाते भी हैं पुराने गानों को, जैसे भाई अजीब दास्ता मैंने गाया, इन्होंने लग जा गले गाया, वो सब गाते हैं, किसी की मुस्कुराहटों पे गाते हैं, जीना यहाँ गाते हैं, जाने कहाँ गए, ये सब गाते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है सुन के।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: भाई,
0: आज इतने बरस बाद भी, और हम तो विविध भारती में बैठे हैं जिसने संगीत को, पुराने संगीत को बाकायदा बचा कर रखा है, और दिन रात हम वही गाने तो प्ले करते हैं।
2: बिल्कुल, और शायद यही वजह क्या, अभी जितने ये बड़े सिंगर्स जो स्टेज प्रोग्राम भी करते हैं, तो मैंने इनको लाइव शोज में भी देखा है कि वो अपने गाने या डांसिंग और उसके बाद भी एक अपना एक पार्ट तो ऐसा रखते हैं जिसमें वो पुराने गाने गाते हैं, और वो लोगों को वो भी बहुत अच्छे लगते
1: हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मुकेश के गाने गाते हुए लाइव शोज में आपने देखा कि लोग जज्बाती हो रहे हैं, आंखों से आंसू आ रहे हैं?
2: यस यस,
0: है ना,
2: यस।
0: ये जो है कहीं ना कहीं वो गाने कनेक्ट करते हैं।
2: Exactly.
0: किसकी जिंदगी में क्या चल रहा है, तो जाने कौन सा दर्द उभर के आ जाता है।
2: एग्जैक्टली Exactly. सही बात है।
0: अब आप दोनों से ये रिक्वेस्ट है कि एक एक दर्द भरा गाना आप लोग गाइए।
2: मैंने अक्सर ये देखा है कि जैसे जाने कहाँ गए वो दिन, ये गाना हुआ या दोस्त दोस्त ना रहा या एक दिन बिक जाएगा, ये गानों में कभी शो खत्म होने के बाद कोई ऐसा ऑडियंस में से कोई आता है और वो बोलता है कि आप वो गा रहे थे तो मेरे आंख में आंसू आ गए, क्योंकि ये गानों का फील इतना जबरदस्त है,
0: बिल्कुल
2: इसको बनाया गया है, ऐसे ट्यून इतनी खूबसूरत है। तो शायद कहीं ना कहीं अगर इंसान की अपनी जिंदगी के साथ कोई ऐसा हादसा हुआ या रिलेट कर रहा है वो
0: जी,
2: तो जज्बात उसके उभर आते हैं।
0: बिल्कुल।
2: तो जाने कहाँ गए वो दिन जा।

0: क्या बात है, बिल्कुल मन में वायलिन बजने लगा गाने को सुनकर। गोविंद आप कौन सा दर्द भरा गाना गाएंगे?
1: मुझे तो एक गाना बहुत पसंद है और बहुत कम गाने को मौका मिला, जाऊं कहां बताए दिल, दुनिया बड़ी है संग दिल।

0: जाऊं कहां बताए दिल, दुनिया बड़ी है संग दिल, चांदनी आई घर जलाने, सूझे न कोई मंजिल।
1: क्या बात है, ये वो गाने हैं जो जिंदगी के तनावों और दबावों में हमें थामते हैं। अब एक बात बताइए कि अगर फिल्म इंडस्ट्री में बाकी तमाम गायक होते और मुकेश न होते तो कितनी सुनी होती ये दुनिया।
2: मतलब अब हमारे हिसाब से अगर आप देखें तो हमको तो बहुत सारा वैक्यूम दिखाई देता अगर जी। मुकेश जी नहीं होते तो
1: जी
2: क्योंकि मुकेश जी ने गाने कम गाए हैं बनिस्बत और प्लेबैक सिंगर्स के, लेकिन आप भी जानते हैं कि उनका जो पॉपुलैरिटी का रेट है, ग्राफ है, वो अगर कंपैरिजन किया जाए जितने नंबर ऑफ सॉन्ग्स दूसरों ने गाए हैं वो सबसे ज्यादा है।
1: आम जनता के बहुत चहेते गायक,
2: बहुत चहेते गायक थे। यस यस
1: गोविंद, आप क्या कहेंगे?
0: बिल्कुल ये बात तो सही है मुख्तार भाई से, मैं एकदम वो सहमत हूँ कि एकदम अगर वो नहीं होते तो एक खालीपन होता। और गाने भले बहुत कम गाए हैं और हाँ। मैंने बहुत लोगों के मुंह से सुना है कि नंबर ऑफ सोलोज जितने हुए, डुएट्स सब ज़्यादा हिट्स उनके पास ही हैं। और गुजरात के तो बाप रे बादशाह ही माने जाते हैं वो। गुजरात में तो हर घर में, हर गली गली में उनके गाने बजते हैं।
1: तो दामाद थे वो गुजरात,
2: दामाद
1: गुजरात
2: ना, दामाद
1: है। उनकी जो पत्नी है उनका नाम था सरल वेन, है ना, उनसे उनकी शादी हुई थी। और ये शादी जो है ये कांदीवली के एक मंदिर में की गई थी। उन्होंने घर वालों की मर्जी के खिलाफ ये शादी की थी सरल बेन के साथ।
2: जी जी जी जी,
0: देखिए ना क्या रंग आ गया था, गुजराती बोलने लगे थे,
1: गुजराती गाने भी गाए,
0: गुजराती गाने भी।
2: और आज तक जो 22 जुलाई है जिस दिन जो उनका जन्मदिन है वही उनकी शादी का दिन।
1: हाँ बिल्कुल, ये भी बहुत दिलचस्प बात है।
2: और शायद पर्पजली उन्होंने उसी दिन किया होगा।
1: हाँ मेरा ख्याल शायद कितनी
2: 46 में,
1: हाँ, और तब उनकी उम्र थी 23 साल।
2: 23 साल
1: कुछ गुजराती गाने गाए उन्होंने,
2: 49 सॉन्ग्स है मुकेश जी के।
1: तो फिर हम कुछ सुनना चाहेंगे आपसे क्योंकि आप अहमदाबाद से आते हैं तो गुजराती तो गाएंगे।
2: बहुत मशहूर गाना जो कल्याण जी आनंद जी के म्यूजिक में है, नजर ना जाम छलकावी ने चाल्या क्या तमे,

0: क्या तमें,
1: क्या बात है, क्या बात है, कितनी मिठास है इस गाने में।
0: जी
1: बल्कि वो जाया भी करते थे गुजरात रेगुलर, है
0: ओ,
1: ना, वहां
0: बिल्कुल
1: शोज भी उन्होंने काफी सारे
0: काफी
1: किए।
0: सारे किए।
1: कई लोग किशोर वर्सेस मुकेश करते हैं और कहते हैं कि एक कॉम्पिटिशन थी, जबकि ऐसा नहीं था। किशोर, मुकेश, रफी एक दूसरे को बहुत ज्यादा पसंद किया करते थे। इन तीनों महान गायकों की अपनी अपनी जगह है।
0: एग्जैक्टली
1: बिल्कुल
0: यस।
1: बिल्कुल। अब कौन सा गाना सुनाने वाले हो गोविंद आप?
0: मुख्तार भाई ने गुजराती गाना गाया, मैं भी गुजराती गा लेता
1: अरे बाबा क्या बात है,
0: हूं
1: जरूर।

0: आंखों चार करी ने, बीमार करी ने मारा भोरा दिलो।
1: वाह वाह वाह, एक बिल्कुल अलग रंग आ गया। गुजराती गाने हमने सुने। ये जो आखिरी दौर था मुकेश जी की गायकी का, उसमें उन्होंने बहुत अलग अलग तरह के गाने गाए, चाहे वो धर्मात्मा हो, धर्म कर्म हो, कभी कभी हो, ये बाद के दौर के जो गाने हैं उनके, उनमें से कुछ गानों को याद कीजिए।
2: जैसे मुक्ति।
1: हाँ हाँ, अरे वाह वाह वाह वाह, क्या बात है।
2: आर डी बर्मन जी,
1: आर डी बर्मन के साथ बहुत कम गाने हैं ना।
2: हाँ, 16 गाने हैं।
1: हाँ, एक फिर कब मिलोगी भी है।
2: हाँ, हाँ, लेकिन आमतौर से लोगों को जो पता है वैसे 5 ही गाने हैं।
1: अच्छा,
2: जो 16 गाने कुल गाए उनके साथ वैसे उन्होंने।
1: हाँ, हाँ, हाँ,
2: लेकिन
1: मुक्ति, सुहानी चांदनी रातें।
3: हाँ,

0: क्या बात है, क्या प्यारा आलाप है इस गाने में लता जी का, और जी। क्या रंग आता है। मुख्तार भाई मेला और अंदाज जैसी फिल्मों में मुकेश नौशाद के लिए गाते हैं, फिर एक बहुत लंबा गैप आता है।
1: गैप आ गया, हाँ।
0: और उसके बाद कहां वापस आते हैं, साथी में।
1: साथी,
0: साथी की तरफ मैं आना चाहता हूं। क्या प्यारे गाने हैं, हालांकि एक दो गाने हैं जिनकी चर्चा होती है। आप मेरा इशारा समझ रहे हैं कि मैं किस गाने का जिक्र करने जा रहा हूं।
1: हाँ, हुस्ने जाना है।
0: एग्जैक्टली इसी गाने की बात करनी है।
1: हुस्ने जाना इधरा, आईना हूं मैं तेरा, हुस्ने

0: क्या बात है, क्या बात है। यहाँ कुछ बातें जो ये जो गानों के बीच में जो जानकारी की पुड़ियाएं मैं छोड़ता रहता हूँ वो जरूरी है बताना कि मजरू साहब अंदाज में लिखते हैं नौशाद साहब के लिए, और उसके बाद एक पूरा लंबा गैप आता है। कई दशक के बाद साथी में फिर से नौशाद और मजरू आते हैं, मुकेश और नौशाद आते हैं, और ये पूरा वेस्टर्न नोटेशन वाला मामला था जो कि नौशाद की फितरत नहीं थी। तो ये एक बड़ी बात है। केरसी लॉर्ड जो है उन्होंने सारा अरेंजमेंट इन गानों का किया था। बारिश का मौसम है और मुकेश जी की याद जो है जुलाई और अगस्त ये वो महीने हैं जो जब पानी जम के बरसता है, और मुकेश जी का जन्मदिन आता है और उनकी याद का दिन 27 अगस्त भी आता है। बारिश के कुछ गानों की बात करते हैं। पहले शोर नहीं बाबा शोर
1: सावन।

0: और अब बारिश का दूसरा गाना।
1: उषा खन्ना जी।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
2: मैं कहने वाला था
0: इशारों में बात हो रही है। सबक
1: बरखा।

0: जैसे इस साल गर्मी पड़ी है हाँ। मुझे लगता है ये गाना बिल्कुल मुफीद है कि बरखा रानी जरा जम के बरसो, उतना ज्यादा जम के ना बरसो,
1: आना जाना मुश्किल हो जाए
0: लेकिन फिर भी बरसो, है ना। बारिश के दिनों में या कभी भी ऐसा हुआ है कि कभी किसी शो के लिए बहुत लेट हो गए हो और एकदम से सीधे स्टेज पर जाना पड़ा हो?
1: हाँ हाँ, ऐसा कई मरतबा ऐसा मौके आए हैं कि बारिश के दिनों में, क्योंकि आमतौर से अपने का थोड़ा सा सिस्टम जो है रोड पे पानी भर जाना या हाँ, हाँ। कभी गाड़ी अगर जा रही और गाड़ी खराब हो गई, कहीं ट्रैफिक जैम है तो कभी थोड़ी सी देरी हो गई है। एक दो मरतबा ऐसा मेरे साथ भी हुआ है
0: और सीधे स्टेज पर जाना पड़ा।
1: सीधे स्टेज पर जाना पड़ा है
0: तो कैसी कैफियत होती है उस वक्त?
1: थोड़ा सा वो होता है अनकंफर्ट, लेकिन ठीक है, वो थोड़ा सा एक एक्सपीरियंस और वो रहता है तो प्रैक्टिकली इसको निभा लेते हैं।
0: अब गोविंद, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि एकदम से डिलेज हो गए और भागते दौड़ते हाँफते हुए?
2: मैं तो एक बार प्रबोधन ठाकरे में ऐसा हो गया था, एकदम अटक गया था और ब्लेजर पहनने का मौका नहीं मिला था ऐसे ही जाके पहला गाना गाया, उसके बाद आके चींचिया।
0: क्या बात है,
2: कर्टन ओपन हो चुका था, अनाउंस एंकर ने अनाउंस कर दिया सब है, अब इंस्ट्रूमेंट दो दो बार बज गए।
0: अरे बाप रे बाप,
2: सिंगर आया ना, माइक भी चेक नहीं किया, जैसे मिला वैसे गाया।
0: और उसमें ये है कि आपको अपना एक तो बैलेंस प्रॉपर रखना है ना, और उसके बाद गाने को पूरी तरह से निभाना है क्योंकि लोग सीधे मुकेश जी से तुलना कर रहे हैं।
2: आप कितने भी टेंशन रहे बैक स्टेज, आपको टेंशन छोड़ के स्टेज पे रिलैक्स होकर जाना है।
0: बिल्कुल,
2: लोग सुनने के लिए आए हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमको बेस्ट देना है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो कभी ऐसा होता है कि सफर करते हुए लोगों ने पहचान लिया और कहा कि भाई आपके गाने बहुत अच्छे लगते हैं, हमने आपके फला शो में आपको देखा था?
1: हाँ, ऐसा तो बहुत मर्तबा होता है।
0: और लोग गाने वाने की फरमाइश भी कर देते हैं?
1: कभी कुछ लोग होते हैं ऐसे कि हाँ, कि बोल देते, कह रहे यार दो लाइन गा ही दो।
0: मतलब मूड है कि नहीं
1: वो नहीं, वो लोगों का तो, लोग इतने वो स्पॉन्टेनियस होते हैं, तो शायद वो एक जज्बात में आ जाते हैं शायद, हाँ, देखने के बाद के उनको ऐसा लगता है कि शायद ये हर जगह यही काम करते रहे।
0: मतलब स्विच ऑन स्विच ऑफ का मामला गोविंद आपके साथ भी होता है?
2: बहुत बार हुआ है, अभी तो एक रिसेंट में भी हुआ था, मैं आरसीटी गया था वाइफ के साथ कुछ कपड़े लेने के लिए, तो वाइफ तो लेडीज सेक्शन चली गई, मैं जेंट्स में, तो मेरे पीछे पीछे एक आदमी घूम रहा है।
0: अच्छा,
2: मुझे समझ नहीं आ रहा है क्यों घूम क्यों रहा है मेरे पीछे पीछे। मैं मेरी वाइफ को इशारा किया, देखो कोई घूम रहा है, तो फिर पीछे से किया, मैं कहा मिश्रा भाई तमें सिंगर छो? हाँ। अरे वाह, मैं आपको सुनता हूँ, बड़ा मजा आता है ऐसा वैसा, एक सेल्फी ले लें फोटो, ठीक है कुछ गा दीजिए, किसी की मुस्कुराहटों पे गा दीजिए।
0: अरे बाप रे बाप, मतलब आप
2: यहाँ पे कैसे? हाँ, यहाँ पे कैसे गाओ? फिर गाया दो लाइन धीरे से उसके लिए मैंने।
0: देखिए ये होता है,
2: क्या करें, किसी को नाराज नहीं कर सकते,
0: जो संगीत के दीवाने उनको खुश करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। अच्छा ये बताइए, आज की इस बहुत शोर भरे, भाग दौड़ भरे, व्यस्तताओं से भरे जमाने में मुकेश को सच्ची श्रद्धांजलि क्या हो सकती है?
1: थोड़ा सा वैसे तो मुश्किल सवाल है ये, लेकिन यही है कि मैं पर्टिकुलरली मानता हूँ कि इंसान अपनी भाग दौड़ भरी जिंदगी के अंदर, खासतौर से पुराने गाने, चाहे वो मुकेश जी के हैं और सेंटिमेंटल सॉन्ग्स, चाहे वो किशोर कुमार साहब के आप सुन लो या रफ़ी साहब के, अगर ये पुराने गानों के अंदर इतना ठहराव और सुकून है कि अगर आप वो सुन लो तो दिमाग डेफिनेटली आपका खुश हो जाता है या शांत हो जाता है। और इसी वजह से मैं हमेशा स्टेज पर कहता हूँ कि ये पुराने गानों के अंदर जो बात है, जो मेलेडीज़ हैं, अगर ये पुराने गाने आपने ढाई तीन घंटे सुन लिए तो अगले एक साल तक यकीन मानिए कि नो कार्डियोग्राम, नो ECG, नो ब्लड टेस्ट।
0: बड़ी प्यारी बात बोली गोविंद, आप बताइए।
2: बिल्कुल बिल्कुल, और मैं तो बहुत लोगों के मुँह से सुन भी लिया हूँ कि बोलते हैं कि म्यूजिक से अच्छा मेडिसिन कुछ नहीं है। और आज के टाइम पे इतना दौड़ भाग वाली जिंदगी में सबको रिलैक्स चाहिए, और जो ढाई तीन घंटे का, चार घंटे का समय लोग निकाल के आते हैं हमें सुनने के लिए, वो उस समय, मतलब मैं तो कितने लोगों को सुनते हुए ऐसा बोलते हैं मुझे कि ये तीन चार घंटे ममूस एरा में चले जाते हैं, अब एकदम भूल जाते हैं सब कुछ, सारी दिमागी टेंशन एकदम खत्म हो जाती है, वो तीन घंटे का रिलैक्स हमको अगले एक हफ्ते तक का एनर्जी देता है।
1: एग्जैक्टली।
0: अच्छा ये जो आजकल इंस्टाग्राम का और ये जो 60 सेकंड की और 30 सेकंड की रीलों का जमाना आ गया है, क्या उससे लोगों का फोकस खत्म हुआ है? क्या आपको ये लगता है कि ऑडियंस में कोई बंदा फोन पे लगा हुआ है या हम गा रहे हैं?
1: हाँ, कुछ लोग होते हैं ऑडियंस में डेफिनेटली, ऐसे इस दौर में भी मैंने देखा कि हमारे पुराने गानों का प्रोग्राम चल रहा है, कुछ लोग ऐसे होते हैं, शायद हो सकता है कि वो लोग हों जो किसी के बुलाने की वजह से शर्म में आए हों या ज़बरदस्ती, या शायद वो चीज़ को लाइक नहीं करते हों, क्योंकि जिसको खुदा ने संगीत दिया ही नहीं है दिल में, और उसको अगर वो जगह पर ला कर बिठा दो तो शायद उसके लिए टाइम पास कैसे कर

0: और यहां से मैं अपना खत्म करके जाए, ऐसे शायद वो लोग होते होंगे। बाकी आम तौर से अमूमन मैंने देखा है कि जो लोग हमारे पुराने गीतों को सुनने आते हैं प्रोग्राम में, वो फुल्ली एंजॉय करते हैं। और मेरा बिल्कुल मानना ये है कि जो दिल से जुड़ा हुआ पुराने गीतों के साथ, मेलेडीज के साथ है, अगर वो दिल से इसको एंजॉय करेगा तो उसकी डेफिनेटली पॉजिटिव इफेक्ट वो इंसान के दिल और जहन पे होगी।
1: बिल्कुल, बहुत ही प्यारी बात है। गोविंद, आप क्या कहेंगे कि जो भी लोग लाइव म्यूजिक सुनने आते हैं, चाहे वो फिल्म म्यूजिक हो या इंस्ट्रूमेंटल हो या क्लासिकल म्यूजिक हो, मोबाइल एटिकेट क्या होने चाहिए? लोग किस तरह का न्यूसेंस करते हैं?
2: इसका जवाब तो मैं मुख्तार भाई से ही चाहूंगा, वो ही दें, क्योंकि सीनियर यही है, ये ज्यादा देते हैं।
1: सबसे पहले तो अपना
0: मोबाइल म्यूट रखना
2: वो
0: चाहिए,
2: तो जरूरी है,
0: डेफिनेटली
2: वो तो जरूरी।
0: और
2: है।
0: अगर आपका एटलीस्ट कभी कोई इंसान ऐसा है कि प्रोग्राम में आया और उसको कोई ऐसा इमरजेंसी कॉल वो एक्सपेक्ट कर रहा है, तो एटलीस्ट वो वाइब्रेशन पे रख दे ताकि उसको इतनी पता चल जाए। लेकिन आप जो जिसको एंजॉय करना है उसको दिल से एंजॉय करना चाहिए,
1: बाकी लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए।
0: एग्जैक्टली,
1: मुझे लगता है कि हम अपनी इस बातचीत की लगभग आखिरी दौर में आ गए हैं और अब अपनी अपनी पसंद के कुछ गाने आप लोग जो हैं उनका जिक्र करेंगे और उनमें से कुछ गाएंगे और उसके बाद फिर हम अपने श्रोताओं से इजाजत लेंगे।
0: जहां तक ताल्लुक यूनुस भाई हमारा ये पसंद का है, तो हमको तो मुकेश जी के सारे गाने पसंद हैं। लेकिन आप पर्टिकुलरली, जैसा मैंने बताया कि कलाकार होता है तो वो इमोशंस के साथ जुड़ा हुआ होता है, तो हमको थोड़े वैसे गाने अच्छे लगते हैं। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे हुआ है, जिस गली में तेरा घर ना हो, बालमा हुआ।

0: हमें पाँव रखना नहीं, जिस गली में तेरा घर ना हो बालमा।
1: अब मैं आपको ऐसे फंसाने वाला हूँ जैसा किसी ने नहीं फंसाया होगा।
2: ऑलरेडी आप कर चुके हो।
0: कब से सोच रहा हूँ मैं।
1: अब मैं चाहता हूँ कि आप लोग अंताक्षरी खेलें। आप एक गाना गाएं और अब जाहिर है कि इनको जवाब देना पड़ेगा, तो ये करते हैं 5 मिनट तक।
2: एक चलिए मेरा पसंदीदा गाना। हाँ।

0: लो भाई
1: एच,
0: गोविंद।
1: हाँ एच है। हाँ
2: हरी हरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन, कि
0: ये
2: जिसके बाद

0: रंग भरी चमक रही उमंग भरी, ये किसने फूल फूल पे, ये किसने फूल फूल पे किया सिंगार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
1: राव पर लाकर छोड़ा है इन्होंने।

0: क्या प्यारी बात है। इसी स्टूडियो में जहां हम बात कर रहे हैं योगेश जी आए थे और उन्होंने अपने गानों की कितनी सारी कहानियां मुझे सुनाई थी। बहुत प्यारे शानदार गीतकार, कितना प्यारा गाना उन्होंने ये लिखा है। और देखिए मुकेश के गानों से भी अंताक्षरी खेली जा सकती है, ये हमने अपने सुनने वालों को बताया कि केवल मुकेश के गानों की अंताक्षरी हुई। एक आइडिया हमने लिसनर्स को दिया है कि वो मुकेश को सच्ची श्रद्धांजलि ये होगी कि उनकी अंताक्षरी भी खेले अपने घरों की महफिलों में, अपने आयोजनों में, तो कितना मजा आएगा। अब बस श्रोताओं से इजाजत लेने की बारी है, तो मुकेश को श्रद्धांजलि देते हुए आप दोनों मिलकर कौन सा गाना पेश करेंगे?
1: जीना है मरना है कल।

0: क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र भाई, आप दोनों ने वक्त निकाला मुकेश जी की याद के लिए, ये महफिल विविध भारती में सजाई, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: बहुत बहुत शुक्रिया यूनुस भाई आपका भी, विविध भारती का भी, और उम्मीद करते हैं कि सुनने वालों को बहुत मजा आएगा इसको सुनकर, और बहुत दिल से हम सभी सुनने वालों का आपका शुक्रिया अदा करते हैं।
2: आप, हाँ बिल्कुल, विविध भारती का और यूनुस भाई आपको बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि मुकेश जी के गानों को और घर घरों में गुनगुनाया जाएगा और गाया जाएगा।
0: बहुत शुक्रिया,
2: थैंक यू।
0: ये था पार्श्व गायक मुकेश की याद में एक विशेष कार्यक्रम। आज आपने इस कार्यक्रम की दूसरी कड़ी सुनी। इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान थे गायक मुख्तार शाह और उनके साथ गोविंद मिश्र। इन दोनों से बातचीत की आपके इस दोस्त यूनुस खान ने। रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। आज पिटारा लाया था आज के मेहमान। आप और हम अब मिलेंगे अगले हफ्ते आज ही के दिन, मगर पिटारा तो भाई हर रोज खोला जाता है। कल भी खोलिए, रोज खोलिए और सुनिए पिटारा पिटारा पिटारा।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के प्रसारण FM बिंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमे चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजे हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम युववाणी।

अंधकार से खींचकर जो प्रकाश की ओर ले जाते हैं, जीवन जीने का जो हमें सही मार्ग दिखलाते हैं, वो कोई और नहीं, हमारे पूज्य गुरु कहलाते हैं, हमारे पूज्य गुरु कहलाते हैं। जी हाँ दोस्तों, गुरु पूर्णिमा की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। 103.7 MHz पर स्वागत है आपका। आप सुन रहे हैं युवाणी, मैं हूँ कंचन रोशन। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं दोस्तों। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बिल्कुल सही कहा गया है कि जो गुरु का पद है वो वास्तव में असीम है, और जिसे हम किन्हीं शब्दों के माध्यम से हम यूँ कहें कि बांध नहीं सकते और बयान नहीं कर सकते। गुरु वह दीपक है जो अज्ञान के अंधकार को दूर कर जीवन को प्रकाशमय बना देते हैं। गुरु चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। दोस्तों सही कहा है, गुरु बिना ज्ञान नहीं और ज्ञान बिना गति नहीं। जब संसार में अज्ञान का अंधकार बढ़ता है, तब परम पिता, परम शिक्षक, परम सद्गुरु, निराकार, हम यूँ कहें कि परमात्मा के रूप में ईश्वरीय ज्ञान का जो दिव्य प्रकाश देकर मानव जीवन को श्रेष्ठ दिशा प्रदान करते हैं। और हमारे जीवन में गुरु के अलग अलग रूप भी होते हैं, और उन रूपों के बारे में भी हम जानेंगे दोस्तों। जिन रूपों के माध्यम से हर एक बच्चा छोटी एज से लेकर बड़ा होने तक अलग अलग चीज़ों को सीखता है, आगे बढ़ता है, और न जाने कितने गुरु हमारे रास्ते में आते हैं जो हमें सिखाते हैं और हमें बड़ा बनाते हैं। निश्चित रूप से अनगिनत उन सब लोगों को हम आज के दिन कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, और जो चीज़ें हम सीखे हैं उन्हें आने वाले समय में हम अप्लाई भी कर पाएंगे। साथ ही हमसे जो छोटे हैं, हमारे स्टूडेंट हो, चाहे बच्चे हो, चाहे हमारे भाई बहन या फिर आसपास के लोग हों, उन्हें भी उसी प्रकार से सिखा पाएंगे बिना किसी इफेक्ट के। दोस्तों हमारी बातें आगे भी जारी रहेगी, पहले सुनते हैं कार्यक्रम का ये गीत।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: श्रोताओं, प्रत्येक गुरुवार को युववाणी कार्यक्रम के अंतर्गत होता है ईमेल पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद। अपनी फरमाइश भेजने के लिए हमें ईमेल कीजिए हमारी ईमेल आईडी youthexpressnagore@gmail.com पर। इसमें आप लिखिए अपनी पसंद की फिल्म का नाम, गाने के बोल, आपका नाम, आपके शहर या गांव का नाम और भेज दीजिए हमारे ईमेल आईडी पर YOUTH EXPR

किताबों के ज्ञान से आगे जो चरित्र को संवारते हैं, गिरते हुए कदमों को जो प्यार से थाम लेते हैं, मिट्टी की इस मूरत को जो सुंदर इंसान बनाते हैं, वो कोई और नहीं हमारे पूज्य गुरु कहलाते हैं। ईश्वर से भी ऊंचा दर्जा इस दुनिया ने जिनको दिया, उनके चरणों को छूकर ही मन का संशय दूर हुआ। जो निस्वार्थ भाव से अपनी हर सीख हमें दे जाते हैं, वो कोई और नहीं हमारे पूज्य गुरु कहलाते हैं। बिल्कुल दोस्तों, गुरु पूर्णिमा भारत का एक अत्यंत पवित्र त्यौहार है, जो हर एक धर्म में अपना अपना अलग आध्यात्मिक और शैक्षणिक गुरुओं के सम्मान में मनाया जाने वाला महत्वपूर्ण रूप रखता है। दोस्तों, इस दिन को व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं, क्योंकि इसी दिन महाभारत और चारों वेदों के रचयिता महर्षि वेदव्यास का जन्म हुआ था। साथ ही बौद्ध धर्म के अनुयायी इस दिन को भगवान बुद्ध के सम्मान में मनाते हैं, क्योंकि उन्होंने ज्ञान प्राप्ति के बाद सारनाथ में अपना पहला उपदेश इसी दिन दिया था। यौगिक परंपरा के अनुसार भगवान शिव इसी दिन आदि गुरु बने थे और उन्होंने सप्त ऋषियों को योग का जो परम ज्ञान है इसी समय दिया था। अगर हम बात करें गुरु शब्द के अर्थ की ओर, तो अंधकार को हटाने वाला, अर्थात जो हमें अज्ञान के अंधकार से ज्ञान की प्रकाश की ओर ले जाता है, वही गुरु है, और यही इस शब्द का शाब्दिक अर्थ भी। गुरु केवल किताबी ज्ञान नहीं देते, बल्कि जीवन के जो उतार चढ़ाव है उसमें सही रास्ता दिखाकर हमारा चरित्र निर्माण करते हैं, सच्चे मार्गदर्शक होते हैं। दोस्तों, शिष्य अपने गुरुओं को जितना सम्मान दे निश्चित रूप से कम है, और किसी भी उपहार और भेंट को हम इस रूप में नहीं मान सकते जिस रूप में हमारे ऊपर उनका ऋण है। और कहा भी गया है कि तीन प्रकार के ऋण, जिनमें गुरु ऋण भी सबसे बड़ा ऋण माना जाता है, और हमें हमेशा उन गुरुओं के प्रति सम्मान की भावना रखनी चाहिए और सीखने के नज़रिए से आगे बढ़ते हुए इसी प्रकार का आदर्श आने वाले लोगों के लिए प्रस्तुत करना चाहिए। दोस्तों, ये तो बात हुई आज की विशेष पर्व गुरु पूर्णिमा की। अब हम सुनते हैं कार्यक्रम का ये गीत।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: पापा, कॉलेज की फीस ज्यादा है।
3: बेटा,
4: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
3: 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
5: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री।
3: चलो,
2: कहाँ
3: एडमिशन कराने?
5: खाता हुआ एक्टिव।
6: आरबीआई कहता है
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
8: दोस्तों, बात करते हैं आधुनिक शिक्षा प्रणाली में मेंटरशिप यानी कि मार्गदर्शन की ज़रूरत किस प्रकार से है छात्रों को। ये छात्रों को सही दिशा, मानसिक संबल और करियर से जुड़ी स्पष्टता प्रदान करती है और आज के समय की निश्चित रूप से एक बड़ी आवश्यकताओं में से है। आज के तकनीकी युग में केवल किताबी ज्ञान काफ़ी नहीं है, बल्कि सही मार्गदर्शन की मदद से छात्र अपनी पूरी क्षमता को पहचान पाते हैं और जिसके द्वारा हर एक प्रकार का जो चैलेंज है, हर एक प्रकार की जो चुनौतियां उनको मिलने वाली है, उन सबको वो उस प्रैक्टिकल अनुभव के साथ फेस करने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि उसने वो सारी चीज़ें देखी नहीं होती, लेकिन जो मेंटर है, उसका जो मार्गदर्शक है, वो निश्चित रूप से उसे सारी चीज़ों से रूबरू करवाता है और उसी आधार पर वो आगे बढ़ता है। तो इस प्रकार का छात्र निश्चित रूप से अन्य छात्रों से आगे जाएगा। दोस्तों, बदलते समय में ढेरों नए विकल्प उपलब्ध हैं, जहां एक मेंटर छात्र की रुचि के अनुसार सही रास्ता चुनने में मदद करता है। आज की जो पढ़ाई है, उसके तनाव और प्रतिस्पर्धा के दौर में मेंटर छात्रों का आत्मविश्वास बनाए रखने में भी अहम भूमिका निभाता है और इस तरीके से वो अपना जो मानसिक स्वास्थ्य है उसको बनाए रखते हुए, उसको मैनेज करते हुए आगे बढ़ता है और निश्चित रूप से वो अपना मजबूत पक्ष बना पाता है। कक्षा के सैद्धांतिक ज्ञान को असल जिंदगी और काम के माहौल में लागू करना मेंटर के लिए बहुत ही आसान होता है और उसी प्रकार से वो बालकों को, अपने जो छोटे स्टूडेंट्स हैं उनको सिखा पाता है। छात्रों में संवाद शैली, समस्या समाधान और नेतृत्व के गुण भी इसी प्रकार से विकसित हो पाते हैं और जो स्किल है वो डेवलप होती है। दोस्तों, छात्रों को अपनी ताकत और कमजोरियों को बिना किसी डर के समझने का मौका भी मिलता है। पारंपरिक कक्षा के विपरीत, छात्र अपना व्यक्तिगत और शैक्षणिक सवालों को खुलकर साझा इस प्रकार के माहौल में कर पाते हैं। मेंटर की छत्र छाया में छात्र सिर्फ अच्छे अंक लाना नहीं, बल्कि एक बेहतर इंसान बनना सीखते हैं, जो वास्तविक शिक्षा का उद्देश्य भी है, क्योंकि अंक प्राप्त किसी भी प्रकार से किए जा सकते हैं, लेकिन अगर वो बेहतर इंसान बन गया तो आने वाले समय में चाहे उसे किसी भी प्रकार की बाधा का सामना करना पड़े, कैसा भी समय हो, लेकिन वो उभर जाएगा। मात्र केवल अंक लाना पर्याप्त नहीं, लेकिन बेहतर इंसान बनना बहुत ज़रूरी है। सही मार्गदर्शन से छात्रों में खुद के फैसले लेने का साहस और परिपक्वता आती है, जो उसे आने वाले फ्यूचर के लिए तैयार करती है और अलग अलग प्रकार के चैलेंजेस के लिए भी। दोस्तों, जब एक शिक्षक अपने छात्र को जीवन में सफल होते देखता है तो उन्हें अपने पेशे पर निश्चित रूप से गर्व महसूस होता है और उसकी वास्तविक सफलता भी उसी में है। शिक्षक छात्रों की पारिवारिक, मानसिक और सामाजिक स्थिति को बेहतर समझ पाते हैं, जिससे कि वह अधिक सहानुभूतिपूर्ण बनते हैं और इसी प्रकार से जो शिक्षक का व्यक्तित्व है उसे भी गढ़ा गया है। छात्रों की वास्तविक समस्याओं को जानकर शिक्षक अपने पढ़ाने के तरीके को और अधिक व्यवहारिक बनाते हैं। जो टीचिंग मेथड्स हैं उनको बदलते हुए उसी प्रकार से आज के माहौल के अनुसार तैयार करते हैं, ताकि छात्रों तक आसानी से पहुंच सके और उनके मन तक उतर सके। साथ ही शिक्षकों में सिर्फ लेक्चर देने के बजाय एक मार्गदर्शक और नेता के रूप में नेतृत्व करने की जो क्षमता है वो भी विकसित होती है और उसी क्षमता के दम पर वो हर एक बालक तक अच्छे से पहुंच पाते हैं। दोस्तों, इस प्रकार से निश्चित रूप से मेंटर की भूमिका आज के समय में बहुत ही प्रासंगिक है और अलग अलग प्रकार के चैलेंजेस के लिए ज़रूरी भी। अब हम सुनते हैं कार्यक्रम का ये सॉन्ग।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मनापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मनापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: युवावाणी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को सुनिए फरमाइशी कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने। श्रोता अपनी फरमाइश प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को शाम 4:45 से 5:10 तक हमारे फोन नंबर 01582-240-168 पर फोन करके नोट करवा सकते हैं। आपकी फरमाइश का गीत उसी शाम युवावाणी प्रोग्राम में प्रसारित किया जाएगा। ध्यान रहे, इस कार्यक्रम में स्थानीय पुराने नागौर जिले के श्रोता ही कॉल करें और सुने कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने।
3: जब थक हार के हम बड़ा चूर होंगे, प्रकृति के सामने बहुत मजबूर होंगे, उन कंटक जैसी परिस्थितियों में आत्मविश्वासी व्यक्ति ही बस हिम्मत से भरपूर होंगे। आत्मविश्वासी व्यक्ति ही बस हिम्मत से भरपूर होंगे। जी हाँ दोस्तों, अपने आत्मविश्वास को बनाए रखते हुए जीवन के हर रास्ते पर आगे बढ़ें और प्रगति पथ पर अग्रसर रहें। इसी प्रकार की संकल्प और कामना के साथ आज का युवाणी बस यहीं तक। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे युववाणी कार्यक्रम FM बैंड 103.7 MHz पर। यह है आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल। शाम के 5:30 हुए हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम पणिहारी।

0: पणिहारी कार्यक्रम सुनन वाली अपनी सगली बहना ने रीता चारे रा घणार घणार राम राम बहना बहना। देखो सावन को महीनो लाग गयो है नी, और चारों तरफ देखो हरी भरी हरियाली ही हरियाली नज़र आ रही है नी। और बहना देखो जिया कि अपने चारों तरफ हरियाली नज़र आवे, यही अपने देश को विकास करनो, जीवन में आगे बढ़नो, नित नई प्रगति री ऊंचाइयों छुवनो किने चोखो नहीं लागे। और ये प्रगति री ऊंचाई ने छुवन में देखो नयो विकास कर में, जीवन में हमेशा सफलता प्राप्त कर में अपनी बहनारों भी घणो योगदान भी होया करे है नी। क्योंकि देखो बहना किया करे है कि मिनखरी प्रगति रे ला रहे, सफलता रे ला रहे, कोई ना कोई रूप में कोई लुगाई रो हाथ भी होया करे। चाहे बच्चे वा कोई रूप में ही क्यों ना हो, चाहे माँ बहन या पत्नी हो वह। यहाँ ही अपने देखो गांव शहर देश रे विकास में भी अपनी बहना रो घणो योगदान हो वह, और अपनी बहना अपनी भागीदारी ई विकास में निभास के। जिया की बहना देखो अपनी ग्रामीण बहना भी आप रे गाँव रो समाज रो विकास किया कर सके, आप रे गांव समाज ने प्रगति और की तरीका ले जा में सहयोग नहीं हो वह। जिया की बहना देखो जद अपनी बहना पढ़ी लिखी हुई है नी, पढ़ी हुई हुई तो वह कहीं है सपने अज्ञान रे अंधकारों निकाल कर ज्ञान रे प्रकाशों प्रकाशमान कर सके है नी। वह समाज गांव में फैली हुई कुरोतियाँ ने भी दूर करने में आप लोग सहयोग कर सके। क्योंकि बिना तो शिक्षाओं अपने ध्यान लगाए कि अपने समाज गाँव में कितनी तरह की कुरोतियाँ बुराइयाँ अपने अज्ञान के कारण फैली हुई है, और आप अपने ज्ञान और दूजा लोगों ने भी इन कुरोतियाँ लड़ने वास्ते दूर तैयार कर सका हाँ है नी। तो बना अपनी शिक्षाओं दूजा अशिक्षित
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1800 420 2233 पर कॉल करें।

प्रत्येक सोमवार को रात्रि 8 बजे सुनिए सोशल मीडिया पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम दिल से। इस कार्यक्रम में अपनी फरमाइश भेजने के लिए आपको लिखना है अपने पसंदीदा गीत के बोल, फिल्म का नाम, अपना नाम और अपने शहर या गांव का नाम, और भेज देना है हमारे व्हाट्सएप नंबर 9649004762 पर। शाम 5 बजे तक प्राप्त आपकी फरमाइशों का प्रसारण किया जाएगा उसी रात 8 बजे आपके अपने प्रोग्राम में, जिसका नाम है दिल से।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वाले

0: के लिए मणप्पुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मणप्पुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: बेना देखो गावां में हरा हरा घना पेड़ारी छाव में तो आपा एड़ी ताजी शीतल हवारो आनंद हमेशा लेता ही रहवा, क्योंकि देखो गावां में चारों ओर लहराता हरा भरा खेत घर रा आंगन में झूमता हरा हरा मोटा मोटा पेड़ों चारों ओर शीतल हवारा झोंका मिल जावे, जीरो कहीं गर्मी रो एहसास भी कम होवे। पर देखो शहरा में एड़ी ताजी शीतल हवा कम ही मिले, क्योंकि शहरा में पेड़ारी अंधाधुंध कटाई करण बटे मोटी मोटी ऊंची बिल्डिंग बना दी है, या पचास जनसंख्या घनी बढ़ने बटे पेड़ारो सफाई कर घर बन गया है, जीरो देखो पेड़ारो अभाव हो बटे सांस में ऑक्सीजन रसात है प्रदूषित हवा घनी मिलन मिनख ने घनी बीमारियां रो शिकार बना दियो, और ताजी शुद्ध हवा मिनख ने मिलनो मुश्किल और नामुमकिन हो गयो है। पहला देखो पर्यावरण प्रदूषण के कारण शहरा में घनी बीमारियां जन्म लेवे और मिनख ने रोगी बना देवे, और मिनक एक मिनक नहीं होवन चाल तो फिर तो रोगारो घर बनन रह गयो है। अगर देखो आप अपने शरीर मन ने स्वस्थ रखनो चाहवानी तो अपने वास्ते बहुत जरूरी हो जावे कि आप अपने पर्यावरण रो संरक्षण करा, यानी कि पर्यावरण ने प्रदूषित होवन नु बचावा, जीरो कि आपने स्वच्छ ताजी शुद्ध हवा में ले। बिना देखो किया करे यानी कि ताजी हवा घना ही एड़ा रोग समाप्त हो जावे जकारो इलाज डॉक्टरी दवाइयां भी नहीं कर सके। ताजी स्वच्छ हवा सो रोगारी दवा है। जदई तो आप देखा हाँ कि गावा में हरियाली पेड़ पौधारी अधिकता रे कारण बट मिनक ने घड़ाई एड़ा रोग नहीं घेरे जगह की शहरी मिनखा ने घेर लिया करे है, और स्वच्छ हवाओं फेफड़ा मजबूत होवे मन मस्तिष्क प्रफुल्लित रहे जीरू पीरी क्रियाशीलता घनी बने, और मिनक देखो घणो सजग और चेतनाओं कार्य करे। इस वास्ते भी देखो मैंने अपने घना संख्या का मैंने पेड़ लगाना, और जटे कटाई भी देखो पेड़ारी कटाई होती हुए बीरो मैंने रोकनो, और मिनक ने देखो प्रण कर लेना कि भाई वो आपरे जीवन में काल में एक पेड़ तो जरूर लगावेला और बीरी सेवा कर बिना बड़ोकारी जीरू वो आपरी आवन वाली पीढ़ी ने निरोगो स्वस्थ जीवन रो उपहार देवन स्वस्थ देवन आपरो कर्तव्य निभाई है नी। तो बेना देखो अब क्यों नहीं सुन लेवा थानू विदाई लेवन पहला एक प्यारो सो गीत और

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से सुनिए फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश प्रत्येक गुरुवार और प्रत्येक शनिवार को रात 8 बजे। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होती है प्रत्येक गुरुवार को दिन में 12 बजे से दिन के 1 बजे तक। हमारे फोन नंबर्स हैं 015-82-240-168। तो हो जाइए तैयार अपनी फरमाइश हमें भेजने के लिए और कीजिए फोन हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है हेलो फरमाइश।
3: तो बिना आपने आज रे कार्यक्रम लो समय हो गयो है पूरो। अब थानी बहन रीता चारे ने दो सीख आपा करा राम राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पणिहारी FM 103.7 MHz पर। यह है आकाशवाणी नागौर का चिरमे चैनल।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी नागौर के चिरमिक चैनल को एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 6 बज रहे हैं। कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक से लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन किया गया है। विधेयक में 10 वर्ष तक के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक न्यायालय स्थापित करने का आदेश दिया गया है। अपराधों की जांच पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तारीख से 2 महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए। मुकदमे की सुनवाई आरोप पत्र दाखिल होने की तारीख से 3 महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये संशोधन कानून को और अधिक सख्त बनाने तथा त्वरित न्याय दिलाने के लिए किया गया है।
1: सरकार की प्रतिबद्धता का आप इसी बात से अनुमान लगा सकते हैं कि इसी विधेयक के लाने के साथ ही साथ हमारे लॉ मिनिस्टर की ओर से भी एक प्रस्ताव जारी कर दिया गया। स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स है, इनको स्थापित करने का भी क्रम प्रारंभ किया जाए। उसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड में पहले ही इन्होंने गठित कर दिया है और आने वाले दिनों में बाकी स्थानों पर।
0: नया विधेयक छात्रों और युवाओं के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि विभिन्न दलों द्वारा शासित राज्यों में पेपर लीक होने की घटनाएं हुई हैं। विपक्ष के आचरण पर डॉक्टर सिंह ने कहा कि जब एक महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा हो रही है तो विपक्ष सुझाव देने के बजाय राजनीति कर रहा है। उन्होंने विपक्ष के नेता राहुल गांधी के असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करने की भी आलोचना करते हुए इसे अनुचित और दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उधर राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि विधेयक में संशोधन केवल एक विधायी परिवर्तन नहीं है। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम का विरोध तुष्टीकरण की राजनीति को दर्शाता है जो राष्ट्र के गौरव को ठेस पहुंचाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अगस्त को नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे। ये नशाखोरी के खिलाफ 100 सप्ताह का राष्ट्रव्यापी जनभागीदारी आंदोलन है। इस पहल का लक्ष्य जागरूकता, सामुदायिक सहभागिता और निरंतर जनभागीदारी को बढ़ावा देकर नशा मुक्त भारत के निर्माण के लिए युवाओं को सामूहिक राष्ट्रीय मिशन में एकजुट करना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में भारतीय पारंपरिक कला रूपों के कलाकारों से मुलाकात की और उनके कार्यों का अवलोकन किया। बनारस भित्तिचित्र, थंका, नायका, केरल भित्तिचित्र, बसोहली, सुरपुर और मैसूर जैसी कला शैलियों का प्रतिनिधित्व करने वाले 12 कलाकार कलाकार निवास कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रपति भवन में रह रहे हैं। कलाकार निवास कार्यक्रम भारत की कलात्मक परंपराओं की भावना का उत्सव है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के एक निजी स्कूल में 5 वर्षीय बच्चे के साथ शिक्षक द्वारा कथित यातना और अमानवीय व्यवहार के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और वाराणसी पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी किया है। मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लेते हुए एनएचआरसी ने 2 सप्ताह के भीतर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। बम्बई शेयर बाजार का सूचकांक आज 889 अंक बढ़कर 77,655 पर पहुंच गया। निफ्टी 265 अंक की तेजी के साथ 24,250 पर बंद हुआ। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में तजिंदर पाल सिंह तूर और समरदीप सिंह गिल ने शॉटपुट फाइनल में जगह बना ली है। अनिमेश कुजूर 200 मीटर दौड़ के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। आज रात मनप्रीत कौर महिला शॉटपुट फाइनल में खेलेंगी। श्री शंकर मुरली और लोकेश सत्यनाथन ऊंची कूद के फाइनल में और पारुल चौधरी 3000 मीटर स्टीपल चेज के फाइनल में चुनौती पेश करेंगी। पदक तालिका में भारत 2 स्वर्ण, 7 रजत और 3 कांस्य पदकों के साथ 9वें स्थान पर है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, दिल्ली, कोंकण, गोवा, केरल, माहे में कल तक तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल को। शाम के 6:05 हुए हैं। पेश है फिल्म संगीत।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: अभी आपने सुना लता मंगेशकर को फिल्म रखवाला से। अगला गीत आपके लिए लेकर हम हाजिर हैं फिल्म धर्मात्मा से। आवाज़ किशोर कुमार की है, हिंदी वर के बोल और संगीत कल्याण जी आनंद जी का।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: फिल्म संगीत का अगला गीत लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर की आवाज़ में फिल्म धनवान से।

चैनल से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 6:20 हुए हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम माटी के स्वर। इस कार्यक्रम में हमारे आज के कलाकार हैं नैना राम इनाना।

महात्मा लादूनाथ जीरो बोले देखो सेंद्रे बारे में भजन में बतावे, अरे लादूनाथ छुडामण चाहिए।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: अभी आप सुन रहे थे माटी के स्वर कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में हमारे आज के कलाकार थे नैना राम इनाना। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं, FM 103.7 मेगा हर्ट्स पर।

0: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी नागौर के चिन्मय चैनल को एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 6:30 हो रहे हैं। कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, उसके बाद होगी जिले की चिट्ठी, तत्पश्चात आप सुनेंगे राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार। इन समाचारों को हम आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुड़कुड़दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
2: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

मुख्य समाचार। लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 लोकसभा में पारित हुआ। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 40 लाख पात्र विद्यार्थियों के बैंक खातों में यूनिफॉर्म के लिए 250 करोड़ रुपए की राशि डीबीटी की गई। देश भर में नशा मुक्ति के लिए 2 अगस्त से 100 सप्ताह का विशेष अभियान चलाया जाएगा। और गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर आस्था का माहौल, गुरुजनों संतों और महंतों का श्रद्धा से अभिनंदन।

0: समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 आज लोकसभा में पारित कर दिया गया। इस नए संशोधन विधेयक में पेपर लीक के लिए 10 साल तक की जेल और भारी जुर्माने का कड़ा प्रावधान किया गया है। विधेयक पर सदन में कल से चर्चा की शुरुआत की गई थी। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि विधेयक में संशोधन कानून को और अधिक सख्त बनाने और त्वरित न्याय दिलाने के लिए प्रावधान किया गया है। चर्चा के दौरान हुए हंगामे के कारण सदन को दो बार स्थगित भी किया गया। इसके बाद विधेयक पारित कर दिया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इसके पारित होने की घोषणा की।
1: मंत्री जी अब प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए।
2: मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को पारित किया जाए।
1: प्रश्न ये कि विधेयक को पारित किया जाए, जो सदस्य इसके पक्ष में हार गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ।
0: अब ये विधेयक ऊपरी सदन यानी राज्यसभा में पेश किया जाएगा। एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित विधेयकों की जांच करने वाली संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी का कार्यकाल संसद के इस साल के शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह तक बढ़ा दिया गया है। लोकसभा में आज इस बारे में प्रस्ताव पेश किया गया। सदन ने इस प्रस्ताव को ध्वनिमत से पारित कर दिया। गौरतलब है कि एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयकों का उद्देश्य लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने की व्यवस्था लागू करना है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज भरतपुर जिले के खेडली गुर्जर गांव से करीब 940 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। बालिका सैनिक विद्यालय में हुए इस कार्यक्रम में श्री शर्मा ने सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 40 लाख पात्र विद्यार्थियों के बैंक खातों में यूनिफॉर्म के लिए 250 करोड़ रुपए की राशि डीबीटी की। उन्होंने दिव्यांग बच्चों को टैबलेट दिए और बेहतर परीक्षा परिणाम देने वाले शिक्षकों को सम्मानित किया। इस राज्य स्तरीय समारोह से मुख्यमंत्री ने मिशन पढ़ो अभियान के तहत रीडिंग प्रमोशन कैंपेन की शुरुआत की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चों को दिए गए संस्कार से ही उनका व्यक्तित्व बनता है। श्री शर्मा ने वीसी के जरिए प्रदेश के स्कूली बच्चों से संवाद भी किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का ये प्रयास है कि स्कूलों में बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो और कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे।
3: बच्चों की शिक्षा, उन्हें मिलने वाले सही संस्कार काफी हद तक तय कर

0: सकते हैं कि वे भविष्य में क्या बनेंगे और उनका व्यक्तित्व कैसा होगा। इस दृष्टि के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू की है। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हम बच्चों को गुणवत्तापूर्ण और सुलभ शिक्षा दे रहे हैं, उपलब्ध कराने लगे अनेक स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। इस बार के बजट में हमने संकल्प लिया था कि हम प्रदेश के कक्षा 1 से 8 तक के 40 लाख से अधिक जरूरतमंद विद्यार्थियों को निःशुल्क यूनिफॉर्म उपलब्ध कराएंगे। मुझे प्रसन्नता है कि आज गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर और वैर की धरती से भरतपुर जिले से उस संकल्प को धरातल पर उतारा जा रहा है।
1: राज्यपाल हरिभाऊ बागड़ी ने नशा मुक्त भारत अभियान के तहत राज्य में प्रभावी प्रयास करने पर जोर दिया है। उन्होंने प्रदेश में व्यापक अभियान चलाने और विश्वविद्यालयों की ओर से गोद लिए गांवों को नशा मुक्त करने के लिए ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। राज्यपाल ने लोकभवन से आज VC के जरिए विश्वविद्यालयों के कुलगुरुओं से बातचीत की। श्री बागड़े ने कहा कि विश्वविद्यालयों के आसपास मादक पदार्थ बेचने वालों की पहचान कर ऐसे लोगों को पकड़ा जाए। राज्यपाल ने बताया कि नशाखोरी के खिलाफ 2 अगस्त से 100 सप्ताह का एक देशव्यापी जन भागीदारी अभियान शुरू होने जा रहा है। युवा कार्य और खेल मंत्रालय की ओर से नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान चलाया जाएगा। इसमें हर रविवार को स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए खेल प्रतियोगिताएं, पैदल मार्च, ध्यान सत्र, नुक्कड़ नाटक और अन्य कार्यक्रम होंगे। सतत विकास लक्ष्यों के तहत राज्य ने पोषण और पीने के पानी सहित कई क्षेत्रों में प्रगति की है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने आज SDG के राज्य स्तरीय क्रियान्वयन और मॉनिटरिंग समिति की बैठक ली। उन्होंने विभिन्न विभागों को नीति आयोग और राज्य संकेतकों के अनुसार काम करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने वास्तविक और प्रमाणिक नवीनतम आंकड़ों को पोर्टल पर अपलोड करने को कहा। उन्होंने कहा कि वर्ष 2030 तक निर्धारित 17 SDG और 248 संकेतकों पर राजस्थान को लगातार काम करना है। मुख्य सचिव ने दूरस्थ और जनजातीय बहुल क्षेत्रों के विकास के लिए राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति की भी बैठक ली। इसमें चालू वित्तीय वर्ष के लिए 196 करोड़ रुपए से अधिक के बजट प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। देश की पहली वंदे भारत गुड्स ट्रेन का आज कोटा में ट्रायल किया गया। 16 कोच वाली इस सुपर फास्ट ट्रेन की रफ्तार करीब 145 किलोमीटर प्रति घंटा रही। कोटा नागदा सवाई माधोपुर रेलखंड पर इसका परीक्षण किया गया। इसमें फायर डिटेक्शन, ऑटो लॉक, रेफ्रिजरेटर पार्सल सहित कई तरह की सुविधाएं शामिल है। अपनी उच्च ट्रैक गुणवत्ता और आधुनिक सिग्नलिंग तथा सुरक्षित हाई स्पीड कॉरिडोर के कारण कोटा मंडल एक बार फिर रेल तकनीक की परीक्षण प्रयोगशाला साबित हुआ है। इस फ्रेट EMU की सफल ट्रायल से माल परिवहन को आने वाले समय में तेज, सुरक्षित और विश्वसनीय बनाया जा सकेगा। गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर आज प्रदेश भर में श्रद्धा और आस्था का माहौल है। धार्मिक स्थलों पर लोगों की भीड़ उमड़ रही है। वहीं श्रद्धालुओं ने गुरुजनों, संतों, महंतों का अभिनंदन कर आशीर्वाद लिया। जयपुर में आयोजित गुरु पूर्णिमा महोत्सव में केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शामिल हुए। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान सबसे ऊपर माना गया है। गुरु पूर्णिमा गुरुओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का पर्व होने के साथ साथ गुरु शिष्य परंपरा को आगे बढ़ाने का भी अवसर देती है। वहीं देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने पाली जिले के बूसी और बालराई में संतों का सम्मान किया। इस मौके पर शोभा यात्रा निकाली गई। विभिन्न मंदिरों और आश्रमों में महाप्रसादी का आयोजन किया गया। डूंगरपुर के साबला में संत मावजी महाराज की जन्म स्थली हरि मंदिर पर भी श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। झुंझुनू के चंचलनाथ टीला में गुरु पूर्णिमा महोत्सव श्रद्धा भाव से मनाया गया। इस मौके पर टीला परिसर में आकर्षक सजावट की गई। सलंबर जिले के सभी डाकघरों में सावन के महीने में गंगा जल उपलब्ध करवाया जाएगा। शिव भक्तों की सुविधा के लिए ये पहल की गई है। इसके तहत श्रद्धालु 30 रुपए में गंगा जल की बोतल खरीद सकेंगे। मांग अधिक होने पर डाकिये घर घर गंगा जल पहुंचाएंगे। इससे दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को फायदा मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के मौके पर आज इको टूरिज्म वेब पोर्टल की शुरुआत की गई है। इस मौके पर देश के सभी बाघ अभयारण्यों की जानकारी उपलब्ध है। केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की ओर से विकसित इस पोर्टल का शुभारंभ किया। इधर प्रदेश में भी अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर जागरूकता संबंधी कार्यक्रम रखे गए। राज्य के अभयारण्यों में बाघों पर पेश है हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
2: राजस्थान में रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंद्रा हिल्स, रामगढ़ विषधारी के साथ ही एक नया टाइगर रिजर्व धौलपुर करौली है। वन विभाग के अनुसार इन पांचों अभयारण्यों में बाघों की संख्या 150 है। इनमें बाघ, बाघिन और शावक शामिल हैं। इस साल सबसे ज्यादा 28 शावकों का जन्म सरिस्का अभयारण्य में हुआ। हाईटेक मॉनिटरिंग और एंटी पोचिंग अभियान से बाघों की सुरक्षा व्यवस्था बेहतर हुई है। साथ ही वन विभाग वन्य जीव कॉरिडोर मजबूत करने पर भी खास ध्यान दे रहा है। रामगढ़ विषधारी और मुकुंदरा में ट्रांस लोकेशन से भी बाघों के कुनबे में बढ़ोतरी की उम्मीद जगी है। समाचार कक्ष से सुदर्शन नाहर।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 लोकसभा में पारित हुआ। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 40 लाख पात्र विद्यार्थियों के बैंक खातों में यूनिफॉर्म के लिए 250 करोड़ रुपए की राशि डीबीटी की गई। देश भर में नशा मुक्ति के लिए 2 अगस्त से 100 सप्ताह का विशेष अभियान चलाया जाएगा। और गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर आस्था का माहौल, गुरुजनों, संतों और महंतों का श्रद्धा से अभिनंदन। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से बाड़मेर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं जसवंत सिंह डूडी। सरहदी जिले बाड़मेर में आज गुरु पूर्णिमा श्रद्धा और आस्था के साथ मनाई जा रही है। लीलसर स्थित जसनाथ धाम, चौहटन में डूंगरीपुरी जी के मठ, बाड़मेर के चंचल प्राग मठ और गंगागिरी जी के मठ में गुरु पूर्णिमा महोत्सव आयोजित किए जा रहे हैं। इस अवसर पर जिले में विभिन्न शिक्षण संस्थानों में गुरु वंदन के कार्यक्रम आयोजित हुए। इस दौरान गुरुजन का सम्मान किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों पुनर्विकसित बाड़मेर रेलवे स्टेशन का वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण किया। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बाड़मेर रेलवे स्टेशन को 16 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित किया गया है। रेलवे स्टेशन का ये कायाकल्प भारतीय रेल की आधुनिक, सुरक्षित, पर्यावरण अनुकूल और यात्री केंद्रित रेलवे प्रणाली के विकास के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ये क्षेत्रीय इंफ्रास्ट्रक्चर को सशक्त बनाने के अलावा भारत के पर्यटन मानचित्र पर थार नगरी की पहचान को और अधिक प्रभावी बनाएगा। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित ये रेलवे स्टेशन मरुस्थलीय इलाके में सामाजिक और आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। 27वें करगिल विजय दिवस के अवसर पर बाड़मेर में पुलिस लाइन स्थित शहीद स्मारक पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान शहीदों को गार्ड ऑफ ऑनर देकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर शहीदों की वीरांगनाओं और परिजनों को सम्मानित किया गया। वहीं शहीदों की याद में पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। इस अवसर पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों के अलावा प्रशासन, सेना, वायुसेना, बीएसएफ और पुलिस के अधिकारी तथा बड़ी संख्या में आम लोग मौजूद थे। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल बीते दिनों जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने वीरात्रा स्थित वांकल माता के मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। श्री पटेल ने बाड़मेर में सर्किट हाउस में आयोजित जनसुनवाई में आमजन की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को इनके तुरंत निस्तारण के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर चिन्मयी गोपाल ने कल

0: ग्राम पंचायत बिशाला में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में विकसित भारत जीराम जी योजना का शुभारंभ किया गया। इस दौरान राष्ट्रीय कार्यक्रम का वर्चुअल माध्यम से सजीव प्रसारण किया गया। इस अवसर पर पौधरोपण के जरिए पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। मरुस्थलीय जिले बाड़मेर में पर्यावरण संरक्षण अभियान के तहत सीमा सुरक्षा बल की 28वीं बटालियन की ओर से पौधरोपण किया गया। इस अभियान के तहत सरहदी गांव सरूपे का तला, मिये का तला और केलनोर समेत बीएसएफ की विभिन्न सीमा चौकियों और सरकारी स्कूलों में भी बड़े पैमाने पर पौधरोपण करते हुए आमजन को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक किया गया। दूसरी तरफ जिले में मॉनसून की बारिश के चलते इन दिनों विद्यालयों में एक पेड़ माँ के नाम और हरियालो राजस्थान अभियान के तहत पौधरोपण किया जा रहा है और विद्यार्थियों को पौधे भेंट कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया जा रहा है। वहीं मॉनसून की बारिश के मद्देनजर इन दिनों बाजरा, ग्वार, मूंग, मोठ और तिल जैसी खरीफ की फसलों की बुआई की जा रही है और किसानों तथा पशुपालकों में खुशी का माहौल है। बाड़मेर के सरकारी जिला अस्पताल में पिछले दिनों प्रसव सखी हेल्प डेस्क का शुभारंभ किया गया। इस पहल का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को अस्पताल में प्रवेश से लेकर डिस्चार्ज होने तक एक ही स्थान पर मार्गदर्शन, सहायता और समन्वित सेवाएं मुहैया कराना है। इसके साथ ही बाड़मेर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ, पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन बिल 2026 लोकसभा में पास भयो। प्रदेश री सरकारी स्कूलों रा 40 लाख पात्र विद्यार्थियों रा बैंक खाता में स्कूल ड्रेस सारू 250 करोड़ रुपया री रकम भेजी जी। देश में नशा मुक्ति सारू 2 अगस्त तू 100 सप्ताह रो खास अभियान चलायो जावेला और गुरु पूर्णिमा रा पावन पर्व रे मौके आस्था रो माहौल गुरुजना संता और महंता रो सिरधा भाव मान करीचियो। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर, अरब समाचार विगतवार। लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन बिल 2026 ने आज लोकसभा पास कर दिनो। ये बिल माए पेपर लीक रा दोषियां ने 10 साल ताई री कैद और भारी जुर्माना रो प्रावधान करी चियो है। बिल माथा सदन माए काल नो चर्चा करी जा रही ही। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह कहो के बिल माए बदलाव कानून ने और करड़ो बनावण और तुरंत न्याय दिरावण सारू करी चियो है। चर्चा रे दौरान भी हंगामा रा कारण सदन री कार्रवाई 2 दफा टालनी पड़ी। ये पाछे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला वो बिल पास फेवन रो ऐलान करती नो।
2: मंत्री जी अब प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए।
3: मैं प्रस्ताव करता हूँ कि विधेयक को पारित किया जाए।
2: प्रश्न ये कि विधेयक को पारित किया जाए, जो सदस्य इसके पक्ष में हार गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हावालों के प्रश्न प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ।
1: अब ओ बिल संसद रा ऊपरी सदन राज्यसभा माए विचार सारू पेश करियो चावेला। एक राष्ट्र एक चुनाव जुड़ी संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी रो कार्यकाल संसद रा शीतकालीन सत्र रा आखिरी सप्ताह ताई बधा दियो चियो है। लोकसभा माए आज इंबारा माए प्रस्ताव पास करी चियो जिन्हें सदन ध्वनि मतु पास की नो। ध्यान जोग है कि एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक रो मकसद लोकसभा राज्य विधानसभा वाला चुनाव एक साग करावन री व्यवस्था लागू करनो है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज भरतपुर जिला रा खेड़ली गुर्जर गांव करीब 940 करोड़ रुपया रा खर्च वाला विकास रा कामा री शुरुआत कीनी और पूरा फिया काम जनता ने सौंपिया। लड़कियां रे सैनिक स्कूल माए राखी जिया कार्यक्रम माए श्री शर्मा सरकारी स्कूलां रा 40 लाख पात्र विद्यार्थियां रा बैंक खाता माए स्कूल ड्रेस सारू 250 करोड़ रुपया भेजा। वे दिव्यांग बच्चा ने टैबलेट दीना और चोखा नतीजा देवन वाला अध्यापकां रो मान कीनो।

0: जड़ साऊ मुख्यमंत्री मिशन पढ़ो अभियान राते रीडिंग प्रमोशन कैंपेन री शुरुआती कीनी। ई मौके वे कहो कि बच्चा ने दिया जावन वाला संस्कार ही मारो व्यक्तित्व बनावे है। श्री शर्मा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे जरिए प्रदेश रा स्कूली बच्चा सागे बातचीत ही कीनी। वे कहो कि राज्य सरकार स्कूला माए बेहतरीन बुनियादी ढांचो तैयार करावनो और हर बच्चा ने बनाई लिखाई रो मौको मुहैया करावनो तय कीनो है।
1: बच्चों की शिक्षा उन्हें मिलने वाले सही संस्कार काफी हद तक तय करते हैं कि वे भविष्य में क्या बनेंगे और उनका व्यक्तित्व कैसा होगा। इस दृष्टि के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू की है। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हम बच्चों को गुणवत्तापूर्ण और सुलभ शिक्षा दे रहे हैं, उपलब्ध कराने के लिए अनेक स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। इस बार के बजट में हमने संकल्प लिया था कि हम प्रदेश के कक्षा 1 से 8 तक के 40 लाख से अधिक जरूरतमंद विद्यार्थियों को निःशुल्क यूनिफॉर्म उपलब्ध कराएंगे। मुझे प्रसन्नता है कि आज गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर और वैर की धरती से भरतपुर जिले से उस संकल्प को धरातल पर उतारा जा रहा है।
0: राज्यपाल हरिभाव बागड़े नशा मुक्त भारत अभियान रातेत प्रदेश में आई असरदार कोशिशा करण मथ जोर तीनों है। श्री बागड़े आज लोक भवन वीडियो कॉन्फ्रेंस रे जरिए विश्वविद्यालय रा कुल गुरुआ सागे बातचीत कर रहा है। वे राज्य में मोटा पैमाना माथे अभियान चलार विश्वविद्यालय का नियम गोद लिया जया गाँव माए नशारी लत जड़ों खत्म करण सारू ठोस जतन करण रा हुक्म तीना। राज्यपाल कहो कि विश्वविद्यालय रे आर एस आर नशीली चीजा बेचण वाला ने पकड़वा सारू अभियान चलायो चावणो चाहिए। वे बतायो कि नशाखोरी रे खिलाफ आखा देश माए 2 अगस्त 100 सप्ताह रो जन भागीदारी अभियान चलायो चावेला। युवा कार्य और खेल मंत्रालय रे ओरों नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान चलायो चावेला। इन माए हर दीतवार ने जीवन रा स्वस्थ तरीका ने बधावो देवन सारू खेलां री होड़ा पैदल मार्च ध्यान सत्र और नुक्कड़ नाचक समेत भांत भांत रा कार्यक्रम रख्या जावेला। लगातार विकास रा लक्ष्य रा तेत राज्य माए पोषण और पीवन रा पानी समेत कई हलका माए प्रगति भी है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास आज SDG री राज्य स्तरीय क्रियान्वयन और निगरानी समिति री मीटिंग लीनी। वह न्यारा न्यारा महकमा ने नीति आयोग और राज्य संकेतकार मुजब काम करण रा हुक्म दीना। मुख्य सचिव असली और प्रामाणिक आंकड़ा पोर्टल माथे अपलोड करण बाबत कहो। वे दूरस्थ और जनजातीय बहुल हलका रा विकास सारू बनाई ची राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति री मीटिंग ही लीनी। इन माए चालू माली साल सारू 196 करोड़ रुपया बत्ती रकम रा बजट प्रस्ताव मंजूर करी चिया। समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। देश री पहली वंदे भारत मालगाड़ी री आज कोटा माए कोटा नागदा सवाई माधोपुर रेलखंड माथे परख करी ची। इस दौरान 16 डिब्बा वाली इन सुपरफास्ट रेल री रफ्तार करीब 145 किलोमीटर प्रति घंटा नापी ची। इन माए लाई लागण रिठाकरण दरूजा आपो आप बंद वेवण और रेफ्रिजरेटेड पार्सल समेत कई भांतरा सुविधा मुहैया कराई चिया है। ई फ्रेट EMU री कामयाबी सागे परखों माल लावण ले जावण ने आवता भगत माए तेज सुरक्षित और भरोसेमंद बनायो जा सकेला। आज गुरु पूर्णिमा रे मौके आखा राज्य माए जात्रु श्रद्धा भाव सागे गुरुजना संता और महंता रो आशीर्वाद लीनो। जयपुर माए राखी ज्या गुरु पूर्णिमा महोत्सव माए केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावती शामिल भया। ई मौके वे कहो कि भारत री संस्कृति माए गुरु री ठौड़ सब ऊंची मानी ची है। गुरु पूर्णिमा गुरुआ रा प्रति कृतज्ञता जतावण रो पर्व वेवण सागे गुरु चेलारी रीत ने आगे बधावण रोई मौको देवे है। देवस्थान मंत्री जोरा राम कुमावत पाली जिलारा बूसी और बालराई माए संतारो मान कीनो। डूंगरपुर जिलारा साबला माए संत मावजी महाराज री जन्मस्थली हरिमिंदर माए मोटी तादाद माए जात्रु पूग्या। झुंझुनू जिलारा चंचल नाथ टीला माए गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाई चियो और टीला परिसर माए सोहनी सजावट करी जी। चुरूरा स्कूल कॉलेज।

0: पूर्णिमाए गुरु पूर्णिमा रे मौके सम्मान समारोह राखी चिया। सलूम्बर जिला रा सगला डाक घरा माए सावण माए गंगा जल मुहैया करायो चावेला। जात्रु 30 रुपया माए गंगा जल री बोतल खरीद सकेला। मांग बत्ती वेवन री सूरत माए डाकिया घर घर गंगा जल पुगावेला। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस रे मौके आज इको टूरिज्म वेब पोर्टल री शुरुआत करी ची। इमाथे देश रा सगला बाघ अभ्यारण्य री जानकारी मुहैया कराई ची है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण री ओर विकसित करी चिया ई पोर्टल री केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव नई दिल्ली माए राखी जाए कार्यक्रम माए शुरुआत कीनी। प्रदेश माए अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस रे मौके भांत भांत रा कार्यक्रम राखी चिया। राज्य रा अभ्यारण्य माए बाघाना बारा माए पेश है एक रपट।
1: राजस्थान में रणथंबोर सरिस्का मुकुंद्रा हिल्स रामगढ़ विस्तारी के साथ ही एक नया टाइगर रिजर्व धौलपुर करौली है। वन विभाग के अनुसार इन पांचों अभ्यारण्यों में बाघों की संख्या 150 है। इनमें बाघ बाघिन और शावक शामिल हैं। इस साल सबसे ज्यादा 28 शावकों का जन्म सरिस्का अभयारण्य में हुआ है। हाईटेक मॉनिटरिंग और एंटी पोचिंग अभियान से बाघों की सुरक्षा व्यवस्था बेहतर हुई है। साथ ही वन विभाग वन्य जीव कॉरिडोर मजबूत करने पर भी खास ध्यान दे रहा है। रामगढ़ विस्तारी और मुकुंद्रा में ट्रांस लोकेशन से भी बाघों के कुनबे में बढ़ोतरी की उम्मीद जगी है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: स्कॉटलैंड रा ग्लासगो माए राष्ट्रमंडल खेल 2026 चल रहा है। 23 जुलाई उ सरुभेर 2 अगस्त ताई चलन वाला आ खेला माए 74 देशा रा एथलीट शामिल भे रहा है। कुल 16 खेल कार्यक्रम माए दिव्यांग खिलाड़िया सारू पैरा स्पोर्ट्स ही शामिल है। और ब्यूरो समाचार डेस्क को
2: हर 4 साल माए वेवण वाला राष्ट्रमंडल खेला रा 23वां संस्करण माए भारत री नुमाइंदगी 124 सदस्या वाला दल कर रियो है। आ माए 78 पुरुष और 46 महिला एथलीट शामिल है जो न्यारा न्यारा खेला माए प्रतिभा रो दर्शाव कर रिया है। झंडू कुमार पैरा पावर लिफ्टिंग माए कांसा रो तमगो जीतर भारत रो खातो खोलियो। मीराबाई चानुई होड़ माए सोना रो पहलो तमगो जीतर पूरा देश ने माथो उचोण करण रा लम्हा दीना। हाल ही चाल रही है और भारत रा एथलीट खुद माथे भरोसे सागे मुकाबला माए बनियोड़ा है। खास बात आ है कि आवती दफा आ खेल गुजरात रा अहमदाबाद माए करिया जावण रो प्रस्ताव है और समापन समारोह माए भारत ने साल 2030 रा राष्ट्रमंडल खेला री मेजबानी रो जिम्मो सौंपियो जावेला। समाचार कक्षो सालेहा गाजी।
0: राज्य रा घनखर हल्का माए आवता 5-6 दिन ताई चौमासा री बिरखा चालती रेवन रा आसार है। मौसम विभाग 2 अगस्त ताई भरतपुर अजमेर जयपुर और उदयपुर संभाग माए बरसात वेवन रा आसार जताया है। जोधपुर और बीकानेर संभाग रा कुछ हल्का माए कालों बिरखा छांटा माए बढ़ोतरी रा आसार है। जोधपुर संभाग माए कठे कठे जोरदार बारिश री संभावना है। काल 5 जिला माए बरसात रो ऑरेंज और 33 जिला माए येलो अलर्ट जारी करी चियो है। आखिर माए खास समाचार एक और फेरु सुन ले रहो। लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन बिल 2026 लोकसभा माए पास फियो। प्रदेश री सरकारी स्कूलां रा 40 लाख पात्र विद्यार्थियों रा बैंक खाता माए स्कूल ड्रेस सारू 250 करोड़ रुपए री रकम भेजी ची। देश माए नशा मुक्ति सारू 2 अगस्त 100 सप्ताह रो खास अभियान चलायो चावेला। और गुरु पूर्णिमा रा पावन पर्व रे मौके आज गुरुजना संतां और महंतां रो मान करी चियो। ईसा गई प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो फियो। नमस्कार।
3: FM 103.7 MHz पर यह है आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल। शाम के 7 बजे हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी।

0: चौपाड़ माते बिराजा थका हैं किसान भाया बहना ने आप रे विष्णु भैरा घने मान राम राम। देखो भाया लारले कई दिनों देखा है तो कणी तो बिरखा कई जिग्या तो घनी वेरी है, कई जिग्या खाली छाटा छिड़को वेरी और कई जिग्या देखा तो बादलिया ऊपरे का ऊपरे गावा रे शहर का मातूहर आगे जावता देख रिया है। मौसम रिज किया गड़बड़ है लारला, कई दिनों कई चाल रही है, कई महीनों चाल रही है, क्योंकि अब की पहली जकी बिरखा ही बातों अनुती पहली होगी। बी डेम लारला कई दिनों देखा तो खेतार माए जो काम काज चल रही हो, जिया निनान पाड़ी रो काम है वो वेगोर किसान भाई उडीक पूरी राख रिया है। बिरखा हो जावे तो है जो को फसल है जिकी चोखी नहीं उड़े, घनकरी जिग्या तो वेगी पर हाल भी कई जिग्या बिरखा कम है, बिरखारी पूरी उड़ीक है और नाडी तलाव भी खाली पड़िया है। जद बिरखा चौकी वेली तो अपन जकी खरीफ री फसलां बायोड़ी है वह जिकी चौकी निवड़ेली। आ बात तो सही है, पर देखो आपारी फसलां रे हाते हाते आपा दाव दन जका पाला वारी सार संभाल जकी आपा करा वाबिया तो आपा अच्छी तरह कर रहे हैं, पर कई बार कहीं व्या करे के आपा गफलत रे मायन समझ लो, ऊतौल में समझ लो या लापरवाही रे मायन समझ लो, बहु अच्छी तरह चोखो फायदो नहीं उठा सका, जकान सू बे बीमार भी वह जाए करे। बीमारी री जद बात वे तो भाई दवाई जी के बाद देरावनी पड़े, कई सुया देरावे, कई ग्लूकोज चढ़ावे, धाव दना रे भी करनी पड़े, कई तरह रा रोग बने लागे। बडेरा भी कहता है पानी आडी पाल है जिकी पहली बांध लेनी, जकान सु कहीं वे पाल है जिकी फूटे को नहीं पानी रुक्योड़ो रे वे। मतलब ओ है के पशुआ रे मायने कई तरह की जी बीमारियां है वह फैले, उनसू पहली आपने टीकाकरण टीकाकरण जद हो जावे नी तो कहीं है कई तरह की बीमारियों पशु जगह बच जावे। टीकाकरण का मतलब वही कि पशु आग मायने बीमारियों बचाने माटे टाइम माटे टीका लगाएला जगह आपना पशु जगह निरोगा रहे और बहु दूध है और भी कई चीजा मिले खेती में बीमारी मदद आप ले सका। अब बात है टीकाकरण क्यों जरूरी है, टीकाकरण बीमारियों बचाव रहे वास्ते जरूरी है। घणकरी बीमारियां जी की पशुआर माए लागे जी बात हुए गलगोंटू है, खुरपका है, मुंह पका है, चेचक है, एंथ्रेक्स है, यहाँ की मोटी मोटी बीमारियां जी की बे लागे, जब टीकाकरण हो जाए नहीं तो ये बीमारियों बचाव वे जाए। और कई बात है टीकाकरण करवाने शू उत्पादन बढ़े, उत्पादन क्या को बढ़े जो को निरोगो पशु रहे बिंगो दूध है जो को हलो हुई तो दूध को उत्पादन बच जाए और बिंग पशु को वजन भी बदी, पशु है जो को निरोग रही और पैसा की बचत भी हो जाए, क्यों के पशु बीमार हो जाए जना पाने इलाज करवानो पड़ी और इलाज करवानो पड़ी जहाँ ठाई है दवाया का रुपया लगे अणुताई तो बा पैसा की भी बचत हो जी और पचे आपा जगह पशुआ ने काम में लें। हाँ चाहे तो बारे कई जगह जी बाड़ा रे माए ने पशुआ हारे सो जावे देख रेख करण वास्ते तो पशुआ की जी बीमारियां है बहु आ नहीं कि आपा भी चोटी लू जावा बा आपा माए नहीं आ जावे तो ध्यान रखा इन वास्ते टीकाकरण जरूरी है। अब बात आवे टीकाकरण कद गद करवा काय कराओ तो गाया भैंसा के माए ने खुरपका मुका मुँह पका है जान को FMD है इनको टीको है जो को 4 महीना की उम्र में 6 महीना की उम्र में सब जरूरी टीको हो गया करे और गलगोंटू जो को है बरसात रो जो महीनों बार चाल रही है तो वियाँ तो जून और जुलाई 2 महीना है तो हमार भी लगा सका भी तो जुलाई अब जा रही है अगस्त आ रही है पर जून और जुलाई के मायने साल में एक करे जो टीको लागे। गाया भैंसिया के मायने एंथ्रेक्स बीमारी हो जाए तो साल में एक बार है जो वो टीको लागिया करे तो इन वास्ते कहीं है सगली चीज़ा ध्यान रखता रखता है टीकाकरण को भी अपन ध्यान रखा कि कणा कहीं लगावा क्या है। अब लड़िया बकरियां की बात करूँ तो बैंक मायने देखो PPR जान को रोग लाग जाए बीमारी आ जाओ तो 4 महीना की उम्र में पचे जो हर साल है जो दवा इन वास्ते इन बकरियां के नहीं आजान लेवा बीमारी है टीको लगाना जरूरी है। चेचक भी हो जाए रेबीज भी हो जाए तो इन वास्ते टीकाकरण रखा टीकाकरण करती टाइम या करवाती टाइम अपन ध्यान रखा कहीं ध्यान रखा कि निरोगो जो को पशु है बिने टीको लगावा, बीमार पशु ने पहले सीधो टीको नहीं लगावा, जगह जानकार है डॉक्टर है कंपाउंडर है आप दिखावा दिकार है जो को पचे टीको लगावा। सही मौसम बरसातों पहले जून जुलाई में घनकरा टीका जगह लग गया करे और डॉक्टर साहब वहाँ पर संपर्क कर ला वहाँ से पूछ ला कि भाई सीधा अस्पताल ले रहा वहाँ या पशु मित्र जगह टीका लगाओ ने आई। और एक बात हैंगो मोटी बडेरा जगह के होता सो बकिया एक लिखिया यानी को रिकॉर्ड रखनो जरूरी है लिखियोड़ो रखनो जरूरी है कि किसा पशु ने किस टीको है जो कद लगे डायरी के मायने आप लिख ला और टीका के पचे आप ध्यान रखा 2-3 दिन पशु ने आराम देवा शाह पानी पावा बने आ ध्यान रखो। और आज जो को एक त्यौहार है और त्यौहार कहीं गुरु पूर्णिमा, सब कोई भी काम करनिया है, चाहे तो किसान है, चाहे पढ़निया है, चाहे रोजगार दूजो कर रिया है, व्यवसाय कर रिया है, सब आप आपरा गुरु ने निवण कर पच है जो को काम शुरू करे। कोई भी काम री जी की शुरुआत है वह है जी की गुरु ने अरदास कर दिया करे। तो सब रे वास्ते आज रो जो को त्यौहार है गुरु पूर्णिमा है, आप चौपाल री तरफ गुरुआ ने निवण करा और अरदास करा के सब रे मन रे मायने एड़ी भावना वह जो कि एक दूसरा से सहयोग करे, एक दूसरों मिल चले और अपन जो को देश है, अपन जो को खेतर है, बिन आगे ले जाऊँ रे वास्ते सब मिलजुल काम करे। और बातें चेता तो दूजी भी वहमती रहे, पहली एक और सुन ला काम री बात।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
0: तो भैया देखो बातें चीता भी चलती रहे है, लोक भजन गीत भी आप तई पूगता करिया करा, पर हमार जकी टेम है वह है बंतल री। गांव गांव तेरे जमहार किसान भाई मिले बेना मिले वह शू बंतल करार। हमार जको खास अभियान चाल रही है अपने प्रधानमंत्री जी के भी केच द रैन, यानी बरसात को जको पानी है वो अपने किया कहीं भेड़ो करनो है, किन तरह आप वो भेड़ो करा ताकि आउन वाली टेम के मायने आपने फोड़ो नी भुगतनो पड़े। चाहे तो आप खुदरे पीवन रे वास्ते, चाहे आप दाऊदन है वारे पीवन रे वास्ते, चाहे आप जगह फसला है वन वास्ते, तो बरसात रो जो को पानी है वो भेड़ो करनो जरूरी है, क्योंकि बिन है जो को ई अपने नी जाऊंदा आउन वाला दिना के मायने अपने जो की जमीन है बिर जो को पानी धीरे धीरे धीरे धीरे कर कम पड़ रही है, तो वो पानी भी पाचो ऊंचो आवे तो आप जानकार बनिया पड़िया के जल स्तर है जो को बढ़ जावे। ई वास्ते तो आज की बंतल करी इनी तरह री एक बंतल, तो कुण काई मिल्यार किण सू वी बात लोसा सुनो।
3: भाई नित नई जानकारी लेर चौपाल माते हाजिर वहां। आज देखो इना ना गांव रे मायना यार, गांव थोड़ा शाक गुणा निकले जने एक ट्यूबवेल और ट्यूबवेल माते बहुत बढ़िया ताम जाम देखो पॉली हाउस लगेड़ो है और हारे मोटो नाडो बनियो है। पॉली हाउस जो को पानी पूरो वो नाडे रे माए उतार रही है, बिरका भी थोड़ी थोड़ी भी है। एक भाई काम काज कर रिया करा बंथल। राम राम सा,
4: राम राम सा, राम राम सा।
3: शुभ नाम आप रो?
4: मनमोहन।
3: मनमोहन जी तो इनाना गांव रही रहे उनाला?
4: हाँ सर इनाना।
3: तो मनमोहन जी कहीं पोली हाउस लगायो?
4: हाँ सर पोली हाउस लगायो।
3: अच्छा कद लगायो?
4: 2 साल हुई है।
3: 2 साल होगा तो किया कहीं लगायो? कोई भाई सरकारी अनुदान किया कहीं लियो? फार्म भरियार बताओ थोड़ा।
4: सरकारी अनुदान मिलियो साइंग मायने 50%।
3: अच्छा
4: ई मित्र माते अप्लाई कर दियो।
3: फार्म भरियो?
4: फार्म भरियो।
3: ठीक है।
4: बिंग बाद में कंपनी को कॉन्टेक्ट करियो।
3: हाँ
4: कंपनी वाला लगाए दियो।
3: लगाए दियो तो मनमोहन जी और नाडो जोरदार बनियोडो नी हारे।
4: नाडो सा मीठा पानी की आजकल वैल्यू है, बोरवेला में पानी हुई गयो कम। वरसाद का पानी नी स्टोर कर यूं सिंचाई करा।
3: वाह वाह फूटी बात है। आपांगे प्रधानमंत्री जी कहवे भाई केस रहना बरसात ने और जो को भी पानी आवे बचाओ इन संग्रहण कर रखो, तो थे जगह बाकी बात पूरी मान रही हो। वही बात है तो ओ नाडो या चौड़ाई लंबाई मेर कितो कहीं उंडो?
4: नाडो है सर 150x120।
3: अच्छा ओ भी इंक हाथ ही बनायो?
4: हाँ इंक हाथ ही।
3: तो इंक अनुदान ही बेले है के अलग मिलियो?
4: इमजियान अनुदान 180,000 रुपए प्रोजेक्ट में इंक्लूड ही है।
3: अच्छा इमा नहीं है बड़ा? हाँ, 180। हाँ, तो उंडो कितो कहीं है वो?
4: 25 फुट गहरो है सर।
3: 25 फुट गहरो है। तो ये ताम जाम तो बढ़िया कर रहे हैं, बरसात को पूरो पानी उतार रही है
4: पूरो एक एक बूंद मायने
3: है ना। तो लारली साल की आप बात करा तो लारली साल हो भरी जो पूरी?
4: हाँ लारली साल बढ़िया बरसात ही पूरो भरी जो।
3: अच्छा तो इंग मायने बचे फसल जकी बैठी आप बार कहीं बैठी है?
4: खीरा है सर।
3: तो खीरा में पूरे साल हज गो?
4: हाँ पूरे साल हज।
3: अच्छा पूरे साल हज गो?
4: दो फसल आराम हो जाए सर।
3: जन ट्यूबवेल पानी जरूरत ही कौन रही?
4: नहीं
3: तो बरसात को पानी हज गो। हाँ। आपके तो अब की तो की बरसात मने तो कम लागे, आज भी देखो बादले भी यार छांटा छिड़को भी आलेड़ो लागे मने।
4: देखो सर उम्मीद है।
3: हाँ।
4: बाकी हाल तक तो बहुत कम है।
3: बहुत कम है
4: हाल तक तो पौंड में 2-2 फीट पानी आया है।
3: अच्छा 2 फीट आई हो है नी? हाँ।

0: कुल तो है जगो भाई जी महीनो तो श्रावण भादो मुंडा की है।
1: हाँ मुंडा की,
0: जन आज ही पूरा जन तो
1: हाँ उम्मीद तो है सा आई।
0: तो इन मायने पूरी फसल है जगह पीजे आई।
1: हाँ
0: तो थाने जगो दिमाग मायने आयो कटू कहीं हुनियो एडो आपा काम करें आपने खेती में फायदो हल्लो मिले।
1: ओ सर, मतलब जयपुर साइड कोई किसान ना जानकारी में
0: अच्छा
1: बे बतायो।
0: बे बताए जने
1: हाँ
0: थे जगह फार्म लगा
1: हाँ
0: गया।
1: शुरू में किसान ना कनु जानकारी ली।
0: तो अब बात करें आप फसल की, तो खीरा है जका केड़ा बार फसल बढ़िया है,
1: हाँ फसल जोरदार है सर।
0: तो कोई रोग वोग तो कौन लगे उड़ा?
1: नहीं
0: तो ए मने डबल डबल यार का सही दी के काई कर रहे हो बार की?
1: ध्यान इन मायने ज्यादा जरूरत खुराक ही रिया करे,
0: अच्छा
1: बाकी कीटनाशक घणो उपयोग कौन करनो पड़े
0: हाँ
1: वो
0: हाँ
1: पूरो कवर है।
0: हाँ ठीक है।
1: इन मायने बारे को मतलब वातावरण थोड़ो गले गुजिया डायरेक्ट कीट जावे को नहीं मायने।
0: जन कीड़ा एड़ा लागे कोनी
1: हाँ
0: फसल है जी निरोगी है, तो
1: निरोगी
0: ये खुराक मायने काई देवो बारे ने?
1: खुराक में मेजर एनपीके अपन जगह छह तत्व हुए जगह
0: भाई पोषक
1: कैल्शियम।
0: तत्व
1: हाँ
0: जगह।
1: पोषक तत्व ही मेजर उपयोग हुए इन मायने।
0: तो आ टंकी अंकी पचे आ भी साथ ही आयोडी है कि मैं
1: हाँ
0: अलग
1: नहीं,
0: बात?
1: और ड्रिप एरिगेशन पूरो पोलियोस के साथ ही उड़ो है, अनुदान
0: अच्छा
1: में बेड़ो ही है।
0: बूंद बूंद आलो
1: हाँ हाँ
0: करियोड़ो है
1: हाँ
0: मायने ने?
1: हाँ
0: तो अटू जिया थे वो पूरो गोल रही आओ
1: हाँ
0: गोल रही मां मशीन चला दो
1: हाँ वेंचुरी सिस्टम अपना आप मायने
0: ओ
1: जाता
0: मान
1: हर
0: जाता
1: बूंद
0: भी।
1: में। हाँ
0: तो हर बूंद बूंद उसी दो है जो को पौधा की
1: जड़ में
0: जड़ में जान तो रही, और बाकी की जिया बारे तो घास का शो गिर दी के इमानत है कौन बिल्कुल
1: नहीं
0: है
1: मायने
0: काई कारण
1: नहीं,
0: है उस?
1: उगे तो है मायने, मतलब अपन निराई गुड़ाई कर ले वहां बिन हटाए ले वहां।
0: जब भी हो जो सही हो जाए।
1: सही
0: और बाकी का ढोल ड्रमर है काई कोई
1: इन,
0: जैविक है कि
1: हाँ इम,
0: बनाओ
1: हाँ जैविक ऐसा
0: काई बनाओ?
1: जैविक ध्यान नीम स्तर बनावा, जड़ तक जरूरत नहीं हुए जड़ तक यूं उपयोग लेवा,
0: अच्छा
1: केमिकल का नहीं जावा कोनी।
0: अच्छा
1: एर फंगस के वास्ते ट्राइकोडर्मा उपयोग लेवा,
0: बहुत बढ़िया है।
1: पीएसबी कल्चर उपयोग में लेवा।
0: यह जगह कुल
1: मतलब
0: मिलार भी
1: सप्ताह के
0: जैविक।
1: मायने 3 दिन तो आपांग चाली देखो बाजार आलो खाते देखो 3 दिन तक वो यूज करा।
0: अच्छा कुल मिलार जैविक खेती का नहीं चाल रही होते बना
1: हाँ
0: रही हो यूं
1: आपा
0: काई?
1: इन प्रॉपर जैविक तो नहीं कह सका
0: हाँ
1: पर
0: हाँ
1: मिक्स है
0: मिक्स है
1: पचास
0: भाई
1: परसेंट
0: शुरुआत करी
1: हाँ
0: होते हैं
1: शुरुआत
0: ए
1: करी
0: आउन आला सालांग माने धीरे धीरे धीरे धीरे पूरी जैविक कर ले
1: कर ले।
0: काई फायदो मिले अपने जैविक? एक तो अंग्रेजी खादों काई वे या दूसरी जगह रासायनिक नाको छिड़काव, और एक जैविक है एम फर्क तो है नहीं?
1: हाँ जैविक को परिणाम लंबे टाइम तक ही रहे,
0: बढ़िया रहे भाई।
1: बढ़िया रहे,
0: दिनों दिन आपा देखा खेत खराब हो रहा
1: खराब
0: है
1: हो रही है।
0: और आपा कोई काम में लेवा तो शरीर भी रोगला हो रहा है, तो जैविक है जो ठीक रहे। अब आप बनाओ उनकी विधि बात करा तो थे कि वो नीम वाली बनाओ क्या बनाओ बजे?
1: इम ध्यान नीम ले लियो, जक्का घास आपन गाय नहीं खावे ना वे सब इम डाल दो,
0: ठीक है
1: 21 दिन तक सड़ार
0: हाँ।
1: इनकी प्रक्रिया पूरी कर छान और मायने उपयोग ले लो।
0: अच्छा 21 दिन से सड़ा कहीं
1: हाँ
0: ऊपर ना तो की
1: हाँ
0: बांधने
1: ना
0: रखो
1: हाँ
0: कहीं
1: कवर रखना
0: तो पचे बीचे
1: सूती कपड़ा
0: बीचे
1: हूँ।
0: बीच बीच हिलानो पड़े या
1: हाँ बीचे बीचे दिया नीम स्तर ने तो ज्यादा हिलाने की जरूरत कौन पड़े,
0: ठीक
1: वहां
0: है?
1: 1-2 दिन हो 1-2 दिन हो,
0: हाँ
1: बाकी ट्राइकोडर्मा जगह अपन फफूंद नाशकन बनावाना अन है जो रोज हिलावना
0: रोज
1: पड़े।
0: हिलानो
1: हाँ
0: पड़े।
1: रोज सुबह शाम एक बार बढ़िया डंडो इन हिलावना
0: तो
1: पड़े,
0: खाली नीमड़ो नाको और आकड़ा दतुरा
1: आकड़ा
0: गोबर
1: दतुर
0: गोमूत
1: हाँ
0: अगली
1: ए
0: चीजें
1: अगली
0: भेड़ा
1: चीज
0: दो?
1: बिल्कुल सर।
0: हाँ
1: ए कृषि विभाग उन जानकारी ले ली भी
0: अच्छा
1: आने की आन बनावना है,
0: बिल्कुल फूटरी बात है
1: एक
0: जा।
1: दो बार खुद बनायो देनवा।
0: अब भाई जानकारी होगी जना बना
1: हाँ
0: लो थे
1: हाँ
0: तो छिड़काव भी आप इन मायने बूंद बूंद होगा, दूजे फसल भी बन बायोडी के खेतरे में और काय लगे
1: खेत
0: उड़ो?
1: में ऐसा गंवार है ज्वार है बाजरो
0: तो
1: है।
0: गंवार में भी कई कई रोग बार लगे उड़ा है
1: हाँ रोग लागू डे
0: कोई है
1: हाँ
0: कि
1: जड़
0: कीड़ो?
1: नीचे काली हो रही है लट भी है।
0: तो इनके मायने मशीन ऐसी ना था गए टंकिया लगे
1: शुरू
0: रही
1: में वो यूज ले हम अपन जैविक वालों।
0: जैविक आलो ले।
1: हाँ यदि यूं कंट्रोल नहीं हुई
0: हाँ हाँ
1: नुकसान हूं तो लागी तो बस पेस्टिसाइड की तरफ जाना।
0: पचे ले ओ भाई
1: हाँ
0: पहली तो जैविक कानी
1: वेली
0: डालो।
1: जैविक लेना।
0: अच्छा बात आप पाची पानी री करा तो भेड़ो पानी हाल तो थे कहो इनके मायने कम भी है, आउनाला दिनाक मायने चोखी बिरका हो जाए और थांगो पौंड बढ़िया भरी जावे तो गंवार री रा बाकी जकी फसल है इनमें भी काम मिले?
1: नहीं सर ओ पॉइंट तो खाली पोलियो उस वास्ते ही है।
0: अच्छा ओ तो इन वास्ते
1: हाँ इनकी सिंचाई मतलब यूं इतनी हुई।
0: अच्छा इति वे।
1: हाँ
0: तो इनके ऊपर जगह है पाइप पाइप पर लगाएड़ो है ए यहाँ जी आज थोड़ी थोड़ी छांटा भी तो इन मुँह की पानी आयो?
1: हर बूंदिंग मायने जाए पॉइंट के मायने
0: अच्छा फालतू बिल्कुल नहीं जावे।
1: नहीं, पोलियो स्ट्रक्चर की देखी है ना
0: हाँ
1: वह
0: हाँ
1: बूंद बूंद पॉइंट में जाए।
0: तो ओका सा लंबो चौड़ो दिखे ओ कहीं बीघा 2 बीघा में कत्तो है
1: हाँ और 2.5 बीघा में सा
0: ढाई बीघा में?
1: 4,000 वर्ग मीटर में।
0: तो 2.5 बीघा को पानी ओ पूरा जो इंगमाइन है ऊपर नाला लगेड़ जाए आंगमाइन आ जावे बेकार बिल्कुल कौन जाऊ
1: नहीं
0: पानी?
1: सर
0: अब जी आप बात हुए आ गमारी फसल है और मूंग भी बाया गया आप
1: नहीं मूंग इस बार कौन लगा उड़ा बाकी लगा
0: लगा हुई हो

0: आगती पागती लगाओ, ओ छोटो एक पोंड बनाएड़ो, ओ कह रो है बस
1: ओ
0: वो भी
1: बोर,
0: पानी वास्ते।
1: हाँ इन मायने बोर को पानी डाला।
0: अच्छा इम ट्यूबवेल लगा दो डाल,
1: हाँ
0: तो ओ पानी पचे कट काम में लो।
1: ओ जिया ना पांग ओपन खेती की है इन मायने सिंचाई करन।
0: तो बिंग माय ले लो, तो अब तो ये फसलें बढ़ी है, बाकी रबी की फसलां पचे की बहुत।
1: बीम जीरा इस सब गोल नागोरी मेथी।
0: तो बी के मायने जी अबार बरसात चौकी हो जाओ मान लो, और
1: हाँ
0: पानी था गए इतो मोटो पॉन्ड बनायेड़ो है,
1: हाँ
0: तो ओ पानी है जो बी में पूरा
1: हाँ
0: हजार।
1: पानी लागी मांगे बच्ची बरसात वालों,
0: हाँ
1: तो बरसात वालों चलाई दे अपन ट्यूबवेल है।
0: तो
1: हाँ
0: बेला है बरसात को पानी कुल मिला बूंद बूंद देखते हैं सहज रिया हो है। जी हाँ देखा खेत की ढाल भी कानी है कान
1: हाँ
0: खेत में
1: हाँ
0: भी।
1: खेत को ही पूरा पानी इंग मायने आए।
0: अच्छा पाइप पाइप लगाती हैं करियो
1: हाँ
0: डे।
1: पाइप लगा
0: अच्छा ओ मायने जब मेणियों दिखे तो इनको मतलब पूरा ताम जाम करियो पानी हो सको नहीं
1: नहीं,
0: है।
1: 500 माइक्रोन को मेन्यू डालूडो है
0: अच्छा
1: हो से कौन
0: तो
1: पानी।
0: पूरो को पूरो जो को पानी रेवे। अब बात हुई जी हाँ घर भी देखो था के डाणी लांबी चौड़ी बनाएड़ी है, तो एंको जो को पानी उतरे वो भी भेड़ो करता हुला।
1: खातर पानी अपांग पीउन खातर वो अलग हुरा का
0: अच्छा
1: पक्का टांका बना उड़ा है सीमेंटेड
0: ठीक
1: वो
0: है
1: पूरा बीम जावे।
0: वो पूरा बीम जावे,
1: हाँ
0: तो साल के मायने पचे कटू लियाने की जरूरत
1: नहीं
0: कौन
1: जान की जरूरत कौन पड़े सर।
0: अब आ जी बिरखा भी है मान लो, तो इनको पानी भी टैंकर दो टैंकर तो
1: हाँ
0: आई लो
1: हाँ टैंकर दो टैंकर तो इन साल को नहीं आयो।
0: कम आयो।
1: हाँ
0: हाँ
1: पर आयो जो को वो पूरो टांका में ही है।
0: भाई मुंडा के सावन बाद दो जन कुल मिलार
1: हाँ
0: भरी जाए,
1: बरी गया।
0: और भरी जी जन बस 12 महीने
1: हाँ
0: हट
1: हाँ
0: जाए।
1: 12 महीना जाए।
0: जे पानी मान लो ले आनो पड़े तो कटू ले आओ,
1: गांव में तालाब है।
0: मोटो तालाब है
1: हाँ मोटो
0: तो
1: तालाब
0: तालाब की पचे रुखाली देख रेख कोई गाया बेचा पड़े है कि गंदी वाड़ो
1: नहीं
0: है किया
1: नहीं
0: कहीं।
1: नहीं एकदम साफ सफाई है
0: अच्छा
1: पूरा। 4 दीवारियों पैक है।
0: अच्छा पैक है।
1: पैक है
0: अच्छा
1: जाली
0: मतलब
1: वाली लगा मतलब कोई जंगली पशु या गाय भैंसिया तो मना है सामाजिक स्तर पर ही,
0: अच्छा
1: बाकी जंगली पशु भी नहीं जावे
0: नहीं
1: मायने।
0: जावे, चारों मेर काई तार बंदी है
1: हाँ
0: और
1: तार बंदी जाली लगा उड़ी है।
0: जाली लग गई। तो इनके मायने भी बचे कोई रुकाड़ो काड़ो राखता वाला देख रेख
1: हाँ
0: वास्ते।
1: रुकाड़ो गांव का स्तर पर राख उड़ा।
0: तो बीमू कोई टैंकर जिया भर लाओ थे तो मतलब 100-200 रुपया
1: हाँ
0: लेते हैं
1: हाँ
0: टैंकर वालों
1: बस
0: वाले।
1: सामाजिक स्तर पर इस अनुसार जगह भी तालाब का पाचा विकास में यूज हो गया।
0: देखो मन धड़ो भी कासा मोटो दी के खाद गो, तो ओ है जो खाद पचे कैम काम
1: और
0: लो
1: देसी खाद है
0: देसी खाद
1: और
0: है
1: सड़ाई ले हुआ इस बार
0: ठीक है।
1: अगली बार फसल में काम आ गया है।
0: तो सड़ाओ की है पर काई काई करो इमें
1: इमिजियान मतलब अपांगे जगह जैविक ट्राइकोडर्मा वगैरह मिलान
0: ठीक है।
1: एन केंचुआ है केंचुआ छोड़ दे हुआ मायने।
0: अच्छा कैंचुआ भी
1: हाँ
0: छोड़ दो।
1: पूरा पोलियो उसमें पूरा मतलब पक्को खाद अपन जगह किया कराना वो यूज करा
0: वो है जो
1: कच्ची
0: को बना
1: गोबर को डाला।
0: कच्ची को नहीं पचे इन्हें नाकण की मात्रा वात्रा बे तो थान ध्यान
1: हाँ
0: ही
1: बे
0: है
1: तो सब कृषि विभाग वालों शुरू में तो पूरा बांगन सीखियो सा
0: ठीक है
1: अभी बाद में बांगे अनुसार डाल दे।
0: बिंग अनुसार डाल दे।
1: हाँ
0: तो अबे थाने काई लागे आउन नाल दिना में चोकी बरसात हो जावे और आपके और नाडो है जो को भरी जावे पानी भेड़ो हो जावे, तो दोनों फसल हम काम ले सको के खाली इमे इमे
1: नहीं खाली इन पोलियो उसकी दो फसल हुए ना अपन साल में
0: ठीक है।
1: दोनों फसलांग मायने इन यूज ले।
0: तो खाली खीरे ही वो एक मायने को और की
1: हाल
0: लगे।
1: तक तो खीरा ही लगा है यहाँ से।
0: अच्छा दूजी की सब्जी वब्जी की
1: नहीं
0: उगाओ बोले।
1: हाल तक मां ट्राई नहीं करी है बाकी हुए इंक मायने सब चीज है।
0: आगे आऊं नाल
1: हाँ
0: दिनाग
1: आऊ
0: मायने से।
1: नाला दीना।
0: वाह सा वाह मनमोहन जी आज आप मिलर इतनी अच्छी जानकारी दीवी आपने घणो घणो धन्यवाद।
2: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
3: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
2: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
0: तो मैं बातचीत आप तई पूगती भी जाना है कि आपने दाई अवेलेबल दाई तो आईज है, क्योंकि देखो किन तरह खेती अपन ने करनी चाहिए टेम रे सागे अपन जे चला ला तो अपने चाहे तो उपज वो उत्पादन वो बोझ के चौकी मिलेली, और हमें चौपाल री रंगत गीत भजन सुवाए। तो आज गुरु पूर्णिमा रो त्यौहार तो गुरु जी ने अरदास करता थका आप तई पूग तो करा हाँ रामलाल सुथार रो गैड़ो ओ भजन।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: तो भाई आपने पूछते हुए रामलाल सुथार गैडो भजन, और हमें मारते ही पूछती हुई है नागौर मंडी हूँ पांदड़ी। तो नागौर मंडी में आज जिकी बोली लगी मूंगारी 5,500 ले 7,500 रुपये प्रति क्विंटल। नागौर मंडी में तिल बिकिया कालोड़ा तो 9,000 ले 10,800 और सफ़ेद तिली अजगी 10,000 ले 11,500 रुपये प्रति क्विंटल। ज्वारी बोली 4,500 ले 6,000 रुपये प्रति क्विंटल लगी तो गंवार 5,595 तई बिक्यो। तारा मीरो 5,562 तई बिक्यो तो औसत 40% फेट का भाव रायड़ा का 6,600 रिया। नागौर मंडी में जीरारी बोली 17,000 ले 22,400 रुपये प्रति क्विंटल लगी तो मेथी 5,700 ले 6,000 रुपये तई बिकी। इस सब गोल 9,000 13,300, सौंप 7,000 ले 13,000 तई तो चीणा 5,500 तई। नागौर मंडी में असाड़ियों 5,600 ले 5,900 तई बिक्यो तो सिंधी सुवारी बोली 6,000 ले 7,500 रुपये प्रति क्विंटल तई लगी। आपने जे भाव दाय आए वेर जे आपने जिन सार रोक्योड़ी है तो आप मंडी में ले जार आप उपज दे सको, बेच सको और आमदनी ले सको। और हमें चालता चालता बात वह जे बिरखारी, तो बिरखा कई जगह तो कम कई जगह घनी वेरी है, तो खास बात आई है जी सरकार भी अपनी कह रही है कि आपने बिरखारो जो को पानी है बिने अड़प तो नहीं जान देनो है, बिने चुको एक जगह ढाबनो है, बिने रोकनो है। आउन नाला दिना के मायने आपने फोड़ो नहीं पड़े, पानी रा तोड़ा नहीं पड़े, इन वास्ते चाहे तो नाडी तालाब में, चाहे घर्रे मायने आपने कोई मोटो होद बनायो है, चाहे आपने खेतरे मायने कोई मोटो होद बनायो है, चाहे खेत में आपने डिकी बनायड़ी है, नाडो बनायड़ो है। कुल मिलार बात आ है कि बरसात रो जको पानी है वो आपने खारज नहीं जाऊन देनो है, अटिनू बटिने नहीं बिकरन देनो है, आपने सीधो को सीधो बिने भेड़ो कर आउन आला दिना के वास्ते बिना काम में लेनो है। तो इन वास्ते आप ध्यान रखा मुंडा के और भी महीना डेढ़ महीना हो सके तो 2 महीना तक आ रुत रह जावे बिरखा वे, इन वास्ते आपने घणो घणो पानी है जो भेड़ो करनो है। और हमें घड़ी का नहीं जो हाँ तो आज री खेती बाड़ी रो टाइम अभी भी पूरो। धीरा वापरे विष्णु भाई ने सीख करा राम राम।

अभी आप सुन रहे थे खेती बाड़ी कार्यक्रम FM 103.7 MHz पर। यह है आकाशवाणी नागौर का जर्मी चैनल। शाम के 7:30 हुए हैं। अब आप सुनेंगे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश।
1: और मैं हूँ अजीत। तो आइए करते हैं शुरुआत हमेशा की तरह एक खूबसूरत विचार से, जिसे भेजा है पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, पूना राम देवांगन और कृष्ण देवांगन जी ने। लिखते हैं,
2: तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा धैर्य है, क्योंकि शांत रहने वाला इंसान हर तूफान पार कर जाता है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको इस सुंदर विचार के लिए। आइए सुनते हैं पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का। लिखते हैं,
2: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी।
1: नमस्ते।
2: उमंग कार्यक्रम सुनकर दिल खुशी से झूम जाता है। ये कार्यक्रम नंबर वन कार्यक्रम है। ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी ये कार्यक्रम उमंग कार्यक्रम में सुना और बहुत पसंद आया। ये कार्यक्रम बेहतरीन अंदाज के साथ सुनवाया गया, जो कि हमें बहुत अच्छा लगा।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस संदेश के लिए। अगला हमें मिला है संदेश छत्तीसगढ़ नगर पंचायत पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा जी का। इसके साथ साथ
2: मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज सरफराज, फरदीन, सुहान अरजान और अबान अब्बासी।
1: आपने भेजा है हमें संदेश ऊपरकोट बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से। अगला संदेश हमें मिला है संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव का।
2: हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, श्रीमती नंदा बोड़खे और हनुमान बोड़खे।
1: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आप सबका संदेश भेजने के लिए। निवेदन है इसी प्रकार से संदेश भेजते रहें और हमारी प्रश्नोत्तरी में भी भाग लेते रहें। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारी लघु प्रेरक कथाओं की श्रृंखला में।
2: आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और प्रेरक प्रसंग। मित्रों, हम सब महान आविष्कारक थॉमस अल्वा एडिसन के नाम से परिचित हैं।
1: जी श्रोता, वे मुख्य रूप से बिजली के बल्ब और प्रारंभिक चलचित्र कैमरे के आविष्कार के लिए जाने जाते हैं।
2: जी,
1: लेकिन सच तो ये है कि उन्होंने 1000 से भी अधिक पेटेंट लिए, जो अपने समय में एक असाधारण उपलब्धि थी।
2: जब एडिसन बिजली के बल्ब का आविष्कार कर रहे थे, तब उन्होंने उपयुक्त फिलामेंट खोजने के लिए हजारों प्रयोग किए। अधिकांश प्रयोग असफल रहे। कहते हैं कि वे लगभग 10,000 बार असफल हुए।
1: एक बार की बात है श्रोताओं, बिजली के बल्ब के आविष्कार के बाद एक पत्रकार ने जब उनसे पूछा कि आप हजारों बार असफल हो चुके हैं, क्या आपको कभी निराशा नहीं हुई?
2: एडिसन ने मुस्कुराकर उत्तर दिया,
1: मैं असफल नहीं हुआ हूँ, बल्कि मैंने केवल 10,000 ऐसे तरीकों को ढूंढने में सफलता पाई है जो काम नहीं करते।
2: इस कथन का मूल अंग्रेजी वाक्य है, आई हैव नॉट फेल्ड, आई हैव जस्ट फाउंड 10,000 वेज दैट वोंट वर्क।
1: श्रोताओं, असफलताओं को देखने का यह दृष्टिकोण सचमुच कितना सकारात्मक और श्लाघनीय है। इस सकारात्मक सोच ने उन्हें लगातार प्रयास करते रहने की प्रेरणा दी
2: और अंततः उन्होंने ऐसा फिलामेंट खोज लिया जिससे व्यवहारिक विद्युत बल्ब का निर्माण संभव हो सका।
1: तो श्रोताओं, इस प्रसंग से क्या प्रेरणा मिलती है? यही ना कि सफलता अंत नहीं बल्कि सीखने के अवसर का प्रारंभ है।
2: हर असफल प्रयास हमें सफलता के एक कदम और निकट ले जाता है, यदि हम में निरंतरता बनी रहे और
1: धैर्य, निरंतर प्रयास और सकारात्मक सोच से बड़ी सफलता भी प्राप्त की जा सकती है। तो श्रोता मित्रों, जरूर बताइएगा कि आपको हमारा आज का प्रेरक प्रसंग कैसा लगा। हमें आपके संदेशों का इंतजार रहेगा।
2: श्रोताओं, आज आपने इस प्रसंग में हिंदी का एक शब्द सुना, शब्द था श्लाघनीय। आइए अब इसका अर्थ जान लेते हैं।
1: श्रोताओं, श्लाघनीय का अर्थ होता है प्रशंसा के योग्य या प्रशंसनीय। ये श्लाघा शब्द से आया है। श्लाघा का अर्थ है प्रशंसा।
2: और अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
1: तो आज का प्रश्न है श्रोताओं, थॉमस एडिसन अपने प्रयोगों में लगभग कितनी बार असफल हुए थे और श्लाघनीय शब्द का क्या अर्थ है?
2: जी, प्रश्न एक बार फिर से सुन लेते हैं। थॉमस एडिसन अपने प्रयोगों में लगभग कितनी बार असफल हुए थे और श्लाघनीय शब्द का क्या अर्थ है?
1: भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800-4405559 पर। आप हमारे ईमेल पर यानी audio@cit.nic.in पर भी अपने संदेश भेज सकते हैं।
2: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CITNCERT को फॉलो कर सकते हैं। इसके द्वारा आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की निरंतर जानकारी मिलती रहेगी। और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतरण यानी ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो
1: YouTube में जाकर टाइप कीजिए NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल। आपको वहाँ सर्च के अनेक विकल्प मिलेंगे, उन्हें फॉलो कीजिए और अपनी मनचाही पाठ्य पुस्तकों को सुनिए।
2: एक और जरूरी सूचना आपको दे दें, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों के PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो सीधे किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। सर्च के विकल्प पर जाकर आप यहां अपनी मनचाही पूरी पुस्तक डाउनलोड कर सकते हैं।
1: तो श्रोताओं, बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो हमारा पहला कार्यक्रम है मातृभूमि।
2: कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की इस कविता के रचयिता सोहन लाल द्विवेदी हैं। कार्यक्रम में कविता को संगीत के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो मातृभूमि के प्रति कवि के गहरे प्रेम को प्रकट करता है। कविता में भारत भूमि के सौंदर्य और विविधता का वर्णन किया गया।

0: नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत सभी के लिए शिक्षा को बढ़ावा देते हुए एनसीईआरटी असाक्षर लोगों को साक्षर बनाने के क्रम में कार्य कर रहा है। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम टेलीविजन की कहानी।
1: इस कार्यक्रम में टेलीविजन के आविष्कार की कहानी को एक रोचक नाटक द्वारा प्रस्तुत किया गया है तथा ये भी बताया गया है कि आविष्कार की प्रक्रिया में वैज्ञानिकों को किन किन तकनीकी समस्याओं को समझना और उन्हें हल करना पड़ा।
2: डायना डायना, आज तो फुटबॉल मैच देखने पर मजा ही आ गया। वाह, क्या शानदार मैच था। मैनचेस्टर की टीम ने तो कमाल ही कर दिखाया।
3: जॉन, मुझे भी बहुत इच्छा थी मैच देखने की। कितने दिनों से तैयारी कर रही थी, मगर इस बुखार को भी इसी समय आना था। काश मैं भी देख पाती।
2: मैंने उस मैच की कुछ तस्वीरें खींची हैं। जब साफ होंगी तो मैं तुम्हें दिखा दूंगा।
3: मुझे पता था कि तुम तस्वीरें जरूर लोगे। फोटोग्राफी का शौक जो है तुम्हें।
2: मेरे मन में एक बात आ रही है।
3: वो क्या?
2: वो ये है कि जिस तरह हम रेडियो पर कुछ आवाजें सुन सकते हैं, उसी प्रकार क्या हम दूर के किसी दृश्य को किसी उपकरण के सहारे देख नहीं सकते?
3: वाह, क्या बात कही है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है?
2: हाँ, मुश्किल तो है लेकिन शायद असंभव नहीं।

दोस्तों, ये बालक था जॉन लोगी बेयर, जिसे टेलीविजन के जन्मदाता के रूप में हम जानते हैं। यूं तो टेलीविजन के विकास में अनेक लोगों का योगदान है, लेकिन जॉन लोगी बेयर ने पहली बार चलते फिरते दृश्यों के प्रसारण में सफलता पाई। जॉन का जन्म 14 अगस्त 1888 को स्कॉटलैंड के हेलेन्सबर्ग में हुआ था। उसे फोटोग्राफी का बहुत शौक था। उन दिनों विद्यालय में फोटोग्राफी पर विशेष बल दिया जाता था। एक दिन की बात है, जब जॉन लगभग 11 साल के थे,

0: शांत हो जाओ बच्चों, शांत। बच्चों, इस साल की फोटोग्राफी प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ फोटोग्राफी का पुरस्कार दिया जाता है जॉन लोगी बेयर्ड को।
1: मुझे तो पता था।
0: जॉन मंच पर आकर पुरस्कार ग्रहण करें। और एक बात और, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जॉन की फोटोग्राफी इतनी उम्दा है कि उसे इस स्कूल के फोटोग्राफी डिपार्टमेंट का अध्यक्ष भी बनाया जाता है।

जॉन का बचपन एक माली के लड़के के साथ बीता जो उसके घर के बागीचे में काम किया करता था। वो अक्सर उसके साथ फोटोग्राफी करता। जॉन पढ़ने में बहुत तेज था। विद्यालय की पढ़ाई पूरी करने के बाद जॉन बेयर्ड ने ग्लासगो में रॉयल टेक्निकल कॉलेज में विज्ञान का अध्ययन आरंभ किया। 5 वर्ष की पढ़ाई के बाद वो सहायक इंजीनियर बन गए। एक बार वो अपने मित्र से मिलने त्रिनिदाद गए। यात्रा के दौरान जहाज के रेडियो ऑपरेटर से उनकी दोस्ती हो गई।

फिर तो दोनों ने विद्युत द्वारा हवा में तस्वीरें भेजने की समस्या पर गंभीरता से विचार किया। चौंतीस

0: विलियम, इतने दिनों से हम प्रयोग कर रहे हैं लेकिन लगता है कि अभी मंजिल दूर है।
1: हाँ जॉन, जॉन क्यों ना हम अपने प्रयोग को एक बार फिर नए सिरे से करें।
0: हाँ ठीक कहा तुमने। अच्छा सुनो, देखो मैं कुछ चीजें लेकर आया हूँ।
1: क्या?
0: ये है चाय रखने का पुराना डिब्बा, और ये है टोपी रखने वाला गत्ते का डिब्बा।
1: जॉन हाँ, मैं भी कबाड़ी की दुकान से एक बिजली की मोटर लेकर आया हूँ जैसा तुमने कहा था।
0: अच्छा
1: ये देखो।
0: हेलो, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। हाँ ठीक है, ये तो कट गया। अब हम इस गोल गत्ते में ढेर सारे छोटे छोटे छेद बनाते हैं।
1: छोटे छोटे छेद?
0: हाँ,
1: उनसे क्या होगा?
0: मैं बनाता हूँ। इससे ये होगा विलियम कि इस गोल गत्ते को हम बिजली की मोटर में लगाकर घुमाएंगे।
1: अच्छा।
0: और इसके पीछे रहेगा ये प्रोजेक्शन लैंप।
1: वाह।
0: हाँ, और बीच में तस्वीरों के नेगेटिव रखेंगे। फिर देखते हैं क्या होता है।
1: चलो करके देखते हैं।
0: इसको इसमें छेद तो कर दिए। हाँ। अब इसमें तस्वीरों के नेगेटिव लगाए।
1: ये प्रोजेक्शन लैंप में यहाँ रख देता हूँ।
0: हाँ ठीक है, अब इसको घुमा के देखते हैं। बात तो बनती नजर आ रही है।
1: देखो सामने दीवार पर देखो। जॉन लगता है हम सही दिशा में काम कर रहे हैं।
0: और घुमाओ, और घुमाओ। हाँ शाबाश शाबाश, ऐसे ही। लगता है हमें कामयाबी भी मिल रही है। हम जरूर सफल होंगे विलियम, जरूर सफल होंगे।
1: हमारी मेहनत रंग लाएगी।
0: हाँ।

दोस्तों, उन्होंने पाया कि चकत्ती घुमाकर प्रकाशित किए जाने वाले संपूर्ण दृश्य छिद्रों के माध्यम से तीव्र एवं मंद बिंदुओं में खंडित हो जाते थे। उत्साहित होकर उन्होंने सेलेनियम सेल और नियॉन लैंप रेडियो वॉल्व आदि उपकरणों के माध्यम से अपना काम शुरू किया। इस प्रयोग में उन्हें काफी समय लगा। कठोर परिश्रम से उनका पहला टेलीविजन ट्रांसमीटर और रिसीवर बन पाया। आखिरकार वो सन 1924 ईस्वी के वसंत में एक तस्वीर को 3 गज की दूरी तक भेजने में कामयाब हुए। लेकिन समस्या ये थी कि तस्वीर साफ नहीं थी और उसको पहचानना भी मुश्किल था। सन 1925 2 अक्टूबर उन्होंने अपने उपकरण में प्रकाश को विद्युत किरणों में परिवर्तित करने के लिए एक नई चीज लगाई।

0: स्विच दबाने पर वो आश्चर्यचकित रह गए। उनके उपकरण में दृश्य का पूरा चेहरा उभर आया था। उसे देखकर वो कुर्सी से उछल पड़े। इस प्रकार मानव आकृति के प्रसारण में ये सफलता उनकी पहली सफलता थी।
1: साथियों, रॉयल इंस्टीट्यूट लंदन के इस विशेष समारोह में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच एक विशिष्ट व्यक्ति उपस्थित है। इन्होंने एक खास उपकरण का आविष्कार किया है जो चलते फिरते दृश्यों का प्रसारण कर सकता है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार रेडियो आवाज को प्रसारित करता है। वो विशेष व्यक्ति हैं जॉन लोगी बेयर। आज ये अपने उपकरण का प्रदर्शन करेंगे। आइए मिस्टर जॉन लोगी बेयर।
2: जी साथियों, मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि अब दृश्यों का प्रसारण संभव है। इस उपकरण के द्वारा आप दूर के दृश्यों को अपने घर में भी देख सकते हैं।
3: श्रीमान, मुझे तो ये बात असंभव लगती है।
2: संभव है श्रीमान, ये संभव है। आप इस कैमरे के सामने आएंगे?
3: हाँ,
2: आइए।
3: यहाँ?
2: हाँ, आइए आइए, इस तरफ।
3: इधर?
2: हाँ, अब आप इस कैमरे के सामने चलिए। हाँ, इधर? हाँ, थोड़ा सा इधर।
3: इधर?
2: हाँ, अब ठीक है। हाँ, साथियों, मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया सामने स्क्रीन पर देखिए।
1: ओह, ये तो कमाल हो गया। आंखों को विश्वास नहीं होता। ओह, वेरी गुड, वेरी गुड। कांग्रेचुलेशन मिस्टर जॉन, इट्स अन अनबिलीवेबल मिरेकल।
2: वाओ, शुक्रिया शुक्रिया।

0: सन 1928 ईस्वी में ही उन्होंने रंगीन टेलीविजन के प्रसारण पर भी कार्य करना शुरू कर दिया था। सन 1936 ईस्वी में बीबीसी ने अपनी टेलीविजन सेवा उनके विकसित उपकरण से शुरू कर दी। 14 जून सन 1946 में इस महान आविष्कारक का निधन हो गया। जब भी हम टेलीविजन देखते हैं, जॉन बेयर्ड अक्सर याद आते हैं। विश्व उनके इस महान योगदान के लिए सदा उनका आभारी रहेगा।
1: तो श्रोता, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम टेलीविजन की कहानी। आशा है कि यह कार्यक्रम आपने जरूर पसंद किया होगा।

सोशल मीडिया पर चैटिंग करते समय अपनी सुरक्षा के प्रति जागरूक रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। NCERT द्वारा जनहित में जारी।

0: तो अब हमारा आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है, इसलिए अपने मित्र अजीत और उमंग की तकनीकी टीम के साथ यानी कुसुम लता,
1: जगबंधु,
0: चेतना,
1: अर्शद,
0: सौम्या
1: और फैजान के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग, उमंग,
3: उमंग। अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। यह आकाशवाणी नागौर का चिरमय चैनल है। रात्रि के 8 बजे आप सुनेंगे संसद समीक्षा।
4: अब आप जागृति शर्मा से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले लोकसभा। लेखक है PTI भाषा के दीपक रंजन। लोकसभा ने आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी। नीट प्रश्न पत्र लीक की पृष्ठभूमि में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में सख्त प्रावधान शामिल करने के लिए लाए गए इस संशोधन विधेयक पर हुई चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की कुछ टिप्पणियों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। इस कारण सदन की कार्यवाही पहले एक बार करीब 40 मिनट के लिए अपराहन 2:30 बजे तक और फिर 3 बजे तक स्थगित कर दी गई। हंगामे के बीच ही प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब दिया और उनके जवाब के बाद सदन ने ध्वनि मत से विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी। विधेयक पारित होने के बाद कांग्रेस सांसदों की नारेबाजी के बीच ही अध्यक्ष ओम बिरला ने कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। चर्चा का जवाब देते हुए जितेंद्र सिंह ने कहा कि नीट प्रश्न पत्र लीक के मामले में सरकार ने फौरन कार्रवाई की और 12 जुलाई को जांच CBI को सौंप दी गई। उन्होंने कहा कि कल इस मामले में आरोप पत्र दायर कर दिया गया है और आज से सुनवाई शुरू हो गई है। श्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि नए संशोधन विधेयक के प्रभाव में आने के बाद फास्ट ट्रैक अदालत में सुनवाई के साथ इस मामले में 5 महीने में फैसला आ जाएगा। श्री सिंह ने कहा कि प्रश्न पत्र लीक के विरुद्ध कड़े प्रावधान के साथ मूल कानून 2024 में लागू किया गया था और आज प्रश्न पत्र लीक संबंधी खामियां सामने आने के बाद सरकार ने माना कि कानून को और कड़ा बनाने की आवश्यकता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने चर्चा के दौरान कहा कि दिल्ली में मासूम बच्चों पर जुल्मों सितम ढाया गया, जबकि सरकार ने सर्वोच्च संयम के साथ कार्रवाई की और सुनिश्चित किया कि कोई भी हताहत नहीं हो। श्री सिंह ने कहा कि कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने देश में पिछले कुछ साल में 152 बार प्रश्न पत्र लीक होने और इसमें 750 करोड़ बच्चों के प्रभावित होने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि पता नहीं प्रियंका गांधी ये आंकड़े कहां से लेकर आए हैं। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी ने 2024 का कानून लागू होने के बाद कोई कार्रवाई नहीं होने की बात कही, जबकि ऐसे मामलों में 52 प्राथमिकियां दर्ज हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिक्षा व्यवस्था में सुधार की प्रतिबद्धता के अनुरूप सरकार 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लेकर आई, जो कांग्रेस का अधूरा काम था। लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 के प्रावधानों के अनुसार परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक करने या अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने वाले व्यक्तियों को कम से कम 5 साल और अधिकतम 10 साल तक के कारावास तथा 50 लाख रुपए तक के जुर्माने की सजा हो सकती है। इसी तरह संगठित अपराधों के लिए कम से कम 7 साल के कारावास और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रस्ताव है। प्रस्तावित संशोधनों के तहत सभी जांच 2 महीने के भीतर पूरी करनी होगी। विधेयक में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को त्वरित अदालतें स्थापित करने का निर्देश देने का भी प्रस्ताव है। ये अदालतें आरोप पत्र दाखिल किए जाने के 3 महीने के भीतर मुकदमे की कार्यवाही पूरी करेंगी। इससे पहले सदन में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने नीट प्रश्न पत्र लीक के खिलाफ छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई को लेकर बुधवार को लोकसभा में गृहमंत्री अमित शाह पर गंभीर आरोप लगाए। इसका सत्ता पक्ष ने तीखा विरोध किया और उनसे माफी की मांग की। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि या तो नेता प्रतिपक्ष बताएं कि किस आधार पर उन्होंने देश के एक जिम्मेदार व्यक्ति पर गंभीर आरोप लगाया है या फिर वे माफी मांगें। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष बिना किसी तथ्य, जांच और साक्ष्य के किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा सकते। श्री राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि देश की शिक्षा व्यवस्था की आत्मा पर भारतीय जनता पार्टी के वैचारिक संगठन ने कब्जा कर लिया है और पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र धर्मेंद्र प्रधान तो सिर्फ एक प्रतीक मात्र थे। उन्होंने छात्रों के विरोध प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए ये भी कहा कि प्रदर्शनकारी बच्चों के माता पिता में साहस नहीं है कि वे भाजपा और उसके वैचारिक संगठन का मुकाबला करें, लेकिन ये बच्चे सामने खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि छात्रों ने डर को बाहर निकालकर चुनौती दी और खुलकर सवाल किया। उन्होंने सदन में गृहमंत्री की गैर मौजूदगी को लेकर दावा किया कि उनमें हिम्मत नहीं है कि वे सदन में आ सकें। नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि गृहमंत्री डरे हुए हैं। इसके बाद उन्होंने छात्रों पर बल प्रयोग का उल्लेख करते हुए गृहमंत्री पर गंभीर आरोप लगाए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष ने गंभीर आरोप लगाए हैं तो सरकार को बताना चाहिए कि छात्रों पर बल प्रयोग का आदेश किसने दिया था। सत्ता पक्ष के सदस्यों ने राहुल गांधी माफी मांगो और कांग्रेस के सदस्यों ने एलओपी को बोलने दो और गृहमंत्री जवाब दो के नारे लगाए। सदन में काफी देर तक गतिरोध की स्थिति बनी रही। श्री राहुल गांधी ने कहा कि सड़कों पर इस देश के भविष्य ने जो किया वो कोई गुस्सा, हिंसा और नफरत नहीं थी, बल्कि ये युवाओं की अभिव्यक्ति थी तथा सत्तारूढ़ दल समेत सभी दलों को इसका सम्मान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा के मित्र अपने बच्चों से भी इसके बारे में पूछेंगे तो आंदोलनकारी बच्चों के साथ उनकी भी सहमति ही पाएंगे। उन्होंने कहा कि लोग एक परीक्षा पर जितना पैसा खर्च कर रहे हैं वो सरकार के शिक्षा बजट से ज्यादा है। सत्ता पक्ष की टोका टोकी के चलते राहुल गांधी ने बोलने से इनकार कर दिया और अपनी सीट पर बैठ गए। इसके बाद श्री रिजिजू ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष ने एक असंसदीय शब्द का इस्तेमाल किया जिस पर आपत्ति जताई गई है। उन्होंने कहा कि हम उन्हें सुनने को तैयार हैं और वे अपनी बात रखें। उन्होंने

0: कहा कि आप भावुक चेहरा दिखाकर सदन को गुमराह नहीं कर सकते। श्री बिरला ने कहा कि सदन में अच्छी व्यवस्थाएं रही हैं और अच्छी मर्यादाएं रही हैं, मर्यादा बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई मर्यादा और तर्क से बोलता है तो देश सुनता है और सम्मान भी करता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी श्री राहुल गांधी से भाषण जारी रखने की अपील की और सत्ता पक्ष के सदस्यों से उनके भाषण के बीच में टीका टिप्पणी नहीं करने को कहा। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष ने भाषण जारी रखा, हालांकि दोनों पक्षों में नोक झोंक की स्थिति बनी रही और कार्यवाही 2:30 बजे तक स्थगित कर दी गई। सरकार ने जन्म और मृत्यु के पंजीकरण संबंधी कानून में संशोधन करने के प्रावधान वाला विधेयक भी आज सदन में पेश किया। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने सदन में विपक्ष के हंगामे के बीच जन्म और मृत्यु का पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। संसदीय प्रक्रिया के तहत लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विधेयक को पेश किए जाने का विरोध करने के लिए विपक्ष के कुछ सदस्यों के नाम पुकारे, हालांकि कोई विपक्षी सदस्य नहीं बोला और इसके बाद श्री नित्यानंद राय ने विधेयक पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969-2023 में संशोधित की धारा 13 के 3 में और संशोधन करना है, ताकि विलंब से होने वाले पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक कड़ा बनाया जा सके। मौजूदा प्रावधानों के तहत यदि जन्म या मृत्यु का पंजीकरण 1 वर्ष से अधिक की देरी से कराया जाता है तो इसके लिए जिला मजिस्ट्रेट, डीएम, उपमंडल मजिस्ट्रेट, एसडीएम अथवा किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट के आदेश की आवश्यकता होती है। विधेयक में देरी की अवधि के आधार पर 2-स्तरीय मंजूरी व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखिका है पीटीआई भाषा की मनीषा श्रीवास्तव। राज्यसभा ने आज उस विधेयक को पारित कर दिया जिसके प्रावधानों के तहत राष्ट्रगीत वंदे मातरम के गायन के दौरान किसी भी तरह का व्यवधान या उसका अपमान आपराधिक कृत्य माना जाएगा और इसके लिए 3 वर्ष तक की सजा हो सकती है। उच्च सदन ने राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 को संक्षिप्त चर्चा के बाद ध्वनिमत से पारित कर दिया। विधेयक पारित किए जाने के समय कांग्रेस सहित विपक्ष के सदस्य सदन में मौजूद नहीं थे, क्योंकि वे गृहमंत्री अमित शाह की गैर मौजूदगी सहित विभिन्न मुद्दों पर विरोध जताते हुए सदन से वॉकआउट कर गए थे। हालांकि आम आदमी पार्टी, बीजू जनता दल, भारत राष्ट्र समिति और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने चर्चा में हिस्सा लिया। विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि ये विधेयक देश के लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए लाया गया है। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम देश के स्वतंत्रता संग्राम में देशवासियों का प्रिय नारा था। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने अपने तुष्टीकरण की नीति के कारण वंदे मातरम को आजादी के बाद वो सम्मान नहीं प्राप्त होने दिया जो उसे मिलना चाहिए था। उन्होंने कहा कि इसी कारण वंदे मातरम के केवल 2 अंतरों को ही सरकार ने स्वीकार किया और इसके 2 ही अंतरे सरकारी कार्यक्रमों और आयोजनों में गाए बजाए जाते थे। श्री राय ने कहा कि आजादी मिलने के बाद पहले दिन प्रथम गृहमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के निर्देश पर पंडित ओंकार नाथ ठाकुर ने आकाशवाणी पर पूरा वंदे मातरम गाया था। विधेयक के उद्देश्यों और कारणों में कहा गया है कि राष्ट्रगान की तरह राष्ट्रगीत को गाने से जानबूझकर रोकने या ऐसे गायन में लगी किसी सभा में व्यवधान पैदा करने को एक दंडनीय अपराध बनाने का प्रावधान किया जाता है। विधेयक में राष्ट्रगीत के अपमान के लिए 3 वर्ष तक की सजा या जुर्माना अथवा दोनों के प्रावधान हैं। इससे पहले विधेयक पर हुई चर्चा में सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री तथा आरपीआई के रामदास अठावले, भाजपा के राधामोहन दास, मयंक कुमार नायक, डॉ अशोक कुमार मित्तल, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के गोला बाबू राव, तेदेपा के विजया चिंता कायला, राजद के मनोज कुमार झा, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, शिवसेना की डॉ ज्योति नागनाथ वाघमारे, बीआरएस के रविचंद्र वद्दीराजू, बीजेद की सुल्तादेव और अन्ना द्रमुक सदस्य डॉ एम थंबीदुरई ने हिस्सा लिया। विधेयक पारित होने के बाद भाजपा के माधवराव गोपछड़े, डॉक्टर अनिल सुखदेवराव बोंडे और डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी तथा भाजपा के नाम निर्देशित सतनाम सिंह संधू ने आसन की अनुमति से विशेष उल्लेख के जरिए लोक महत्व से जुड़े मुद्दे उठाए। विशेष उल्लेख के बाद 3:15 पर पीठासीन अध्यक्ष घनश्याम तिवारी ने उच्च सदन की बैठक पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी। सदन की बैठक अब बृहस्पतिवार को सुबह 11 होगी। विपक्षी सांसद दिल्ली में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्यालय में दिल्ली पुलिस के प्रवेश और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ की पूर्व अध्यक्ष आयशी घोष को गिरफ्तार करने की कोशिश का विरोध कर रहे थे। साथ ही उन्होंने नीट प्रश्न पत्र लीक के विरोध में राष्ट्रीय राजधानी में प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग भी दोहराई। सूचीबद्ध दस्तावेज सदन के पटल पर रखे जाने के तुरंत बाद माकपा सांसद जॉन ब्रिटास ने आयशी घोष का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि सादे कपड़ों में दिल्ली पुलिस की एक टीम 2021 में जेएनयू में हुए प्रदर्शन से जुड़े मामले में आयशी घोष को गिरफ्तार करने के लिए कल पार्टी कार्यालय में दाखिल हुई। उनकी बात का समर्थन करते हुए नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि लोकतंत्र खतरे में है। कांग्रेस अध्यक्ष ने सवाल किया कि एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल के कार्यालय में पुलिस के प्रवेश का आदेश किसने दिया। आरोपों का जवाब देते हुए सदन के नेता जेपी नड्डा ने कहा कि यह एक सामान्य कानून व्यवस्था से जुड़ा मामला है। उन्होंने कहा कि पुलिस को कानून के अनुसार कार्रवाई करनी होती है और उसने उसी के अनुरूप कार्रवाई की है। श्री नड्डा ने कहा कि वे भी छात्र आंदोलन से जुड़े रहे हैं और उन्हें भी ऐसी कई कार्रवाइयों का सामना करना पड़ा था। माकपा तथा अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने इस घटना पर विरोध जताया। सभापति ने सदन में शून्यकाल शुरू करने और आसन की अनुमति से सदस्यों से अपने अपने मुद्दे उठाने के लिए कहा। इसी बीच विपक्षी सदस्यों ने नीट प्रश्न पत्र लीक के विरोध में पिछले सप्ताह राष्ट्रीय राजधानी में प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर गृह मंत्री के बयान की मांग भी उठाई। सत्तापक्ष के सदस्यों ने इसका विरोध किया। विपक्षी सदस्य श्री शाह के बयान की मांग करते हुए नारेबाजी करने लगे। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल चलाने का प्रयास किया और भारतीय जनता पार्टी के मदन राठौर, तेजवीर सिंह, डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी और राजीव भट्टाचार्य ने यातायात जाम, सरकारी स्कूलों में खेल के मैदानों की स्थिति और खाली पड़ी जमीनों में सौर ऊर्जा उत्पादक संयंत्र लगाने संबंधी मुद्दे उठाए और सरकार से इनके समाधान की मांग की। इस दौरान विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी था। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदस्यों से शून्यकाल चलने देने की अपील की, लेकिन सदन में व्यवस्था बनते न देख उन्होंने कार्यवाही को दोपहर 12 तक स्थगित कर दिया। बैठक स्थगित करने से पहले सभापति ने प्रदर्शन कर रहे सदस्यों को आसन के समक्ष नहीं आने की चेतावनी दी। 20 जुलाई से शुरू हुए संसद के मॉनसून सत्र के दौरान राज्यसभा में लगातार व्यवधान देखने को मिल रहा है। मॉनसून सत्र में आज पहली बार उच्च सदन में शून्यकाल हुआ, लेकिन केवल 4 सदस्य ही अपने मुद्दे उठा पाए। इस सत्र में प्रश्नकाल एक बार भी नहीं हो पाया है। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: अभी आप संसद समीक्षा सुन रहे थे। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमे चैनल से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 8:15 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं लोकगीतों का फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो गोरवंद।

0: Every government program should be seen by any boy, any dover, any jota, any mota, any wood, any bed, any gym, any hadiker, any seven, any abrico, any oru hoge.
1: Dalyari oru dana dana.
0: Ram Ram Shah. I devilure.
1: Durura Brahma, Durura Vishnu, Durura Devo, Maheshwara.
0: Are you two going away?
1: Param Brahma, Rasme, Shri Duru, Vename.
0: Are you two going away? Do you?
1: Ah, Duru Punima, Tata, and Duru Nana.
0: आज पुण्य में गुरु पूर्णिमा है
1: आज दिन आपने दुरु ने नमस्कार करनो प्रणाम करनो मैं तो ठेड़ो मानू जी रे
0: आज सही है बेटा जो जी सही बात की तू दो सही बोलियो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु
1: विष्णु
0: हां सही है बेटा
1: संसार में तीन ही देवता मोटा मोटा बेसटला अपन माता पिता और गुरु है
0: आज सही कहता है बेटा तो जे गुरु की महिमा तो लगी है बेटा
1: हां
0: ऐ गुरु बिना ज्ञान नहीं है
1: हां गुरु अपन अंधारों प्रकाशी और ले जावे
0: आज सही है बेटा ए वो एक दो ऐनी काके लागू पाई धन को आउंदा है
1: दुरु डोविन दोनों ठड़े टाटे लाडू भाए और बलियारी गुरु आपने डोविन दियो बताए
0: बलियारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए काई भाई भाई भाई
1: अपन है ना भगवान तो रास्ता है ना गुरु बतावे
0: आज जो गुरु का मान करो गुरु का सम्मान करो आ गुरु पूर्णिमा आज
1: टाटा पटे लाडू
0: अजी तो रे वो फोन करे पिन पिन ला मारे बच्चिया
1: ओलो सा ओलो
0: आईलो
2: आ राम राम काका
0: हे राम राम शाही राम राम शाही आपरो नाम भिजो कोकिनीर गांव भिजो
2: केलासराम मुंडेल बोलू मुंडवा से
0: ओ हो केलास जी कहीं करो मुंडवा में ओ
2: कहीं करो बाबा बेटा बरसात हुई काफी
0: अरे वाह शिवा खेती बाड़िया कर ली
2: खेती बाड़िया जोरदार है
0: अरे वाह शिवा और बचो टंका भरिया पानी को
2: टंका भरी गया फुल एक में हुई
0: अरे वाह शिवा कहीं के और बचो घर में परिवार में सब क्या नहीं हो
2: सब एकदम तकड़ा
0: ए जाने भोगाम कैसे लग गये हो
2: बहुत चंगो
0: आओ एक खेती रे काम करो और की करो
2: खेती रे कर ला रे ला कोई की वो कह जी मोक पड़े जी कर ला
0: आज सही है घर में बड़े पोपी पेट को सवाल ले भी रहो
2: हाँ
0: ए जो खाको एक सवाल करे उसका जवाब बढ़ाओ
2: करो सा
0: ए दो उंगल की है सड़क
2: अच्छा
0: ए दो आंगले की सड़क है
2: हाँ
0: उस पर रेल चले बे धड़क
2: अच्छा
0: लोगों के काम आती समय पड़े तो खाक बनाऊती खाक रो मतलब राख
2: हाँ
0: अबे तो आई हुए
2: अतु काका यार मन को यहाँ थे बताओ
0: ऐ देख लो रे
1: हाँ टाटा
0: ए भाई को हमने हरा दिया
1: हाँ थे होशियार हो बच्चे
0: ए मैं होशियार हूँ तुम कहीं करता तुम कहीं हो
1: मैं बताऊँ तो उत्तर
0: आ बताओ
1: धड़ी हो बस धड़ी
0: ये धड़ी नहीं होती है तुम भी हार गया
1: हाँ तुम चल लिया
0: ए भाइयो
1: हाँ
0: आ जो वे बेटी माची से दुनिया ली
2: हाँ हाँ वे
0: ए भाई को बोल हेलो
1: हेलो
2: हाँ हेलो
1: पढ़े लाडू सा
2: खुश रहो पढ़ाई करो
1: पढ़ाई तो करो अब आर बरसात आवे तो ना हूँ बेटो
2: अच्छा अच्छा बरसात आवे जा बढ़िया गड़ाऊ
1: हाँ ठाटे तो बढ़िया हुई बेटा वे बरसात
2: जोरदार
1: ये नया तो नया
2: नया घने ही
1: हाँ मूंड वाम टटड़ी हुई बरसात वे मैं तो भगवान ने जो अन्य बेचे माता नहीं छोड़ी
2: ओ घनी करी भगवान आवारी है आज आ जाए
1: हाँ बढ़िया ओ ठाटा मूंडा में घी शक्कर देवत
2: ओ घी शक्कर देवत
1: अब आगे तो है ना अपने गुरु पुण्यमा है
2: गुरु पुण्यमा कोई कोई भजन गीत सुनाए तो बढ़िया
1: हाँ पर अपने गुरु से तेरा मानु चाहिए जो गुरु सही रास्ता दिखावे अपने
2: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
1: हाँ गुरु तुम्हार शिष्य तुम बैठे
2: गुरु से बढ़कर कोई नहीं है
1: कोई नहीं है तो मैं तो सदा नहीं गुरु माँ बाप गुरु है अपना
2: बिल्कुल पहला गुरु माँ बाप ही तो है
1: और पढ़ा वैसे तो भी गुरु है अपना
2: भाई गुरु है संत लोग वही गुरु है
1: और
2: उम्र से बड़े है वही गुरु है
1: बिल्कुल सही बात है दी आज कहीं सुना प्रोग्राम में
2: तो गुरु पूर्णिमा कोई सुनाए दो कोई
0: भिजो
3: यहाँ बड़ी आज
0: हमीराना से प्रियंका बोलती हो कहीं के जी प्रियंका भाई हमीराना में
3: काका।
0: जी मारी बेटा ओ ए थारा बोरड का पीपरा वाला हाउ जी दी राखी हो जी प्रोग्राम कैसे लगे मारी बेटी
3: बहुत ही बढ़िया लगे।
0: ए भाई बहन गीता हो थे ए पापा जी कहीं करते हैं
3: पापा लकड़ी काम करते
0: हैं। अच्छा ए मम्मी जी कहीं करते हैं
3: मम्मी जी घर काम करते
0: हैं। लाड कौन राखता है तुम्हारा बताओ आज दोनों ही रहो ए भाईयो ए मारो फोटो आवड़े थोड़ो इसे हटी करो
3: हाँ करो
0: ए जगलू रे
1: हेलो
0: हेलो हेलो गड्ढा भाई को बोल
1: हेलो
3: जगलू राम राम
1: राम राम पटेल लाडू भाई
3: खुशी रहो खुशी रहो।
1: आज भाई दुरु पूर्णिमा आनी है तो दुरु ने प्रणाम करिया तुम करिया
3: हाँ करिया
1: हाँ दुरु ब्रह्मा दुरु विष्णु है हाँ अपन तेनो मानू भाई दुरु जी तो मतलब चल दो मानू
3: नहीं गणी मानू
1: आठी बोल ध्यान राखियो ना पढ़ाई करजो लापरवाही मत करजो आ टाइम सुना प्रोग्राम में
3: कोई बोल नहीं मारे बाजू
1: बेटा
0: आ बिजा
1: बेटा निवणा टर हूं ढोरो ठान है
0: आहो
1: चरणा में राट जो मान
0: आई जो यो नंबर बिजा
1: ओ चाहे

0: हेलो काका, राम राम।
1: ए राम राम शाही रोजाऊ भिजो को किनिर गाँव भिजो।
0: मेरा नाम नरेश भालू राम बोल रहा हूँ।
1: वो नरेश भाई बंदरे में खाई करो
0: बंदरा की नहीं करा खेती बाड़ी करा।
1: ए खेती बाड़िया की सी के मार बेचा
0: ठीक है
1: आओ। ए ब्यावड़ो यू थांगो हल्दी तो नहीं उम्र ले ली हो?
0: उम्र तो 18 साल हुई है।
1: 18 साल हुई हो जो की बात ये बेटा। ए कितना भाई बहन हो?
0: भाई बहन 5 हाँ।
1: पापा जी मम्मी जी कहीं करते हैं तुम्हारे?
0: मैं खेती बाड़ी बंद करते हैं।
1: अच्छा अच्छा अच्छा। ए तो भाई हो?
0: हाँ काका।
1: ए तो काको एक सवाल करे उसका जवाब करना पड़ेगा तुम्हारे को।
0: हाँ काका आ जाने दे।
1: किस प्रकार के कमरे में कोई दरवाजा नहीं होता है?
0: ओके काका आइयो को।
1: ए जगलू रे हमने भाई को हरा दिया है।
2: हम भी आ गए हैं।
1: अरे राम राम राम तो हम भी जावे गई।
2: हाँ जल्दी बताओ।
1: ए भाइयो
0: हाँ काका
1: आज फूम भी हुए खेत में उग जी की फूम भी हुए भाई जी बात बोलो। हेलो
2: हेलो
0: हेलो डगलू भाई राम राम।
2: राम राम पटेल लाडू नरेश भाई
0: खुशी रहो खुशी रहो।
2: और पटा ये डाई करो ठंड रहो।
0: हाँ करा
2: ठंड बरसात हुई तो नहीं बने
0: बरसात फुल हुई।
2: एक बात ध्यान रहा जो दूर जी तो ठेरो मान जो आज दूर पूर्णा मैं बचे।
0: हाँ
2: मैं तो दूर ने निवड़ा चलू।
0: हाँ
2: दूर आप आगे बढ़ा नहीं तो अपन आवे टे टबू टो एबीसीडी सब दूर तो सीता। हाँ आ टाइम सुना प्रोग्राम में
0: दूर पूर्णी
2: मारो।

0: की है मारे भैया ओ दो भाई की बयां की शिव की पिशिन को पोगाम
1: हेलो डोर बे
0: ई पोगाम में कोई भाई गीते बजने होना चाहूंता है तुम कहीं केउता हो
1: मैं तो ते रेडियो स्टेशन फोन करनो है
0: आज कद करनो है गीती बजा करना है क्या निम लगाऊना तुम बिठाओ
1: अब बार बताओ छटाओ तो रात बचे दोपहरा 12 बजे 8 बजे फोन करना है
0: आजी, आजी, आजी।
1: फोन नंबर है 015-82-240-168
0: अरे अबे कहीं करो एक दो दो बोले एक डेढ़ा बोले दो होड़ोड़े बोलिए ला बोल भेजा के मिंडी एक को पांचो आठ दुओ
1: दुओ
0: ए दुओ जो को मिंडी एक को छको
1: आठो
0: ए निमरा माते फोन करो गीत बजन हुरो
1: सही बात है
0: भाई बेचारी
1: हां टाटा
0: ए के भाई का फोन नहीं है हम सुमे की को मिल ले नहीं सी गया तो तुम्हारे काका को हाका करेंगे पाना बांचो
1: जल्दी बांचो टमेडियो आए देवराज सिंह जी तो
0: आओ
1: नाडोरू टवीटा तो
0: आए
1: रोल सुनीता तो
0: आए
1: ए तो आयो टाटा
0: आई कोई बात नहीं हाथ जोड़ के नो अगले द्वार का फोन कर कर जो
1: टेडियम टेडियम
2: इस कार्यक्रम में काका की भूमिका में थी सुभाष कंडारी और ढगलिया की भूमिका में थी संजय पाराशर
0: ए बेजारी
1: हाँ टाटा
0: अब भाई आवाज के प्रोग्राम में तकनीकी है यो किसका है
1: मैं बंद बैठा नहीं जितेंद्र तुम्हार जी तो
0: आज के प्रोग्राम के पशुत की जा
1: असो तुम्हार जी डोयल
0: अब हनीश लगो मारे बीजा
1: हवा लटो स्वच्छ रहो स्वस्थ रहो हेलो डोरबन
0: होंगी तो अबे आप रे गो के नीर हो गए
1: तटला राम ने निरो सी तटे है
0: राम राम शाय।

अभी आप राजस्थानी लोकगीतों का फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो गोरबंद सुन रहे थे। FM 103.7 MHz पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी नागौर के चिरमे चैनल को। रात्रि के 8:45 हो रहे हैं। कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे समाचार संध्या, जिसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, याद रखें समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। लोकसभा ने परीक्षा में गड़बड़ी रोकने के लिए सख्त सजा और फास्ट ट्रैक कोर्ट का प्रावधान करने वाला पेपर लीक रोकने वाला विधेयक पारित किया। राज्यसभा ने वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान कानूनी संरक्षण देने और इसके अपमान को अपराध घोषित करने वाला विधेयक पारित किया। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति गंभीर, 4 लोगों की मौत और 4 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में मरने वाले प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़कर 40 हुई। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने चिंता व्यक्त की। और राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाज अंकुश, साक्षी, अरुंधति

0: कोर्ट स्थापित करने का आदेश दिया गया है। अपराधों की जांच पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तारीख से 2 महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए। मुकदमे की सुनवाई आरोप पत्र दाखिल होने की तारीख से 3 महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये संशोधन कानून को और अधिक सख्त बनाने तथा त्वरित न्याय दिलाने के लिए किया गया है। डॉ सिंह ने कहा कि नया विधेयक छात्रों और युवाओं के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।
1: सरकार की प्रतिबद्धता का आप इसी बात से अनुमान लगा सकते हैं कि इसी विधेयक के लाने के साथ ही साथ हमारे लॉ मिनिस्टर्स की ओर से भी एक प्रस्ताव जारी कर दिया गया। स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स है, इनको स्थापित करने का भी क्रम प्रारंभ किया जाए। उसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड में पहले ही इन्होंने गठित कर दिया और आने वाले दिनों में बाकी स्थानों पर।
0: डॉक्टर सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री ने टास्क फोर्स का गठन भी किया है।
1: कल ही प्रधानमंत्री जी ने एक टास्क फोर्स का भी ऐलान किया है टू रिकमेंड रिफॉर्म्स टू मेक द एग्जाम सिस्टम्स लीक प्रूफ। उसमें कुछ एक बड़े वरिष्ठ लोग सम्मिलित किए गए और साथ ही साथ जो राधा कृष्ण कमेटी गठित की गई थी 22 जून 2024 में, उसमें से जो 46 की रिकमेंडेशंस थी उसमें से भी 35 इम्प्लीमेंट हो चुकी है।
0: श्री सिंह ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी के असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करने की भी आलोचना करते हुए इसे अनुचित और दुर्भाग्यपूर्ण बताया। राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। ये विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है।
2: राष्ट्रीय गीत अपमान पर इस विधेयक के माध्यम से दंडनीय प्रावधान करने का विचार हुआ है। वर्तमान संशोधन का उद्देश्य राष्ट्र गीत वंदे मातरम के जानबूझकर किए गए अपमान को भी उसी प्रकार के दंडनीय बनाया जाए जैसा कि वर्तमान कानून में है। हर भारतवासी के राष्ट्र प्रेम का उद्घोष है वंदे मातरम, विकसित भारत का संकल्प है वंदे मातरम।
0: संसद के दोनों सदनों में आज हुई कार्यवाही पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
3: संसद के दोनों सदनों में आज महत्वपूर्ण विधायी कार्य संपन्न हुए, हालांकि कार्यवाही के दौरान कई बार व्यवधान भी देखने को मिला। लोकसभा में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत किया। इसके अलावा लोकसभा ने एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित विधेयक की जाँच कर रही संयुक्त संसदीय समिति का कार्यकाल संसद के शीतकालीन सत्र 2026 के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। नीट मुद्दे को लेकर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई के विरोध में विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। इस कारण लोकसभा और राज्यसभा में प्रश्नकाल नहीं चल सका। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय मंत्रियों और भाजपा के नेताओं ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह पर विपक्ष के नेता राहुल गांधी की टिप्पणी की आलोचना की। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कहा कि श्री राहुल गांधी अपने संवैधानिक पद की गरिमा बनाए रखने में विफल रहे हैं।
4: आज राहुल गांधी जी ने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो संसदीय नहीं है। माननीय गृह मंत्री जी पर आरोप लगाया जबकि उनके पास इस प्रकार का कोई सबूत नहीं है। कभी भी कोई लाठी चार्ज, टियर गैस, कैनिंग या पानी के बौछार का आदेश कोई मंत्री नहीं देता है। ये उस मौके पर अनलॉफुल असेंबली को देखते हुए उस मौके के गजेटेड अफसर, पुलिस अफसर और प्रशासन के लोग ये निर्णय लेते हैं। ये मिथ्या आरोप उन्होंने माननीय गृह मंत्री पर लगाया है।
0: केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह ने आरोप लगाया कि सदन में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की भाषा संसदीय कार्यवाही के लिए अनुचित थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अगस्त को नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे। ये नशाखोरी के खिलाफ 100 सप्ताह का राष्ट्रव्यापी जन भागीदारी आंदोलन है। इस पहल का लक्ष्य जागरूकता, सामुदायिक सहभागिता और निरंतर जन भागीदारी को बढ़ावा देकर नशा मुक्त भारत के निर्माण के लिए युवाओं को सामूहिक राष्ट्रीय मिशन में एकजुट करना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में भारतीय पारंपरिक कला रूपों के कलाकारों से मुलाकात की और उनके कार्यों का अवलोकन किया। बनारस भित्तिचित्र थंका नायका, केरल भित्तिचित्र बसोहली सुर

0: और मैसूर जैसी कला शैलियों का प्रतिनिधित्व करने वाले 12 कलाकार कलाकार निवास कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रपति भवन में रह रहे हैं। कलाकार निवास कार्यक्रम भारत की कलात्मक परंपराओं की भावना का उत्सव है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज आगामी नीट स्नातक काउंसलिंग 2026 की तैयारियों की समीक्षा की। श्री नड्डा ने कहा कि काउंसलिंग प्रक्रिया पारदर्शी, निष्पक्ष और योग्यता आधारित तरीके से संचालित की जानी चाहिए। ओडिशा में लगातार जारी तेज बारिश और नदियों में आए उफान से राज्य के बड़े हिस्से को मानवीय संकट में डाल दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बाढ़ के कारण 4 लोगों की मौत हो गई है।
1: बाढ़ का पानी लगातार आगे बढ़ रहा है। उफनती बैतरणी नदी भारी तबाही मचा रही है, जबकि भद्रक, जाजपुर और बालेश्वर में बाढ़ की स्थिति खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। मयूरभंज में लगातार बारिश और नदियों के उफान ने संकट को और बढ़ा दिया है। सरकारी सूत्रों का कहना है कि 304 ग्राम पंचायत में लगभग 3,80,000 लोग प्रभावित हुए हैं। बचाव और राहत कार्य जारी है। इस बीच IMD ने नुआपड़ा, कलाहंडी, नवरंगपुर और कोरापुट जिले में ऑरेंज वार्निंग जारी की है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: छत्तीसगढ़ से हमारे संवाददाता ने बताया है कि पिछले 2 दिन से जारी मूसलाधार वर्षा के कारण कई जिलों में जनजीवन प्रभावित है।
2: छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में पंटोरा में स्थित कन्या आश्रम में पानी भरने से 50 से अधिक छात्राओं को दूसरे स्थान पर भेजा गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सभी जिला कलेक्टरों सहित अन्य अधिकारियों को सतर्क रहने और जरूरी उपाय करने के निर्देश दिए हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान छत्तीसगढ़ के बालोद और कांकेर जिलों के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
0: मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में कल मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की है। पूर्वोत्तर भारत, तटीय कर्नाटक, पूर्वी मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरल और माहे, कोंकण, गोवा, पंजाब, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कल तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और लक्षद्वीप में भी तेज वर्षा का अनुमान है। ऊपरी असम में आई विनाशकारी बाढ़ के मद्देनजर विधानसभा का पहला बजट सत्र आज निर्धारित समय से 2 दिन पहले समाप्त हो गया। एक रिपोर्ट।
3: पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री अतुल बोरा ने सदन को बताया कि राज्य सरकार बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों की एक टीम कल ऊपरी असम का दौरा करेगी ताकि बाढ़ पीड़ितों को प्राथमिकता के आधार पर सहायता उपलब्ध कराई जा सके। सदन ने जान गंवाने वाले लोगों की स्मृति में 1 मिनट का मौन भी रखा। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति लगातार बढ़ रही है। मरने वाले प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़कर 40 हो गई है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय ने प्रदर्शनकारियों की मौत पर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के प्रवक्ता जेरेमी लॉरेंस ने कहा कि एक नागरिक समाज संगठन को अपराधी घोषित करना और सभाओं पर कड़े प्रतिबंध लगाना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा और संगठन के अधिकारों के उल्लंघन के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा करता है। उधर ब्रिटेन में रहने वाले कश्मीरियों ने आज बर्मिंघम स्थित पाकिस्तानी वाणिज्य दूतावास के बाहर हत्याओं के विरोध में प्रदर्शन किया। उन्होंने संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए दूतावास के बाहर जूते रखे। कई ब्रिटिश सांसदों ने कथित कार्रवाई की निंदा की। सांसद नाज शाह और इमरान हुसैन ने प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी को बर्बर बताया और जवाबदेही तथा शांतिपूर्ण समाधान की मांग की। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा नौसेना के लिए निर्मित 8 पनडुब्बी रोधी जलपोतों में से 7वें जलपोत मछलीपट्टनम का आज जलावतरण किया गया। ये जलपोत समुद्र के भीतर की निगरानी, पनडुब्बी रोधी युद्ध अभियान और कम तीव्रता वाले समुद्री अभियान के साथ साथ बारूदी सुरंग भेदन क्षमता से लैस है। 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री कि ये परियोजना भारतीय पोत निर्माण उद्योग की बढ़ती क्षमता को प्रदर्शित करती है। दिल्ली पुलिस ने 20 जुलाई के नीट पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन के दौरान एक प्रदर्शनकारी को गोली लगने की अफवाहों का खंडन किया है। ये अफवाह मेडिको लीगल सर्टिफिकेट के निष्कर्षों से मेल नहीं खाती। पुलिस ने कहा कि सर्टिफिकेट में घाव को हल्की चोट बताया गया है। डॉक्टर के अनुसार गोली लगने का कोई सबूत नहीं है। पुलिस ने लोगों को ऐसी अफवाह फैलाने से पहले प्रामाणिक स्रोतों से जानकारी की पुष्टि करने की सलाह दी है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के एक निजी स्कूल में 5 वर्षीय बच्चे के साथ शिक्षक द्वारा कथित यातना और अमानवीय व्यवहार के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और वाराणसी पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी किया है। मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लेते हुए आयोग ने 2 सप्ताह के भीतर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। सरकार ने कहा है कि लगभग 6 दशकों की हिंसा के बाद देश वामपंथी उग्रवाद से मुक्त हो गया है। राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि उपलब्धि वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए 2015 की राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना के दृढ़ कार्यान्वयन तथा केंद्र और राज्य सरकारों के समन्वित प्रयासों से हासिल हुई है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं अमरीश सक्सेना।
4: सेंसेक्स 889 अंक ऊपर चढ़कर 77,655 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 265 अंक की तेजी के साथ 24,250 पर बंद हुआ। उधर अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 21 पैसे मजबूत होकर 1 अमरीकी डॉलर की तुलना में 95.64 रुपए पर बंद हुआ।
0: ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय मुक्केबाज अंकुश, साक्षी, अरुंधति, सचिन और नरेंद्र ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारतीय मुक्केबाजों ने अब तक 9 पदक सुनिश्चित कर लिए हैं। पदक तालिका में भारत 2 स्वर्ण, 7 रजत और 3 कांस्य पदकों के साथ 9वें स्थान पर है। जम्मू कश्मीर में आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर श्रीनगर के मैसुमा स्थित ऐतिहासिक दशनामी अखाड़े से पारंपरिक पवित्र गदा चारी मुबारक को विधिपूर्वक निकाला गया। ये समारोह श्री अमरनाथ जी गुफा मंदिर की वार्षिक यात्रा के प्रारंभ का प्रतीक है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा ने परीक्षा में गड़बड़ी रोकने के लिए सख्त सजा और फास्ट ट्रैक कोर्ट के प्रावधान वाला पेपर लीक रोधी विधेयक पारित किया। राज्यसभा ने वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान कानूनी संरक्षण देने और इसके अपमान को अपराध घोषित करने वाला विधेयक पारित किया। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति गंभीर, 4 लोगों की मौत और 4 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। और राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाज अंकुश, साक्षी, अरुंधति, सचिन और नरेंद्र ने सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब तक 9 भारतीय मुक्केबाजों ने पदक सुनिश्चित किए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल को। रात्रि के 9 बजे हैं। आइए अब सुनते हैं सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं पंडित चिरंजी लाल की आवाज में ये कसम।

इसी के साथ हमारा आज का ये सुगम संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 9:15 हुए हैं। अब आप विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के प्रसारण सुनेंगे।

0: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
1: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए।

0: नहीं रह गया है।
1: जानी माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 1 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आए हाय।
3: लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर को फिल्म जिद्दी में। हसरत जयपुरी के बोल है और संगीत से सजाया है SD बर्मन ने।

अभी आपने जिद्दी फिल्म में लता मंगेशकर को सुना और ये है कार्यक्रम की अंतिम पेशकश मोहम्मद रफी की आवाज में साथ दे रहे हैं लता मंगेशकर। फिल्म का नाम है हंसते जख्म। कैफी आसमी के लिखे इस गीत की धुन बनाई है मदन मोहन ने।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन छाया गीत कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में।

प्रस्तुत है छाया गीत। सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। सामिन, किसी रिश्ते का सबसे दुखद पल या यूं कहें दुखद क्षण वो नहीं होता जब दो लोग अलग होते हैं। दुखद पल वो होता है जब दो लोग साथ रहते हुए भी एक दूसरे तक पहुंच नहीं पाते। शब्द होते हैं पर आपसी समझ नहीं होती, साथ है लेकिन सुकून नहीं होता, बातचीत होती है लेकिन दिल की बात नहीं होती। और ये रिश्ता बाहर से तो वैसा ही दिखता रहता है लेकिन भीतर उसका जीवन खत्म होता जाता है।

बहुत लोग साथ रहते हैं फिर भी एक दूसरे को कभी महसूस नहीं कर पाते। उनके बीच हजारों मील की दूरी होती है। स्त्री और पुरुष का रिश्ता सिर्फ एक छत के नीचे साथ रहने का नाम तो नहीं है ना। किसी भी रिश्ते को बाहर से देखने पर वो अक्सर दो लोगों की कहानी दिखाई देता है, लेकिन भीतर उतरकर देखिए तो सही, वहां दो लोग रहते हुए भी नहीं रहते। हाँ, वहां दो लोग रहते हुए भी नहीं रहते।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा।
2: किसने कहा है? किशोरदन लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: किशोरदन ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे किशोरदन

0: आगे सुबह सुबह मुझे भी गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग, ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।
1: वाह।
0: कभी इस पग में

0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।
1: आज के फनकार।

0: के फनकार। हमारे आज के फनकार हैं कॉमेडियन अभिनेता जॉनी वॉकर।
1: मारे, मारे, मारे।

0: जी हाँ, सिने जगत का ये लोकप्रिय नाम है इनका, लेकिन इनका नाम कुछ और है। आपको बता दें, 11 नवंबर 1920 के दिन इनका जन्म हुआ था बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी के रूप में। बाद में ये फिल्मी नाम गुरुदत्त साहब ने इन्हें दिया, जॉनी वॉकर। पर्दे पर इन्हें देख करके आप जरूर मुग्ध हो गए होंगे, क्योंकि कॉमेडी के रूप में इन्होंने बहुत ही सुंदर काम किया।
1: प्यार का हो बेझगड़ा या बिजनेस का हो झगड़ा, सब लफड़ों का बोझ हटे जब पड़े हाथ एक तगड़ा।

0: राय।
1: भारतीय हिंदी सिनेमा के लोकप्रिय कॉमेडियन के रूप में जॉनी वॉकर हमेशा याद किए जाएंगे। बिना पिए पीने वाले की भूमिका इतनी सुंदर ये पर्दे पर निभाते थे कि इनकी छवि को देखकर लोग मुग्ध हो जाते थे। दर्शक हंसते हंसते लोटपोट हो जाते थे। इनका बहुत ही आकर्षक चेहरा था, उस पर से पेंसिल की तरह पतली इनकी मूछें थी जिन्हें देखते ही हंसी आ जाए। जॉनी वॉकर, इनका जन्म 11 नवंबर 1920 को हुआ था इंदौर मध्य प्रदेश में, और एक मिल वर्कर के यहाँ इनका जन्म हुआ था। बाद में इनका परिवार बॉम्बे में आ गया और यहाँ इन्होंने बहुत सारे काम किए जीविकोपार्जन के लिए। फिल्मों में इन्हें छोटे मोटे रोल मिलने लगे। और आगे की बातें से पहले हम आपको गाना सुनवा रहे हैं सीआईडी फिल्म का।

उस जमाने के सुप्रसिद्ध अभिनेता बलराज साहनी जॉनी वॉकर को बस में देखते रहते थे, वहाँ ये एक्टिंग करते थे। बलराज साहनी सन 1951 में फिल्म बाजी की स्क्रिप्ट लिख रहे थे। उसी दौर की फिल्म हलचल में इन्हें एक भूमिका दी गई। गुरुदत्त साहब जो कि उस जमाने में फिल्म का निर्माण करते थे, उन्होंने इनके काम को देखा और पसंद किया और बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी को एक नया नाम दिया, जॉनी वॉकर।

0: जीवे ऊपर लड़ाके जरूर लूंगा बाजा मुझे केरे मारे मारा कर दे पापा
1: चाहे कोई खुश हो चाहे गालियां हजार दे
0: अरे मास्टर राम बन के जिंदगी के दिन गुजार दे।
2: फिल्मकार गुरुदत्त जॉनी वॉकर की भूमिका को देखकर बहुत ही प्रभावित होते थे, खासतौर से पीने वाले की भूमिका। लेकिन आगे चलकर इन्होंने तरह तरह की भूमिकाएं की, लेकिन उसमें कॉमेडी का पुट हमेशा होता था और उस जमाने के नायक के बराबर कॉमेडियंस को भी सम्मान मिलता था।

0: बात नहीं है डर की, ऑनलाइन क्लियर, ऑनलाइन क्लियर,
1: लाइन क्लियर बाय।
2: इनकी कामयाब फिल्में थी मेरे महबूब, सीआईडी, प्यासा, चोरी चोरी। इन फिल्मों में कॉमेडी के साथ साथ चरित्र अभिनेता के रूप में भी इन्होंने कार्य किया और इन्हें बहुत ही सम्मान मिला। सन 1950 से लेकर 1960 तक फिल्मी करियर जॉनी वॉकर का बहुत ही सुनहरा था, किंतु इसके बाद फिल्मकार गुरुदत्त के निधन के बाद जॉनी वॉकर का करियर डगमगा गया। सन 1964 से इन्हें एक नया मोड़ मिला फिल्मी करियर में, जब जॉनी वॉकर डायरेक्टर बिमल रॉय और विजय आनंद से मिले और इन दोनों ही निर्देशक और फिल्मकारों ने इन्हें बहुत ही गोल्डन चांस दिए।
3: जंगल में मोर नाचा किसी ने न देखा, जंगल में मोर नाचा किसी ने न देखा है, हम जो थोड़ी सी भी कजरा झूमे, हाय सबने देखा जंगल में।

0: जॉनी वॉकर को अवार्ड्स भी मिले। फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर अवार्ड मधुमति फिल्म में विशेष भूमिका के लिए, फिल्म फेयर बेस्ट कॉमेडियन अवार्ड शिकार फिल्म की भूमिका के लिए।
1: आज दहिया था याद आवत है,
2: तबीयत नरम है आज।
1: नरम है तो हमसे पूछो नुक्सा, कंपाउंडर के हाथ के नीचे भी काम किया है, बोलो क्या तकलीफ है।
2: नींद नहीं आती रात भर।
1: नींद नहीं आवत है पर का है, रोग तो बोलो, सर दुखत है, पेट दुखत है।
2: दुखता उखता नहीं, कस मसा है सारा बदन, नींद नहीं आती।
1: ओ ये तो नवा रोग लगत है, सोचो तेज बहादुर, खूब सोचो।
2: सोचना कैसा, कुछ इलाज करो ना हमारा।
1: ठहरो पहले ई बताओ, सोवत कैसी हो, चित पट के करवट
2: कैसे? ऐसे
3: बराबर लेटो,
2: भाता है ना ऐसा लेटना।
1: नींद ना आवे तो क्या फायदा।
2: अच्छा ये कैसा?
1: दुई कौड़ी का।
2: तो फिर कैसे?
1: इधर घूमो करवट,
2: फल नहीं पड़ता, तुम्हें घुमा लो ना।
1: गोबर गणेश कहीं की।
0: जॉनी वॉकर ने 300 फिल्मों में काम किया। इनकी चर्चित फिल्में हैं सन 1951 में बाजी।
4: मिस्टर जॉर्ज क्रूस, सन ऑफ जॉर्ज क्रूस, तुम उधर क्या देखता?
1: उधर मैं टेलीफोन देखता था। तुमने कितना अच्छा टेलीफोन लगाया, नहीं डबल कनेक्शन वाला, हॉल में भी लगा और बेडरूम में भी।
4: यू फूल, तुम हमको फूल बनाता, तुम टेलीफोन को नहीं छोकरी को देखता था।
1: छोकरी? छोकरी टेलीफोन छोकरी के हाथ में था?
4: यस।
1: ओ गॉड, जब हम सोचता था वो टेलीफोन वाला हाथ आदमी का नहीं हो सकता है, कहीं को हम खाली उसका हाथ देखता था ना। लेकिन डार्लिंग जो बात तुम्हारे हाथ पे है ना वो किसी में नहीं। डार्लिंग तुम इसी लड़की का बात करता था ना, इसका अंकल पैसे नहीं भेजता?
4: हम उसका बात करते तो वो ठीक है, पर तुम कहीं को उसका बात करता है। डोंट फॉरगेट तुम हमारा पेइंग गेस्ट है।
5: वो तुम्हारा पेइंग गेस्ट हो या हमारा, रेंट किसी को नहीं देगा। लूसी बहुत रात हो गया, सोने दो ना बेचारे को, नहीं सोएगा तबीयत खराब हो
3: जाएगा। राइट
4: राइट। मैं सुजन फर्नांडिस, तुम अभी तक नहीं सोया?
5: कैसे सोएगा, नींद नहीं आता।
1: जब तक मैं नहीं सोऊंगा ये नहीं सोएगी।
4: यू शट अप। सुजन तुम्हारा ड्रेसिंग गाउन किधर है? तुम क्या बोला, तुम क्या बोला?
1: मैं बोला तुम सिस्टर लोग कितना अच्छा है, साथ में सोता है साथ में उठता है, मैं तुम लोगों को छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा।
6: तुम जिसे कहता है शादी, रूनो है पूरा बर्बादी, जो तुम ललचाओगे पीछे पछताओगे। माइंड यू जाएगी आजादी। हम तुम जिसे कहता है शादी, रूनो है पूरा बर्बादी, जो तुम ललचाओगे पीछे पछताओगे। माइंड यू जाएगी आजादी।
0: आज के फनकार, ये कार्यक्रम केंद्रित था जाने माने हास्य अभिनेता जॉनी वॉकर पर। चलते चलते हम आपको बता दें, आज के इस कार्यक्रम में शोध आलेख और स्वर था शहनाज अख्तरी का, संपादक और प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
7: आज के फनकार।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के प्रसारण FM 103.7 MHz पर। यह है आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल। रात्रि के 10 बजे हैं। हमारी आज की ये सांध्यकालीन प्रसारण सभा अब यहीं संपन्न होती है। अब आपसे हमारी भेंट कल सुबह 8:51 पर हमारी प्रातःकालीन प्रसारण सभा में होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद।